सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: आओ जी महाराज।
3: गुरु बाल कर्मचारी गुरु हर कृष्ण परमेश्वर।

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: लाओ श्री जी की चुनरी महापुरुषों को पहनाओ, बड़ी कृपा की दर्शन। आपको कुर्सी डाले के अगर बैठना चाहे दे कुर्सी, एक कुर्सी, हाँ कुर्सी दे दो, हमें बहुत सुख मिलता है। हाँ आप जैसे गुरुजनों के दर्शन करते तो हमें लगता है जैसे हमारे घर के बड़े जन आ जाए ना ऐसे। हाँ
2: कोई समा था जब हम भी पूजा करते
1: जी,
2: धन्य जट ने
1: जी
2: पूजा की
1: जी जी,
2: पूजा की और उसने पत्थर से परमेश्वर
1: प्रकट कर लिया जी जी,
3: पर पत्थर में परमेश्वर को पा लिया। लेकिन परमेश्वर को पाना सिर्फ नियत ने पाना है, ना कि भगवान ने पत्थर ने आपको देना है कुछ।
1: इसमें बात ये देखनी है कि कोई ऐसा कण नहीं जहां हमारा प्रभु ना हो, और हमारी जहां श्रद्धा लग जाती है वहीं से हमारे प्रभु प्रकट हो जाते हैं, हमारा उसमें भाव प्रदान होता है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां मेरा प्रभु ना हो, कोई घट ऐसा नहीं जहां वो रमा ना हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब वाणी जी में घट घट में वही रमा है, कण कण में वही समाया है, पर हम जहां भाव कर लेते हैं वहीं वो प्रकाशित हो जाता है, और जैसा भाव कर लेते हैं वैसा वो प्रकाशित हो जाता है। प्रहलाद जी ने खंभे में भाव किया तो नरसिंह रूप से भगवान प्रकट हो गए। हाँ हमारा भाव, अच्छा भाव कहां बनता है? गुरुवाणी पे। धन्ना जाट को जब उनके गुरुदेव ने वचन दिया, वाणी दी, बस उसी वाणी पे लग गए तो पाहन से परमात्मा का अनुभव हो गया। तो हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, जो गुरु वाणी है उसके अनुसार हम चले तो कोई कण ऐसा नहीं रहेगा जहां परमात्मा का दर्शन ना हो।
2: हम कभी भी है
1: जी
2: आपकी कृपा से
1: जी,
2: जब कोई तरंग उठती है
1: जी जी,
2: तो हम भगवान की लीला की बातें लगती है
1: जी जी जी,
2: उसमें आपके इसी बात में है
1: जी।
3: सुभान कादर ते सोनी सुभान कुदरत
1: जी,
3: कुदरत विच है कादर दा नूर बंदे
1: जी,
3: जर्रे जर्रे अंदर जहूर दिसना बैठा है अंदर है
1: जी जी जी,
3: लब दा दूर बंदे
1: जी,
3: दूर दुई है सच तो दूर कर दी
1: जी,
3: फिके रस
1: जी
3: ते फिका सरूर बंदे
1: जी,
3: जिस रस नू लब दा विच तेरे हर पख तो रस भरपूर बंदे
1: जी जी,
3: कच्ची कोठड़ी रस नू कैद करके कच्ची मिट्टी दा करे गरूर बंदे
1: जी,
3: इस मिट्टी नू मिट्टी मन पहला इस मिट्टी नू मिट्टी मन पहला फिर दाखला मिलू जरूर बंदे, शीस रखती बीस दाखले दी तारी फीस ते जन्म सवार जामी, बहुते जन्मां दा पड़के आन पहुंचा
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: जेकर जितना दा पहला हार जामी
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: जेकर जितना दा पहला हार जामी, मिठत नीवी नानका गुण चंगे आई आता
1: जी जी,
3: कोई भी सेवादार है
1: जी
3: कहीं भी है
1: जी,
3: सबसे पहले उसके अंदर निम्रता होनी चाहिए
1: जी जी,
3: कोई भी धर्म है
1: जी
3: सबसे पहले उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, उसी से अनुभव आगे बढ़ेगा
4: बिल्कुल बात।
3: आज से 20 दिन पहले मैंने आपकी वो जो वीडियो देखी
1: जी,
3: तो मन बना भाई अब खेती बाड़ी है और सब सत्संग के धंधे हैं, सेवा भी सत्संग के भी समय को रोक रखा था
1: जी,
3: बोला कि चलते हैं भैया उसे,
1: ये कृपा हुई ये कृपा
3: तो
1: आए
3: जी। हम आपको एक दो निवेदन जरूर करेंगे
1: जी जी,
3: जे कोई महात्मा आता है
1: जी,
3: अब इतनी दूर से चल के आए तो वो कहां पड़ेगा रात को
1: जी। अब इसमें क्या है कि अपने पास इतनी अर्थव्यवस्था नहीं, क्योंकि किसी से लेते नहीं, प्रगट में, कोई दान पेटी नहीं, किसी भी तरह का कोई फार्म भरना कुछ नहीं। तो अब जैसे कोई 100-200 चढ़ा गया तो 300-350 साधक है, संत है, तो दाल रोटी और बिजली खर्चा ऐसे मांगते किसी, हमारे पास पैसा नहीं कि हम व्यवस्था करें। अगर हमारे पास पैसा हो ना तो इस पर कहना ना पड़े, पर अगर देखो अगर हम ये सब शुरू कर देंगे ना तो फिर ये जो बात है वो नहीं रहेगी। इसीलिए हम थोड़ा, अब जैसे रात रात भर लोग रोड पे, तो हमें चुभता है कि यार इनको कम से कम 2 रोटी थोड़ी सब्जी तो दे दें, रात भर है। पर वास्तविक आपको बताएं हमारी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि हमारे पास अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं, ना हम कुल परंपरा के कोई मानते हैं और ना हमारा कोई इस तरह का बंदा बाहर जाके याचना करे या यहाँ किसी ऐसे होता ना कि भाई दान पेटी रख दी या कुछ ऐसा कि आप साधु सेवा करो। अगर आप 100 रुपया रख गए तो हम उसी की सब्जी मंगा के उसी से खाएं। तो इसलिए हम चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा धनी पुरुषों से ऐसा संपर्क नहीं, इतना ही संपर्क है। और इसमें भी आप गेट के बाहर देखो सब हटवा दिया जाता है, आप आओ भगवान का नाम सुनो, भगवान का नाम सुनाओ, भगवत यश गाओ, और जैसे प्रभु आपको रख रहे जैसे हमें रख रहे हम वैसे पार कर रहे हैं।
3: दूसरी बात, हमको आपकी ये अच्छी लगी
1: जी,
3: जितने भी धार्मिक
1: जी
3: मानो उदासी, मैं कभी किसी से बैर नहीं रखता
1: जी, जी जी
3: जो काम करता हूँ सच में बोलता हूँ
1: जी जी जी,
3: उदासी हो गए
1: जी,
3: निर्मले हो गए,
1: अलग अलग जो
3: अभी तो निर्मले तो केस रखते हैं
1: जी,
3: उदासी लोग नहीं रखते
1: जी,
3: और भी बीड़ियां वगैरह जो सभी कुछ सेवन करते हैं हमको
1: जी जी।
3: सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको आपके दर्शन
1: जी,
3: भगवान जी के दर्शन जटाजूट केसधारी में हो रहे हैं
1: जी, जी, जी, जी, जी। और आप गुरुजनों की कृपा से
3: भी हमारा सिर झुकता है
1: जी, नहीं नहीं नहीं ये तो
3: झुकता है,
1: आप हमारे प्रभु हैं, आप हम तो आपके बच्चे हैं, आपके द्वारा पोषित है
3: ऐसा है आपके
1: जी,
3: इनके केसधारी है
1: जी।
3: हम जो सबसे पहली बात
1: जी
3: सिख कौम को
1: जी
3: केसों से ही
1: जी
3: प्यार है
1: जी जी,
3: जो केसों का प्यार करेगा, जो जिस महात्मा के खुद के केस होंगे
1: जी जी,
3: और जो केसों का प्यार करेगा
1: जी,
3: हमारी कौम उसके लिए मर जाएगी
1: जी जी जी जी। वैसे हमारी जो साधु परंपरा है ना उसमें यही है कि जो जहां जैसे जग रहा जगने दो, उसको अपने हिसाब से बानुल बाबा जी हैं, भगवत मार्ग के पथिक है, तो ये मतलब स्वाभाविक है। तो अब जैसे जो बच्चे श्री जी की सेवा में, रसोई सेवा में, तो उनको या तो कपड़े बांधो या हटाओ, क्योंकि बाल ना भोग में गिर जाए, अगर वो बाल भोग में गिरेगा तो ठाकुर के भोग लायक नहीं रहेगा ना, तो उस सावधानी बकाया सब। और कोई नशा नहीं किसी भी तरह कोई, और किसी भी संप्रदाय संत आवे सबके आगे झुको, क्योंकि हमारे सब भगवत स्वरूप है।
3: इसमें इसमें इसमें बहुत बड़ी बड़ी आई है
4: जी, मैं सुबह से आए हैं, यही चीज हम देख रहे हैं कि इतना प्यार संगत के साथ
1: जी जी,
4: इतना मतलब कि मैं ज्ञान नहीं कर सकता। एक दिन की मैंने आपको सुबह की मतलब एक अपना जो कृपा हुई है
1: जी,
4: मैं सुबह कमरे में नहा रहा था, नहा के निकला बाहर, मैंने कहा बाबा जी को विनती जरूर करूंगा एक छोटी सी, तो मैं शीशगंज साहब दिल्ली में और लाइव आता है
5: गुरुद्वारा है
4: चांदनी चौक गुरुद्वारा जब प्रकाश करते हैं गुरु ग्रंथ साहब का, तो उसमें से पहला बोलते हैं वाणी जिसको अमृत वेले, तो वो जैसे ही प्रकाश हुआ तो हम लोग अपना इंतजार करके बोलेंगे, जैसे वो बोल रहे थे तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया, वो सुन रहा था मैंने आंखें बंद करके, उनको दिल से गुरु ग्रंथ साहब जी को देख के मतलब अरदास करी, देखा बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब जी हम आए हैं इतनी दूर से और यहाँ पर जिसने भेजा बता करके कि एक दिन टोकन लेना पड़ेगा, अगले दिन दर्शन होंगे, तो ऐसा होगा, तो मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी अरदास करी, मैं कहा बाबा जी कोई ऐसा चमत्कार कर दो, ऐसी कोई कृपा कर दो कि हमें मतलब रुक तो जाएंगे लेकिन हमें एक दिन में दर्शन हो जाए, एक दिन में सारा कुछ हो जाए, तो कृपा हो जाए, तो आप कृपा करो। तो सच्ची बता रहा हूँ आपको, आप जानी जानो
1: जी,
4: आप मेरे आंखों के आगे आए, मुस्कुराने लगे और बोले चिंता मत कर आ जा
1: जी, वो सब गुरु कृपा है।
5: ज्यादा देर बैठ के
3: बीस साल से आज मैं 68 का हो गया हूँ। तो 20 साल मेरी ये तमन्ना थी, लेकिन तब तक वो दे दो, तब तक मैं वो आपसे बात नहीं कर रहा था, तब तक यहाँ तक मैं आ नहीं रहा था कि जब तक मेरे को यहाँ कृष्ण भगवान जी के जैसे न्योता ना मिले तब तक मैं नहीं हूँ।
1: जी जी,
3: अब आए आप दोनों के निमित्त हो, हम आपको नमस्कार करते हैं
1: और आशीर्वाद दीजिए कि हमारी बुद्धि सदैव आप सबकी सेवा में लगी रहे।
3: और आपके साथ दर्शन हुए महाराज जी, बड़े भाग
4: आपके
3: बहुत भाग।
6: बाबा जी मन के भोजन की व्यवस्था जो आपने कर रखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान जी आपको ऐसे ही आपके भंडार बनाए रखे हैं, मन के भोजन के भंडार आपके।
1: हाँ, ये बखास बात, तल का भोजन तो चल जगह।
6: आपसे आशीर्वाद जो लिया आपको यही।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
5: आज बहुत दिन मिलने वाले,
1: धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।
7: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज। डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
9: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
10: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
9: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
9: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
9: और 9097160602।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
12: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
13: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
12: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
13: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
12: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
13: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
12: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।

कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कवि शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

को अयोध्या के राजपथ के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कटु वचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा?

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0-97-06-575।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62002434 03 62002434 03।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अवैध अस्पतालों पर जिला प्रशासन ने की छापेमारी। नीट की परीक्षा को लेकर जोर शोर से चल रही है तैयारी, जिला पदाधिकारी ने की बैठक। 4 गुमशुदा किशोरियों को दिल्ली और लखनऊ से पुलिस ने किया बरामद। वन स्टॉप सेंटर पर जिला पदाधिकारी ने की कड़ी कार्रवाई। और पशु तस्करों को पुलिस ने दबोचा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट प्रखंड क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और जांच केंद्रों तथा कथित फर्जी चिकित्सकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुशांत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने प्रखंड मुख्यालय स्थित करीब आधा दर्जन निजी अस्पतालों एवं क्लिनिकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्याम सुंदर कुमार भी मौजूद रहे। निरीक्षण की सूचना पहले ही फैल जाने के कारण अधिकांश निजी अस्पताल संचालक अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर मौके से गायब हो गए थे। वहीं जो अस्पताल और क्लिनिक खुले मिले, वहां अधिकारियों ने पहुंचकर पंजीकरण संचालन संबंधित दस्तावेजों तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच की। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों की संचालन व्यवस्था और अभिलेखों की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी जुटाई गई। इधर जांच के बाद स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि कहीं कोई संचालक जांच में सहयोग नहीं करता है अथवा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता है तो जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि लंबे समय से कुचायकोट क्षेत्र में अवैध अस्पतालों, जांच केंद्रों और बिना मान्यता प्राप्त चिकित्सकों द्वारा इलाज के नाम पर लोगों से धन वसूली करने की शिकायत मिल रही थी। आरोप है कि कुछ लोग अपने प्रतिष्ठानों पर बड़ी बड़ी चिकित्सकीय डिग्रियां भी प्रदर्शित कर मरीजों को भ्रमित कर रहे थे, जबकि उनके पास वैध प्रमाण पत्र नहीं है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद प्रखंड मुख्यालय सहित आसपास के बाजारों में और अस्पताल संचालकों तथा कथित फर्जी चिकित्सकों के बीच हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आगामी नीट परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बैठक की। उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक के दौरान संबंधित विभिन्न प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने, अभ्यर्थियों को सुगम एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण की मांग की थी। इस पर श्रम बल प्रदाता एजेंसी प्रनेजा एनवायरो केयर एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को जारी कार्यादेश रद्द कर दिया गया है और महिला हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर की परियोजना प्रबंधक नाजिया मुमताज तथा जिला मिशन समन्वयक सुबोध कांत सिंह की संविदा भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। बताया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी ने जांच किया था, जिसमें पलना घर के संचालन पर सरकारी राशि तो खर्च की जा रही थी, पर वहां एक भी बच्चा पंजीकृत नहीं था। इसके बावजूद केयर वर्कर और सहायक केयर वर्कर की नियुक्ति, मानदेय भुगतान और संचालन संबंधित प्रक्रियाएं कागजों पर चल रही थी। जांच में मिली गड़बड़ी के बाद अब इनके लाइसेंस को रद्द किया गया और वहीं इसमें तैनात दो पदाधिकारियों के संविदा को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। जिला पदाधिकारी ने इसमें और भी गहराई से जांच कर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। नगर थाना क्षेत्र से चार किशोरियों के गायब होने की सूचना नगर थाना की पुलिस को मिली थी। पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया और इस मामले में आवश्यक जांच पड़ताल करते हुए मानवीय और तकनीकी टीम का गठन किया गया, जिसमें आसूचना संकलन और अन्य तकनीकी सूत्रों से जानकारी करते हुए पुलिस ने तीन किशोरियों को दिल्ली से सकुशल बरामद किया और एक किशोरी को लखनऊ से बरामद किया गया। चारों किशोरियों को सकुशल आज गोपालगंज लाकर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से इनके बयान दर्ज कराने के बाद इनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। इस दौरान गोपालगंज पुलिस ने जनता से अपील किया है कि बच्चों एवं किशोर किशोरियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखें तथा किसी भी संदिग्ध परिस्थिति की सूचना तत्काल निकटतम थाना या पुलिस हेल्पलाइन नंबर 90-318-27-299 पर दें। पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों से अपील किया है कि लोग अपने बच्चों पर विशेष नजर बनाए रखें, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे कई तरीके के गलत स्टेप उठा लेते हैं, जिनसे परिजन और प्रशासन सबको परेशानी होती है। इसलिए अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी बनाए रखें, बच्चों को आवश्यक सुझाव देते रहें और बच्चों से बातचीत करते रहें, ताकि बच्चों की सभी गतिविधियों की जानकारी समय पर आपको मिलती रहे। इधर बैकुंठपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ी मोड़ के पास एक पिकअप वाहन से अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 10 मवेशियों को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इस घटना में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है कि वह अपना नाम सद्दाम हुसैन बताया है, जो सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के बेलौर गांव के मियां तलब मियां का पुत्र है। पुलिस ने इसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है और 10 मवेशी तथा उसकी पिकअप गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर आरोपी गाड़ी लेकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर इसको पकड़ा और गाड़ी तथा मवेशियों को जब्त कर अब आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह आरोपी पिछले साल से ही फरार चल रहा था। पकड़े गए आरोपी का नाम पिंटू शाह, पिता विसर्जन शाह, जो माझा के भोजपुरवा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इसको गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना और निष्पादन के लिए आवश्यक पदाधिकारियों को निर्देशित किए। प्रत्येक दिन पुलिस अधीक्षक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने कार्यालय में लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी 403 पैकेट बंटी बबली शराब के साथ एक ई रिक्शा को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने यह कार्रवाई बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सीसवा टोला में की, जिसके बाद चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। शराब और ई रिक्शा को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही उत्पाद पुलिस ने बिशंभरपुर के विनोद मटिहिनिया में भी कार्रवाई की। यहां 15 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी संजय कुमार परशुराम प्रसाद बताया जा रहा है। यह अहिरौली दान थाना तरिया सुजान कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले परशुराम प्रसाद का पुत्र है। गिरफ्तार आरोपी के पास से मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कटिया पुलिस ने कल्याणपुर गांव में हुई मारपीट से संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर ली है। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है और खूनी संघर्ष हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराई। इस संबंध में दोनों पक्षों ने कटिया थाने में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब इस मामले में पुलिस ने दोनों आवेदन पर केस दर्ज किया है। साथ ही एक पक्ष से नामजद आरोपी राम अवध भगत पिता जमुना भगत और शास्त्री भगत पिता राम अवध भगत को गिरफ्तार किया है। और दूसरे पक्ष से नामजद अभियुक्त लक्ष्मी शाह, पिता स्वर्गीय विश्वकर्मा शाह तथा एक विधि विरुद्ध बालक को पुलिस ने पकड़ा है। अब इन चारों पर पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 18 लीटर देशी शराब भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी सुनील सिंह, पिता स्वर्गीय कृष्णा सिंह, साकिन सरया, वार्ड नंबर 13 राजवाही कॉलोनी थाना नगर को गिरफ्तार किया गया है और उसके घर से विधिवत पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के बाद एक दूसरे मामले में आरोपी राजन कुमार, पिता लुहेली बीन, साकिन सासा मुसा बिनटोली थाना

0: आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना के द्वारा बिहार के गया जी जिले के टनकुप्पा प्रखंड अंतर्गत गजाधरपुर एवं बरसौना गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य किसानों के बीच टिकाऊ कृषि पद्धतियों, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर मणि भूषण एवं वैज्ञानिक डॉक्टर घोष अली द्वारा तथा कृषि विज्ञान केंद्र गया के डॉक्टर अशोक कुमार ने किसानों को संतुलित एवं विवेकपूर्ण उर्वरक उपयोग, एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व और वैज्ञानिक तरीके से मृदा नमूना संग्रहण, हरी खाद के उपयोग तथा रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अवैध अस्पतालों पर जिला प्रशासन ने की छापेमारी। नीट की परीक्षा को लेकर जोर शोर से चल रही है तैयारी, जिला पदाधिकारी ने की बैठक। 4 गुमशुदा किशोरियों को दिल्ली और लखनऊ से पुलिस ने किया बरामद। वन स्टॉप सेंटर पर जिला पदाधिकारी ने की कड़ी कार्रवाई और पशु तस्करों को पुलिस ने दबोचा। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
6: ठक ठक
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम, RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
11: एक रंग इश्क का।
12: अब तक चढ़े इश्क के रंग में आपने मीनल के अल्हड़पन को, उसके बचपन को और उसकी प्यारी सी दोस्त अमिया को जाना। आपने ये भी जाना कि कैसे सपनों की उड़ान ने उसे अपने घरौंदे से दूर लाकर एक अजनबी शहर मुंबई

0: छोड़ दिया है और यहाँ उसकी पहली नजर मिली कॉलेज के एक टीचर डेविड से। और नजरों से बात जब मुलाकात तक आई तो क्या हुआ, क्योंकि ये पहली बार था जब डेविड ने सामने से मैसेज किया था, कल शाम 5 बजे यूनाइट कैफे, तुमसे कुछ खास बात करनी है। क्या सच में मीनल वहाँ गई भी थी? तो डेविड ने उसे क्या कहा, सारे राज से पर्दा उठेगा। तो आइए अब उसके आगे का पन्ना पलटते हैं।
1: एक रंग इश्क का।
0: हाय, सुन रहे हैं एक रंग इश्क का। कोई क्या समझेगा मेरे हालात जज्बात के, कोई क्या समझेगा मेरे हालात जज्बात के, कोई दिल पा के तड़पा हो तो बात और है। सपनों की दुनिया है, अक्सर हल्की सी नींद में भी ख्वाबों के पर लगाकर जिंदगी खूबसूरत रास्ते को तय करती है। मीनल के हालात कुछ ऐसे ही थे, ना जाने कितने ही ख्याल उसके जहन में अंगड़ाइयां ले रहे थे। उसके हालात कुछ ऐसे बने थे कि खुद में खुश रहती और हर हिस्सा बेहतरीन सा लगता था, मोहब्बत सी थी फिजाओं में शायद। डेविड ने मीनल को बुलाया जो था मिलने के लिए, पूरी रात बेचैन सी थी मीनल, गद्दे पर करवटें बदल बदल के रात गुजारने को मजबूर सी थी। एक पल को उसे लगता कि वो नींद में है, पर अचानक मुस्कुराते हुए खुशी से आंखें खोल लिया करती थी। क्या अल्लड़ मस्त थी जिंदगी में जीने वाली मीनल को सच में इश्क का रंग चढ़ गया था? शायद हाँ, शायद यही था। उस रात मीनल की कश्मकश की गवाही तो उसके बिस्तर की सिकुड़े ही बता रही थी, जो अभी भी कई जगह से मुड़ी हुई है। तकिए पे भी हल्की सी सिमटन है, जैसे किसी ने उसे रात भर दबोच के रखा था। ऐसे जकड़ा था जैसे किसी ने उम्मीद से किसी को बाहों में जगह दे रखी हो। मीनल उठी, अपने बिस्तर को देखा और हंसते हुए उसे ठीक किया, फिर नहाने चली गई। अपने कमरे में आई और रोज की तरह तैयार होने लगी, पर आज रोज से कुछ ज्यादा ही वक्त लग रहा था उसे, क्योंकि बीच बीच में वो अपने ख्यालों में खो जाती थी। फिर वही कहानी दोहराई जाती थी, अम्मिया उसके पास जाती और उसे होश दिलाती, मीनल तैयार हो जा, डिपार्टमेंट भी जाना है। मीनल भी हंस के या फिर कई बार उसे झिझक के हाँ हाँ करके तैयार होने बैठ जाती। मीनल ने अपनी पसंदीदा लाल कुर्ती पहनी थी आज, और साथ में अपनी लाल सैंडल भी। उसने अलमारी में जाकर अपनी डायरी को निकाला, जैसे उसे उसमें कुछ लिखना हो, पर फिर उसने उस डायरी को गले से लगाया, हल्का सा चूमा और बस हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, थोड़ी शर्माती हुई उसको अंदर रख दिया और जल्दी जल्दी डिपार्टमेंट जाने के लिए तैयार होती लगने के लिए अम्मिया को चिल्लाकर बोली, अम्मिया तुझे डिपार्टमेंट नहीं चलना क्या, कितना लेट करेगी, चल जल्दी। इस पर बेचारी अम्मिया मुंह फुलाकर बोली, अच्छा हाँ हम ही तो लेट कर रहे हैं, बाकी तुम तो बचपन से तैयार बैठी हो। इस पर मीनल ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा अब बकवास न कर, जल्दी चल चल फटाफट। दोनों डिपार्टमेंट पहुंची। मीनल का ध्यान अपने सेक्शन से ज्यादा बाहर की तरफ था, जहां उसकी नजरें डेविड को ढूंढ रही थी, पर बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखे जा रही थी, उसे शाम के 5 बजने का आज बड़ी बेसब्री से इंतजार था। उसका बस चलता तो इस वक्त दुनिया की हर घड़ी का टाइम आगे बढ़ाकर जल्द से जल्द 5 बजवा देती। मीनल क्लास में बैठे बैठे बाहर देखती, रोड की तरफ ध्यान देती, सबसे हंसते हुए बात करती और फिर किसी ख्याल में खो जाती। अभी दिन के 11 बजे थे, लेकिन मीनल की शक्ल पे 12 बजे हुए थे। अम्मिया ने उसे छेड़ते हुए पूछा, मीनल तुम खाना खाने चलोगी या फिर शायद तुम्हें भूख ही नहीं लगी? मीनल ने भी उसका हाथ मोड़कर बोला, अम्मिया की बच्ची तो कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं बन रही, सोच ले फिर से। फिर दोनों सहेलियां कुछ हटकेलियों के बाद हंसने लगी। हर तरह की हंसी और हर तरह के मजाक के बावजूद मीनल का दिमाग अभी भी यूनाइट कैफे पे था, जहां उसे शाम 5 बजे पहुंचना था। उसने सोचा डेविड को एक मैसेज कर दे, क्या आखिर वो आए क्यों नहीं, पूछे तो सही कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं, लेकिन फिर कुछ सोच कर मोबाइल नीचे रख दिया करती। अब वो सोच रही थी कि किस तरह बस 5 बज जाएं और वो यूनाइट कैफे पहुंच जाए और जान जाए कि आखिर डेविड उससे क्या कहना चाह रहा है। पर वहां जाने के लिए सोचते वक्त उसके जहन में एक और बात घूम रही थी कि आखिर मैं उनको बोलूंगी क्या, डेविड सर या सिर्फ सर, क्या कहना ठीक रहेगा, शायद सर ही ठीक है। शाम के 4:30 बज चुके थे। मीनल ने अम्मिया को बोला कि वो कहीं काम से जा रही है, हॉस्टल लगभग 8 बजे तक आ जाएगी और अगर कोई काम रहा तो उसे कॉल कर देगी। अम्मिया ने जानना चाहा कि आखिर वो जा कहां रही है, पर मीनल ने बात को घुमा दिया और उसे अकेले ही हॉस्टल रूम में भेज दिया। मीनल ने वॉशरूम में जाकर खुद के चेहरे को साफ किया, अपने ऊपर बैग में से परफ्यूम को निकालकर छिड़का। मीनल आज खुद की नजरों में भी सिंपल लेकिन काफी खूबसूरत लगना चाह रही थी। वो दोनों बातों का ख्याल रख रही थी कि उसे अच्छा भी लगना है, साथ ही ये भी नहीं जताना कि उसने किसी तरह की कोई ज्यादा जद्दोजहद की है। आने से पहले मीनल यूनिवर्सिटी से बाहर निकली और ऑटो लिया। भैया यूनाइट कैफे चलेंगे?
2: जी मैम साहब, बैठिए।
0: जी मीनल कैफे ठीक 5 बजे ही पहुंच चुकी थी और उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
6: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
6: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
0: मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ, तुम टेबल नंबर 5 पर मेरा इंतजार करो, वो हमारे नाम से बुक्ड है, मीनल कैफे में बढ़ती है। वेटर ने उसे टेबल नंबर 5 पर बिठाया। अब ये संयोग की बात है या फिर कुछ और कि उस टेबल पर सजावट लाल रंग से थी। मीनल की खुशी मानो बढ़ सी गई। ये शायद किसी तरह का इशारा है ऊपर वाले का। पर क्या डेविड ने जानबूझकर उस लाल रंग के टेबल को बुक किया था, या फिर ये भी एक संयोग था, क्योंकि वहाँ पर और रंग के भी टेबल थे। खैर जो भी था, मीनल बड़ी खुश थी। मीनल बैठी हुई थी, अपने ख्यालों में खोई हुई सी, कुछ मोबाइल पर मैसेज वगैरह देख रही थी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई आया है। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो डेविड था। उसने नीली जीन्स के ऊपर रेड टी शर्ट पहनी थी और उसके ऊपर से एक ब्लैक ब्लेजर। काफी हैंडसम दिख रहा था डेविड। उसने अंदर आते हुए अपने चश्मे को उतारा और मीनल की तरफ बढ़ा। मीनल की धड़कनें इतनी तेज थी कि अगर कोई ध्यान से सुनना चाहता तो शायद उसे बाहर तक आवाजें सुनाई देती। डेविड ने उससे मुलाकात की और उससे उसका हाल पूछा।
11: हाय, कुछ ऑर्डर किया तुमने?
0: और बात करने लगा। मीनल ने थोड़ी देर बाद पूछा, हाँ कुछ कहने वाले थे आज। मीनल पूरी तरह से नॉर्मल और चुलबुली रहने का दिखावा कर रही थी, पर अंदर ही अंदर उसके अरमान कुछ और ही सुनना और जानना चाह रहे थे। डेविड ने बड़ी ही आराम से अपनी भारी आवाज में कहा,
11: हाँ वो मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा।
0: इतना सुनते ही मीनल की नजरें नीचे झुक गई। उसकी धड़कनें अब उसके काबू से बाहर थी। फिर डेविड ने कहा,
11: मैं तुमसे जब भी बात करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी कल मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था तो अचानक मुझे वो बात याद आ गई कि तुम्हें मेरी सबसे बुरी पेंटिंग काफी दिलचस्प लगी थी। देखो सच बताऊँ तो तुम्हारे नजरिए से देखने के बाद मैंने भी उस पेंटिंग में खुद की तलाश की और मुझे भी अब वो काफी पसंद आ रही है। मैं जानता हूँ कि तुम दूसरे डिपार्टमेंट की छात्रा हो, बट आई वॉन्ट टू टीच यू पेंटिंग। क्या तुम उससे सीखोगी? शायद तुम्हें सिखाते हुए मैं खुद की तलाश पूरी कर पाऊँ। और ये बात मैं तुमसे कॉलेज कैंपस में नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ मैं बड़ा शांत सा रहता हूँ और वैसे भी लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे। और अब तुमसे दोस्ती होने के बाद मैं किसी तरह का बवाल नहीं चाहता।
2: मीनल ने खुशी खुशी डेविड की बात मान ली। अब उसे थोड़ा सा झटका सा भी लगा था कि जो बात वो सोच के आई थी वैसा कुछ भी तो नहीं हुआ आज। थोड़ी देर बात करने के बाद डेविड ने मीनल से कहा,
11: खैर चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगता है। कई दिन के बाद एक दोस्त मिला है, एक अच्छा दोस्त।
2: मीनल के लिए दोस्ती भी बहुत खास थी, उसने मुस्कुराकर कबूल किया था। वो बाहर निकले, सामने ही डेविड की कार पार्क थी। उस तक पहुंच ही रहे थे कि अचानक मीनल का सैंडल मुड़ा और मीनल ने अपना बैलेंस खो दिया। वो गिरती उससे पहले ही डेविड की मजबूत बाहों ने मीनल को थाम लिया। आज पहली दफा मीनल को किसी ने यूं पकड़ा था। मीनल ने चेहरा ऊपर किया, ऊपर डेविड की शक्ल थी। वक्त जैसे रुका सा था। क्या कोई फिल्मी सीन चल रहा था ये? पता नहीं, पर मीनल सुन्न सी थी। डेविड ने मीनल के चेहरे और होठों को देखा। शायद एक पल को यूं लगा कि डेविड और मीनल अपने में थोड़ा कमजोर होकर एक दूसरे के होठों को सहारा देंगे, पर उससे पहले ही कुछ ख्याल सा आया और संभलते हुए डेविड ने मीनल को उठाया।
11: तुम ठीक तो हो ना? आर यू फाइन?
2: जी।
11: ऐसा ही एक वाकया रोशनी के साथ भी हुआ था जब हम पहली बार मिले थे।
2: मीनल के जहन में बिजली सी कौंध गई। कौन रोशनी? मीनल ने सवाल किया।
11: माय वाइफ।
2: मीनल के पैरों तले जमीन हिल सी गई थी। क्या मीनल के दिल में अभी भी डेविड के लिए कुछ बचा था? उस दिन मीनल की डायरी में वो पन्ना कुछ इस तरह का था। कुछ कांटे हैं जो गुलों से बेहतर, कुछ कांटे हैं जो गुलों से बेहतर, ये किसी हुस्न पर फिदा नहीं होते। बड़े ही शौक से जख्म देकर अक्सर अपना पना लेने का हुनर जानते हैं। डेविड से रोशनी के बारे में जानने के बाद मीनल और डेविड का हॉस्टल तक का रास्ता कैसे गुजरा और क्या गुजर रहा था मीनल के दिल पर?
12: क्या डेविड ने सच में सिर्फ इतनी सी बात के लिए मीनल को कैफे बुलाया था? ये उसके मन में जो था उसने बताया ही नहीं।
2: सब नजर आएगा जब दिखेगा और एक रंग इश्क का।
1: एक रंग इश्क का।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
7: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल
1: नहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर।
2: That's right, stay tuned for coming up next समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन followed by मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश at 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
1: नमस्कार।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
7: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
8: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
6: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
8: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार

0: पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान

0: बिहार में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन। पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है। क्या हम सुन रहे हैं? पहले मौसम बदलता था, अब बिगड़ता है। प्रकृति से सिर्फ लिया, कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87-894-18744।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: आरआर मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायको,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
7: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
9: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी, गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
7: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।

Nestle J.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में उद्यान परियोजना के अंतर्गत 1,00,000 पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। मुख्य समारोह पटना स्थित लोक भवन में होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ के बाद न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को उनके सम्मान में पटना हाईकोर्ट में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले न्यायमूर्ति मीनाक्षी सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 8 जून तक आयोजित होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकारी भवनों के सौर ऊर्जाकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के 2 वर्ष पूर्ण होने तथा 1 करोड़ छतों तक सौर ऊर्जा के विस्तार के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य की ओर से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक और ब्रेडा के निदेशक राहुल कुमार ने ये सम्मान प्राप्त किया। राज्य सरकार ने इसे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। इधर महिलाओं की सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पिंक बस सेवा के लिए बिहार का चयन प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड के लिए किया गया है। ये पुरस्कार आगामी 20 जून को नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच समिट के दौरान प्रदान किया जाएगा। पिंक बस सेवा को महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस उपलब्धि से राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। कृषि विभाग ने खरीफ मौसम से पहले उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत राज्य में 29 उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 208 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में किसानों को उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और निर्धारित मूल्य पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
2: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई द्वारा उपलब्ध कराए गए विश्लेषण या एल्गोरिथम निर्णय लेने पर आधारित नहीं हो सकता है। मसौदे पर लोगों से इस माह की 20 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रचारित उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय छात्र लैपटॉप योजना 2026 के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने बताया है कि ये दावा फर्जी है। कार्यालय ने कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना या विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस वर्ष 5 जून को 1973 से मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: इधर राजधानी पटना के जेपी गंगापथ समग्र उद्यान परियोजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 1,00,000 पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी आमजनों से अधिक पौधारोपण कर धरती पर हरियाली बढ़ाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों को बिजली की बचत, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने, ईंधन बचाने और ईवी वाहनों के उपयोग करने को कहा है। मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।
2: दिनांक 5 जून राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
0: इधर पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर व्यक्तिगत और सेवा संबंधी सूचनाओं का सत्यापन तथा संशोधन शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि आज के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद इस पोर्टल पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड के मैन पुरंदा पंचायत में राजस्व कर्मचारी राणा रणविजय गोपाल को 45,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान राजस्व कर्मचारी के सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर्मचारी पर अवैध अतिक्रमण को हटाने संबंधी रिपोर्ट देने के बदले राशि ले रहा था। रोहतास जिले के विभिन्न स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 142 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे ने संबंधित नियोजन इकाइयों से इन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। ये सभी शिक्षक पिछले 10 साल से वेतन ले रहे थे। अररिया जिले में निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूलने वाले बस संचालकों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बस संचालकों को यात्रियों से केवल निर्धारित किराया ही लेने का निर्देश दिया। भोजपुर पुलिस मध्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में 1.5 किलो से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। अररिया जिले के भरगामा प्रखंड अंतर्गत खजूरी पंचायत के बलुआही टोला में एक पोखर में नहाने के दौरान डूबने से 3 किशोरियों की मौत हो गई। अरवल जिला प्रशासन की ओर से बैंकों की जिला स्तरीय परामर्शदात्री और समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार और जनहित से जुड़े विषयों पर समीक्षा की गई। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना के जेपी गोलंबर पर आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण साई पटना की ओर से विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर 7 जून को फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली सुबह 6 बजे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू होकर पटना जू तक जाएगी। इस आयोजन में राज्य के विभिन्न खेल संघों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के साथ साथ सशस्त्र बलों के जवान भी भाग लेंगे। रैली का उद्देश्य लोगों को फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सड़कों पुलों के रखरखाव में कोताही बर्दाश्त नहीं। दैनिक जागरण लिखता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सरकार नौकरी सिर्फ निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही। दैनिक भास्कर ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बिहार में मौसम के दो रंग, दक्षिण में लू, उत्तर में वज्रपात का अलर्ट, मॉनसून ने केरल में दस्तक दी। प्रभात खबर ने मुजफ्फरपुर अस्पताल में अग्निकांड की खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, आईसीयू बन गया शमशान, 6 मरीज जिंदा चले। और अब अंत में मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में उद्यान परियोजना के अंतर्गत 1,00,000 पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
8: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
9: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट।

0: एक्स्ट्रा में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
0: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कइले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सुनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते, अनिल बात कर रहा हूँ छोटपुर से।
2: जी नमस्ते, क्या हाल चाल है अनिल जी?
1: बस बढ़िया है, आप आ गए, बाहर आ गया और इस तापमान में भी लग रहा है ठंडक आ गया।
2: ये तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: हाँ, एक ना आप गायब थी, मतलब सॉरी गायब नहीं कहा जा सकता, कोई कार्यवश ही बाहर थी, थोड़ा सा गलती हो गया बोलने में।
2: कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है।
1: हाँ, मान भी ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं अभी।
2: तो कोई इरादा नहीं था मेरा भी इतना दिन रहने का, लेकिन समय का कुछ कह नहीं सकते।
1: इसीलिए दो दिन कार्यक्रम में आपके जुड़े हैं लेकिन गाने का फरमाइश नहीं की।
2: चलिए कोई नहीं, आज बता दीजिए।
1: अभी तो कॉल मिला रहे थे, एक ही बार में लग गया।
2: पहला कॉल भी है आपका?
1: पहला ही है। चलिए तो और अच्छी बात है, खुशी दुगना हो गया और ये भी चमत्कार से कम नहीं है।
2: बिल्कुल, ये तो और भी बड़ा चमत्कार है कि पहला कॉल लग जाए।
1: हाँ,
2: तो बताइए,
1: गाना सुना दीजिएगा। कुमार सानू का गाना है, इस फिल्म कौन सा फिल्म है, कुली नंबर 1 मूवी से है, क्या मजनू क्या रांझा क्या फरहान।
2: अच्छा, और गाना डेडिकेट भी है।
1: सबसे पहले आपको और सारे लिसनर्स को।
2: और आपका लल्ला का क्या हाल है?
1: लल्ला ठीक है।
2: चलिए,
1: कभी कभी से खिलाते खिलाते बोलते थे कि आपकी सोनी बुआ जो है वो पता नहीं कहाँ चली गई है।
2: अच्छा,
1: तो अब तो खिलखिलाता है, बहुत अच्छा हंसता है, अब शरारती थोड़ा थोड़ा हो रहा है।
2: कितना दिन का हुआ, 4 महीना का हुआ? तो
1: नहीं, 3 महीना हुआ अभी।
2: 3 महीना हुआ अभी, अब शुरू होगा। 5 महीना होते होते बच्चा तो थोड़ा हो ही जाता है।
1: हाँ, आशीर्वाद रहेगा तो सब सही है। मान लीजिए कि आपे पिपाना क्या है, एक सुचिंतक के रूप में ही तो आप पूछ रही हैं।
2: जी बिल्कुल
1: जी, नहीं तो आपसे तो एक रेडियो का ही दोस्ती है जो भी है।
2: सामने से तो नहीं जानते हैं, जो भी है बातचीत रेडियो पे ही है।
1: जानती हैं, वक्त इतना मतलब मासूमियत से निकल जाता है ना कि उसका कोई मतलब ये नहीं है। हम सोचते सोचते आज तक नहीं आए गोपालगंज।
2: कोई नहीं, जिस दिन आना होगा उस दिन खुद पे खुद आ जाइएगा। और पता भी नहीं रहेगा कि आज जाना है, और आदमी जब जाना होता है तो चला ही जाता है।
1: और ये भारती जी आई थी, वो
2: है अभी। अच्छा, बोले कि आज हमें रिकॉर्ड करने दीजिए, काफी दिन हुआ लिसनरों से बात किए हुए।
1: हम भी सोच रहे थे अगर आज के रिकॉर्डिंग में आप नहीं होती ना तो हम खुद कॉल करते आपको।
2: अच्छा अच्छा,
1: तो तब तक आप मिल ही गई, शायद मन में था वो मन में आ गया।
2: बोलते है ना कि अगर शिद्दत से कुछ चाहो तो मिल जाता है।
1: हाँ,
2: चलिए फिर बात होगी।
1: ठीक है
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किए।
1: थैंक यू,
2: वेलकम।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हम रामा जी बोलते हैं ठाणे से।
1: जी, क्या हाल चाल रामा जी?
0: हाल चाल क्या कहा जाए, घाम जितना होता है कि पसीना से कपड़ा भींग जाता।
1: कोनो बात ना, पानी से नहाए के जगह पसीने से नहाली।
0: हाँ वह तो कम होता, कहा कह जा। गाना सुना दी?
1: जी बिल्कुल, बता दी गाना के नाम।
0: कहे का सब कोई अपन अपन कहे वाला केहू नहीं है।
1: नहीं वो तो बात बढ़ ले, अभी का समय ऐसा बा। तो गाना डेडिकेट भी रही,
0: जितना तो सुन जा सब कोई रही।
1: चली प्ले कर दी गाना।
0: हाँ कर दी। नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
8: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
8: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
13: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
12: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम 90.4 FM में।
14: गुड मॉर्निंग मैडम।
12: जी गुड मॉर्निंग।
14: रामा संसारी बोल रहे हैं।
12: जी क्या हाल चाल है?
14: बढ़िया है, आपने सुनाइए।
12: मेरा भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था अभी?
14: बस सिलाई का काम करते हैं, काम हो रहा है।
12: अच्छा अच्छा, दुकान पे है अभी।
14: जी
12: तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
14: हमको कुल्ली फिल्म का गाना है लम्बू जी लम्बू जी।
12: जी
14: और ये गाना इसमें रेडियो रंजन सुनने वाले श्रोता है सबको सुनाना चाहता हूँ। जो हमारे दुकान पे कारीगर काम करते हैं सब सुनेंगे।
12: जी तो प्ले करे गाना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमे कॉल।
14: धन्यवाद।

0: चले नाम।
1: हम इस लड़की के बेजार हो गए। ये लड़की घर से बार बार भाग जाती।
2: अब हमारे पास पैसा नहीं ला, तुम इसको शादी बना के लेके जाओ, ये तुम्हारा स्पेशल इनाम।
1: लंबू जी।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी हम बनारस से रमजान।
0: जी कैसे हैं रमजान जी?
1: बढ़िया है।
0: तो क्या हो रहा था अभी?
1: जी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी त्योहार था, अभी काम खुला है, त्योहार बीत गया, काम खुला है, काम हम लोग चालू कर रहे हैं और रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं।
0: तो अच्छी बात है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: सुनवा दीजिए मूवी रक्षक का, सौ सट्टी का
0: मूवी रक्षक का,
1: उसमें का वो गाना है कुछी कुछी।
0: अच्छा, और डेडिकेट भी करिएगा
1: जी सबसे पहले आपको और जितने श्रोता सभी को, अपने हम भी सुनेंगे, अपने दोस्त लोग को भी साथ सुनेंगे।
0: चलिए तो प्ले कर रहे गाना
1: जी।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
6: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
7: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
6: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
7: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
7: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार, महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
12: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो रेडियो रिमझिम
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी हेलो मोर चॉइस ने।
0: जी जी हेलो माय चॉइस में।
1: धन्यवाद बहन जी।
0: जी आप अपना नाम बता दीजिए।
1: जी मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपका नियमित श्रोता सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ बहन जी।
0: जी जी क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया है बहन जी, और हम तो अभी एकदम बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है और अपने खेती बाड़ी के कार्यो में व्यस्त है बहन जी।
0: ये बढ़िया है, वो भी है।
1: और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं बहन जी कि जितने हमारे रेडियो रिमझिम के आर्य उद्घोषक भाई बहन हैं सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, भगवान से यही प्रार्थना है।
0: धन्यवाद। तो आज गाना कौन सा सुनवा दे आपको?
1: आप कौन बोल रही हैं? आपकी आवाज जो है बहुत ही मधुर, मनमोहक, मीठी और प्रोग्राम पेश करके क्या कहने बहन जी।
0: जी मेरा नाम सोनी है।
1: सोनी बहन जी, तो आपके लिए दो लाइन की पंक्ति है, अगर इजाजत हो तो बोलूं।
0: जी बिल्कुल।
1: जी, खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते, खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते, इन आँखों में रंगीन नजारे नहीं होते, हम भी न करते परवाह अगर रेडियो रिमझिम से बहन सोनी जी के द्वारा पेशकश किया गया कार्यक्रम हेलो चॉइस इतने प्यारे न होते, इतने प्यारे न होते, इतने प्यारे न होते। सोनी बहन जी
0: क्या बात है।
1: और गीत ऐसा है बहन जी, गीत तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ आपके कुछ प्रशंसक श्रोताओं का भी नाम ले लूं क्या बहन जी, इजाजत हो तो? जी, तो हमारे कन्या दमोह बालाघाट से श्रीमान धुरवा राम साहू गुरु जी है, अखिलेश यादव जी है, डोंगरिया मलाजखंड से मुन्ना लाल पटले जी है, मालेगांव मलाजखंड मध्य प्रदेश से हमारे बसंती बघेल बहन जी है, और हमारे सकर सोमनी जिला राजनांदगांव से नारायण लाल साहू जी है, गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास मानीपुरी है, आर्यन रेडियो के आप ही की तरह आरजे उद्घोषिका बहन पूनम गौतम जी है, और हमारे सागर मध्य प्रदेश से बहन जी प्रोफेसर भाई साहब हमारे चंद्रेश गौहर जी है, दुल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप है, ब्रिजेंद्र भाई विश्वकर्मा साहब जी है, और हमारे मुकेश नायक सर जी है। तो बहन जी, और गीत ऐसा है बहन जी कि हम तो आपके रेडियो रिमझिम से बहुत ही प्रेम मोहब्बत करते हैं बहन जी, तो ऐसा है कि उसके उससे संबंधित एक गाना है, बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। क्या है बहन जी, आज इंसान जो है इतनी बुद्धिजीवी है कि आज मानव जो है चांद सितारों पे पहुंच गए बहन जी। आपको भी भगवान ने इतनी बढ़िया आवाज और इतनी बढ़िया आवाज के नेमत दे रखी है बहन जी कि आपके आवाज के माध्यम से कहां नहीं पहुंच गए बहन।
0: चलिए तो फिर बात होगी आपसे।
1: जी बहन जी।
0: जी
1: बहन जी, तो यह गाना यदि आपके उपलब्ध होगा या कहीं मोबाइल स्क्रीन पर निकल जाए तो जरूर सुनवाइएगा बहन जी, क्योंकि यह गाना बहुत ही भावपूर्ण गाना।
0: जी ये गाना बिल्कुल चलेगा, शाम को 5 से 7 के बीच में चलेगा और कल सुबह 9 से 11 के बीच में, ठीक है?
1: जी धन्यवाद सोनी बहन जी, आपने मेरी कॉल उठाए, कॉल रिसीव की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं रेडियो रिमझिम का सदैव दिल से आभारी हूँ बहन जी।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हेलो माय चॉइस में कॉल किया।
1: धन्यवाद बहन जी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Now pick your phone up.

0: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्कार सोनी जी।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
1: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं सहारनपुर से।
2: जी, कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
1: बढ़िया
2: है। तो क्या हो रहा था अभी?
1: अभी काम ड्यूटी चल रहा है।
2: अच्छा अच्छा, तो आपको कॉल रिसीव करते कैसे पता चला कि मैं ही हूँ?
1: आवाज तो पता चल रही है।
2: अच्छा, चलिए फिर तो अच्छी बात है।
1: लगा था ना बीच में, एक महीने घर पे गए थे, कॉल नहीं किया। शादी था घर पे।
2: किसका शादी था?
1: भाई का शादी था, 12 मई का अभी खत्म हुआ है। तो मैं आया इधर, परसों आया इधर, कल को पहुंचा, कल से ड्यूटी कर रहा हूँ।
2: चलिए बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: दूध का कर्ज में तो सुनवा दीजिए, तुम्हें दिल से जुदा कैसे करेंगे।
2: और सुनवाना भी है?
1: रंजीत है इधर, अपना वरुण पांडे है, टिंकू पांडे है, अपना सुनेंगे।
2: प्ले कर रहे हैं गाना आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल की।

0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजी में।
1: थैंक यू मैम। मैं अहमद रंजी साढ़े आवाज नंबर 1 से।
0: जी जी, क्या हाल चाल?
1: ठीक है, सनी मैम बोल रहे हैं।
0: हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं।
1: क्या हाल चाल है मैम?
0: एकदम बढ़िया। तो क्या हो रहा है?
1: आरती मैम भी काम करके वो, लेकिन आवाज से आपको पहचान दिया जाता है।
0: वही करने वाली थी, लेकिन बोले कि दीजिए आज हम बात करते हैं, थोड़ा काफी दिन हुआ लिसनर से बात
1: की है। जरूरी है।
0: जी जी।
1: तो नाश्ता हुआ है?
0: हाँ जी, नाश्ता हो गया है, हम खाना खा के आए हैं।
1: लेके आई है?
0: हाँ, लेके भी आए हैं।
1: नहीं लेके आइएगा तो बोलिए, हम आएंगे।
0: बिल्कुल, हम आ जाएंगे।
1: आइए ना मैम, आइए, आपका स्वागत है।
0: जिस दिन नहीं लेके आएंगे, फुर्सत में रहेंगे तो जरूर आएंगे, ज्यादा दूर थोड़ी है।
1: आइए
0: तो गाना कौन
1: के लिए बंदा हाजिर है?
0: अच्छा जी, बिल्कुल।
1: अभी कभी के साथ ऐसा नहीं, अकेला?
0: हाँ, वो भी तैयार है, ऐसा तो बात नहीं। आप तैयार है तो वो नहीं रहेंगे। तो बताइए, आप गाना कौन सा सुनवा दें?
1: गाना हमका सुनवा दीजिए, बेखुदी मूवी से, आए ही मेरे याद, जब होगा पूरा हाल तो देख के ये रुमाल मुझे याद करना।
0: और गाना डेडिकेट भी रहेगा।
1: सबसे पहले आपको, कमरान भाई को, दिलीप भाई को, राघव जी को, चलिए आप सुनाना है जो भी रेडियो जिन तरह से सुन रहे हैं सभी को।
0: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: थैंक यू मैम, सलाम।
0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल की

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज

0: और ऑपरेशन भी हो जाए।
1: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
4: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मैम
2: जी गुड मॉर्निंग,
1: कैसी हैं मैम?
2: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी अच्छी हूँ।
2: आपकी आवाज कट रही है।
1: हेलो बताइए।
2: सब बढ़िया है जी, आप बताइए आपके घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
1: सब लोग अच्छे हैं। बढ़िया है।
2: आपकी आवाज कट रही है, आप थोड़े नेटवर्क वाले एरिया में जाइए।
1: हेलो
2: जी, कौन बात कर रही हैं आप?
1: निशा कुमारी, तरिया सुंदर।
2: अच्छा अच्छा, तो निशा जी आप हैं कहाँ अभी? घर के अंदर है रूम में?
1: रूम में,
2: इसलिए आवाज कट रही है। दरवाजे पे चले जाइए।
1: ठीक है, बोलिए। सुनाई दे रहा है?
2: जी जी। तो क्या कर रही थी निशा जी?
1: अभी कॉल लगा रही थी, लगाते लगाते अब जाके लगा है।
2: चलिए लग तो गया, तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: मैम आपका खाना पानी हो गया है कि नहीं?
2: नहीं, खाना पानी तो हो गया है, वो तो घर से ही करके आते हैं।
1: चलिए ठीक है, धूप तो बहुत तेज हुई है।
2: धूप तो हुई है, क्या करे, धूप से बचने का कोई तरीका बताइए।
1: धूप से बचने का बहुत तरीका है, छान लाना है।
2: धूप देख के तो बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है।
1: धूप होते होते घर में सब लोग चले जा रहे हैं।
2: 9 बजते कोई बाहर दिख नहीं रहा है। चलिए फिर बात होगी, बता दीजिए गाने का नाम।
1: तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ यादें आता है।
2: अच्छा, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
1: जी मैम, आपको और दिव्या मैम को और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजे को और मेरी दीदी है उनको भी और छोटे भाई है उनको भी।
2: चलिए तो प्ले करेगा ना
1: जी?
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल के।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87894-18744।
12: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
13: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
12: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
13: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
14: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
15: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
16: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
17: Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी, योगेश जांगड़े के मैं सर छत्तीसगढ़ से।
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी धन्यवाद
2: जी। क्या हाल चाल है योगेश जी?
1: बढ़िया है, अच्छा है, घर ही में है अभी।
2: अच्छा अच्छा
1: जी।
2: तो मौसम कैसा हुआ है आपके उधर?
1: मौसम तो वही धूप छाव रहता है, लेकिन बारिश का इंतजार है।
2: बारिश का इंतजार तो हम लोग को भी है इधर
1: जी।
2: तो परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
1: सभी अच्छे हैं।
2: ये तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: फिल्म ब्रह्मचारी से सुनवा देंगे, आजकल तेरे मेरे चर्चे हर जो प्यार के चर्चे हर जो बान पर।
2: जी, सबको मालूम है और सबको खबर होगी।
1: सबको खबर हो गई जी।
2: चलिए, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
1: श्रीपाल गोयल जी है, लोकेश वर्मा जी है, दिलीप पहुजा जी है, रोशन देवांगन जी है, तुकाराम जी है, भगवान सिंह परमार जी है, गौतम जी है, प्रेम सिंह जी है और तमाम सब।
2: चलिए तो प्ले करे गाना
1: जी। धन्यवाद
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इसमें कॉल की

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
0: पहचान गए?
1: पहचान तो रहे हैं, ठीक है, काफी दिन बाद आवाज सुन रहे हैं। तो धनेश मिश्रा?
0: हाँ हाँ जी
1: जी। जी जी।
0: कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: आज आपको मिल गया रिकॉर्डिंग करने का?
1: हाँ मिला, और हम भी बोले कि काफी दिन हुआ तो थोड़ा बात करें।
0: हाँ हाँ जरूरी भी है।
1: जी जी।
0: उनसे सारे लोग दुखी है।
1: ऐसा नहीं बोलिए, वो भी पास नहीं है।
0: नहीं तो हम क्या बोले, सब लोग तो यही बोल रहा है।
1: नहीं सब लोग नहीं, दुखी क्यों है भाई, वो उनको भी मौका दीजिए।
0: मौका दे ही रहे हैं। हाँ। बिल्कुल मौका दे रहे हैं, बिल्कुल मौका दे रहे हैं।
1: नहीं है तो थोड़ी सी हिचकिचाहट तो होगी बात करने में।
0: उनके उनके ऊपर आप थोड़ा वो करो कि सीख जाए।
1: हाँ तो चलाए। वही किया जा रहा है।
0: हाँ, क्योंकि आप छुट्टी पर आएंगे तो मैम चला लें।
1: हम नहीं थे उस बीच में, वो आई हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो गई।
0: तो थोड़ी सिखाइए, ढंग से सिखाइए।
1: बता रहे हैं, उनका भी ट्रेनिंग चल रहा है, बहुत जल्द आएंगी वो भी।
0: ऐसे ठीक है, हम उनकी नहीं कह रहे हैं कि वो, मैंने और सारे लोग तो बोल रहे हैं ना कि नहीं चलाती है।
1: हाँ बस बात ये है कि अब सबको मेरी आदत हो गई थी, अब अचानक से चेंज हुआ तो थोड़ी सी परेशानी हुई सबको। जैसे उनको भी नए लोग मिल रहे हैं तो उनको भी परेशानी हो रही है, आप लोगों को भी है बस। और कुछ नहीं, वो भी आदत हो जाएगा उनको भी सुनते सुनते।
0: नहीं ठीक है।
1: तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: मेरा तो आज एक लिकेश तबाही का गाना है। लिकेश तबाही
1: और गाना
0: और अवकाश दिखा देलू, टेड सॉन्ग है।
1: अच्छा अच्छा,
0: वही आज सुना दीजिए।
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: डेडिकेट पहले नंबर तो आपको तो सुनाना ही नहीं था, लेकिन आपको ही पहले नंबर सुनाएंगे। दिव्या मैम सुनेंगी और भारती मैम भी सुनेंगी। वही आबादी सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
0: चलिए तो चलेगा ना?
1: जी बिल्कुल चलेगा।
0: चलिए ठीक है,
1: चलिए।
0: थैंक यू मैम।
1: थैंक यू
0: मैम।
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं कॉल किया।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
10: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
11: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
10: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
11: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
11: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
12: Now pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: गुड मॉर्निंग
2: जी। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है गणेश जी?
1: अच्छा, पहचान गए क्या?
2: बिल्कुल।
1: इतने से कहाँ भागे थे आप?
2: भागे नहीं थे भाई, कुछ काम था।
1: बाकी ज्यादा दिन छुट्टी हो गया, 10-15 दिन हो गया। और सब बताइए?
2: सब बढ़िया है।
1: भारती जी कहाँ पे हैं?
2: भारती जी भी यही है, दूसरा काम कर रही है।
1: तो धूप निकला है ना?
2: धूप का तो पूछिए मत।
1: खाली है कि नहीं?
2: नहीं, खाना तो खा के ही आए हैं। घर से बिना खाए मम्मी आने देगी क्या?
1: नहीं नहीं, ऐसे ही है।
2: वही तो,
1: बड़ा दिन हो रहा है, भूख तो लगेगा।
2: हाँ, तो लंच टाइम में लंच करेंगे, तो लंच भी लेके आते हैं। तो और बताइए दीदी का क्या हाल चाल है? ससुराल से वापिस आई कभी घूमने के लिए?
1: घूमने के लिए तो कल आई थी, कल नहीं, सोमवार के दिन।
2: अच्छा, तो एक ही दिन में चली गई?
1: मेरे गाँव पर रहनी है, तो वहाँ पे कलश उठाते हैं, तो वहीं पे आई थी।
2: हाँ, देखे थे हम भी वीडियो में, सिवान में कहीं हुआ था।
1: बरहानी बाजार बोलता है, बरहानी बाजार,
2: वो चौरा के तरफ से गया था कल।
1: और मेरा मम्मी भी बोल रही थी, सुनी थी हट गई क्या? मेरे को नहीं बोल रहा है, क्या पता किसके से हट गई।
2: नहीं, हटेंगे तो बता के जाएंगे।
1: नहीं तो भारतीय है ना, भारतीय दीदी, तो उसका उतना थोड़ा बोलने के हैबिट नहीं है।
2: तो नहीं है, अभी उन लोगों को पता नहीं है, जब वो भी पहचान लेंगी तो वो भी हो जाएंगी बात करने में।
1: ये
2: चलिए बात बहुत हुआ जी जी।
1: अभी कर इतना भी फोन करेगी, अभी तो मशीन चला रही, कपड़ा सी रही है।
2: चलिए बढ़िया है, आप बता दीजिए गाने की फरमाइश, फिर उनसे भी बात होगी, कॉल करेंगी तो।
1: बजा दीजिए शादी का गाना, बजा दीजिए हिंदी सॉन्ग में।
2: शादी का गाना हिंदी में, तो वही अब भी बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है शादी का हिंदी।
1: अभी बजा दीजिए अपना कोई पसंद से, बजा दीजिए।
2: इतने दिन बाद कॉल किए हैं, आपसे बात हो रही है, आप आज आप बता दीजिए, फिर हम प्ले करेंगे।
1: मुबारक है तुमसे शादी, तुम्हारी यही गाना।
2: चलिए, और डेडिकेट किसे रहेगा गाना?
1: आपको रहेगा, भारती मंच रहेगा, करिश्मा को रहेगा, पूरा रेडियो रूम रहेगा।
2: चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना
1: जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आप।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0975-675।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: Now pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
2: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, का हाल चाल बहु करिश्मा जी?
2: ठीक बा, आप कहे?
1: हमरो बढ़िया बा।
2: का होता?
1: बस रउआ लोनी से बात होता।
2: कहाँ गए रनिया का दीदी? तो कि ना होता नहीं है
1: गए रनिया कहीं घूमे फिरे।
2: हमने के पूछत है समय से भारती में कि कहाँ गए बनी तो कहनी अब वहाँ के बारे में हमने के ना पता।
1: भारती में हमके कैसे पता रही क्या कि भारती में हमके भी तो बता के ना गए रनिया।
2: वही से कहत रही जगह दिव्या मैम निकल गई रउआ से चुपके से निकल गए
1: नहीं। जी तो हम निकल रहे नहीं तो हम आवे खातिर निकल रही है ना। हम तो घूमे फिरे गए रही है।
2: हाँ, साफा के लिए चल गए नहीं।
1: हाँ, तो सिलाई हो गई?
2: हम करता नहीं।
1: अच्छा, क्या सियत रही है?
2: मम्मी की फिलहाल।
1: तब अब तो दीदी नहीं की तो सारा काम करे के पड़ता अकेले।
2: हाँ,
1: तब मन ना कर लगे तनी कबो कबो झगड़ा करती दीदी रहती तो
2: ना। मोबाइल पे करे नहीं।
1: अच्छा, मोबाइल पे करे नहीं मैंने झगड़ा जारी बा। चली बढ़िया बा फिर एकदम नहीं छोड़े के।
2: हाँ, तो चली नहीं बेटा?
1: हाँ जी बिल्कुल चली सो।
2: लेकिन शादी हम ना मैंने ठीक बा
1: जी परेशानी रह गए कोनो समझल करी बात के। शादी में ना आई नहीं ये ती आयम कब तो आ जाए
2: भैया के शादी में आयम
1: तो बराती ले जाए
2: ना लेके जाए
1: ना। बहुत जगह लड़की लोग के ना ले जाला लो इसे बोलनी है
2: हम तो लेके जाए।
1: अब तब हम आ जाए क्या हमारे बराती जाए में बहुत अच्छा लगे।
2: हाँ तो कोई आई ना फिर भेंट करे।
1: बिल्कुल पूरा कोशिश है। फिलहाल बता दी गाना कौन सुने के बाद?
2: गाना सुने के बाद कैसे नाम भरोसा करी प्यार के पावर पता जाने हम चढ़ गयी मरे टावर पर।
1: मरे ला की हमरे ला?
2: दोनों तरह बाटे।
1: अच्छा दोनों उतना ज्यादा नहीं की सुन ले वैसे पूछ लेनी है।
2: दोनों तरह से।
1: चलिए बढ़िया बात है। गाना डेडिकेट भी रही?
2: हाँ, सबसे पहले रहुआ के रही है भारती मैम के रही भैया क्या जितना सुनता नहीं लो लेकर हम।
1: चलिए तो प्ले कर दिलवा नहीं गाना। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल के।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्रीमियम में 104 FM में।
0: जी मैम धन्यवाद। नमस्कार मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
1: जी कैसे हैं सुनील जी?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम अभी, हम सोचे अभी टाइम हो गए तो फोन भी लगाए मैम। हमारे यहाँ तो अभी बारिश चालू है मैम, आपके वहाँ के मौसम के क्या हाल चाल है मैम?
1: हमारे यहाँ मौसम भी वैसे ही हुआ है बारिश जैसा, लेकिन अभी तो बारिश हो नहीं रही है।
0: जी जी जी जी
1: जी
0: तो आज एक फरमाइश है मैम, गाने के बोल तेरे इश्क़ में पागल हो गया दीवाना, यही अब सुनवाएंगे अपने रेडियो रिमझिम, जो लोग सुनते हैं सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके चलिए तो प्ले करेगा ना।
0: ओके मैम धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लंबाई चौड़ी कॉल किया।

0: राणा जी खबर पक्को है। वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।

0: दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
8: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
6: और 90-97-61-60-02।
9: Excuse me boss, you have a text message।

फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं आप सभी, तो बिल्कुल इस कार्यक्रम में अभी टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 7277-1665 पे। फिलहाल लिख के गाने प्ले करते हैं और इस गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 91.4 FM पे।

काफी प्यारे गाने सुन रहे हैं हम सभी रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे। सोशल लाइफ में फरमाइश का, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें या 90s के गाने की फरमाइश करें, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। और आज कोई दिक्कत नहीं होगी, और आज डिवाइस चेंज हो चुके हैं, और जैसे आप मैसेज करेंगे वैसे हमारे पास मैसेज पहुंच जाएगी। इसका आप लोग टेंशन ना लें, फिलहाल आप लोग मैसेज ज़रूर करें और अपनी फरमाइश ज़रूर बताएं हमें, ताकि आपकी फरमाइश हम सुना सकें आपको और आप सुनकर इंजॉय कर पाएं। आगे कुछ मैसेज पहुंचे और मैसेज में लिखा गया है कि हाय सर, हम सफरोज अली आखिल टोला से, और हमको गाना सुनना है, गाने का बोल सोना चांदी। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। आगे भी शब्द बताना चाहिए था इस गाने का, ताकि क्लियर हो सके। फिलहाल हम गाने प्ले करते हैं और आप सुने इंजॉय करें, और आगे से ध्यान रखिएगा कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो थोड़ा सा और लंबी लाइन बताएं, ताकि आपकी फरमाइश जो पसंद है वो सुनाई जा सके। अब पता नहीं ऐसे गाने कई आ जाएंगे, फिलहाल गाने तो हम प्ले कर रहे हैं, आप सुने इंजॉय करें।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
8: क्यों, क्या हुआ है?
7: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
8: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
7: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
10: FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और अभी हम सभी गाने सुन रहे थे दिलीप जी की फरमाइश, और क्यों ऐसा किए दिलीप जी, पगली के हाल बनाकर क्यों बदल गए, क्षण भर में नहीं बदलना चाहिए था। इनके तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि क्यों रोते हो उसकी याद में, कि क्यों रोते हो उसकी याद में जो तुम्हारा था ही नहीं, आंसुओं से भरकर, आंसुओं से अगर तकदीर बदलती तो आज भी कोई मेरा भी होता। सुनो भाई नमस्कार, समीर जी की सुपर सॉन्ग, दिलीप राम जी मैसेज करते हैं। बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने के फरमाइश उनके तरफ से भी की गई थी, और आगे मैसेज समीर जी की तो फरमाइश अभी आज आई ही नहीं। शुरुआती सॉन्ग जो था वो शफरोज अली जी की थी और उन्हीं के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है तो अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है निशा भारती के तरफ से, और उनके तरफ से कहा जा रहा है कि 3 दिन से मैसेज भेज रहे हूँ, तीनों सॉन्ग आपके पास है, कोई भी सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो कोई तो नहीं, आज जो गाने के फरमाइश की हैं उसी गाने को हम आपको सुनाते हैं, आप सुने इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो एमछम 94.4 FM पे। और जो भी श्रोतागण अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं वो अभी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं 72-77-16-65-96 पे, जैसे आपकी मैसेज पहुंचेगी वैसे आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेमछेम 94.4 एफएम सुन रहे आप सब। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि शुक्रिया भैया गाना सुनाने के लिए। दिलीप राम जी मैसेज करते हैं, चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमछेम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मेरा भी वेलकम कीजिए और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। शबीना खातून फ्रॉम न्यू लिलिया से, और कहती हैं कि तुझे चाहना मेरी आदत बन गई है, तेरे साथ जीने की चाहत बन गई है, दूर होकर भी पास रहते हो, ये मोहब्बत अब मेरी ताकत बन गई है। काफ़ी प्यारी लाइन। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स, इस सॉन्ग की एक्टर शांति प्रिया का लुक एंड फेस बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए, जब अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर जी, राम राम, कैसे हैं, और मेरी तरफ से सारे दोस्तों को राम राम बोल लीजिएगा। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम तो नहीं बताई हैं और या बताए हैं। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैसेज करती है अनामिका बहन और काकड़कुंड से, तो बिल्कुल आप भी बन रहे हमारे साथ। आगे आप जब भी मैसेज करें तो अपना नाम भी बताया करें ताकि आपकी पहचान हो सके। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स मैसेज शामिल करने के लिए। शबीना खातून मैसेज करती हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, प्रिया कुमारी और रजोखर नवादा से मैसेज करती हैं और गाने के फरमाइश करती हैं, जेठ के दोपहरी में पाँव जले हो सैया, डेडिकेट करती हैं रेडियो एमसीएम सुनने वाले और लिसनर को। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे।

0: चले चले चले बाजो आ जाओ बाजो।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99393-65930।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा में NH 27 पर, दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27। 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: रेडियो एमजीएम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सुनो भैया, मैं स्वीटी वृंदावन से और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम सुनाएंगे। और गाने की फरमाइश करती हैं, ऐसा कोई ज़िंदगी में आए जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए। बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने की फरमाइश है, तो आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँच रहे हैं, आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कुछ सुपर सॉन्ग थैंक्स, मैसेज करती है निशा भारती। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है हेलो सर, मैं सनी राज पटेल हजियापुर से और सॉन्ग सुनना है हमें। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है हाय, तो आप कौन है अपना भी परिचय दें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो सर जी, मुझे भी यही गाना सुनना है। नाम दीप्ति कुमारी घर थतीवना से जुड़ गई हूं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कौन से गाने सुनना है आप नाम बताएं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया, कैसे हैं आप और आशा चौहान मिले सर अफरा परसौनी से, तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि सभी दोस्त लोग कैसे हैं, तो उम्मीद के अनुसार सब कोई ठीक ठाक ही है और कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे गाने को प्ले करते हैं क्योंकि काफ़ी समय निकल चुके हैं और कई मैसेज, तो आगे गाने एंजॉय किया जाए और सुना जाए। अगली फरमाइश स्वीटी जी की।
1: अंजलि,
2: कैसा कोई जिंदगी में

रेडियो रेम जिम 94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं और आप? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, और मैं भी शो से जुड़ गई हूँ, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए और मुझे भी सॉन्ग सुनना है। और सॉन्ग का बोल, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो, डेडिकेट आपको एंड मेरी सिस्टर हैं सब, प्रियांशी पूजा कुछ प्यारे प्यारे रेडियो दोस्त हैं, रानी रजनी, संतरा कुशवाहा, सविता चौहान, आशा चौहान, नीतू सिंह, निशा सिंह, निशा भारती, शबीना अपी गुड़िया, अपी शिल्पी सिस्टर, इरफान भैया, कमरान भैया, हरकेश भैया, समीर भैया, गुलाम भैया और दिलीप भैया, वीरेंद्र भैया और लवली भाभी एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, और इस मैसेज को करती हैं रोशनी, कहती हैं आगे काफ़ी प्यारा सॉन्ग, बिल्कुल चेहरा नहीं देखना चाहिए, काफ़ी पहले मैसेज की थी, और चलिए आगे कई मैसेज किए हैं, और आगे समय देखे तो काफ़ी समय निकल चुके हैं, और अंतिम समय भी समाप्ति का भी हो चुका है, तो अंतिम गाने इन्हीं का रहेगा, और इन्हीं के गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं, और जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है। आगे मैसेज कुछ पहुंचा और लिखा गया है, बाय बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू, और मैसेज करती हैं शबीना खातू, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, मैं सनी राज पटेल। तो सनी राज जी, आज भी आपकी फरमाइश पूरी नहीं हो पा रही है, कल कोशिश रहेगा, जो भी श्रोतागण आज छूट जा रहे हैं कल छूटे हुए श्रोतागण की फरमाइश पे ध्यान दिया जाएगा, और उन्हीं के स्पेशली गाने को पूरा किया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें आप सब रेडियो 94 FM, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से, नमस्कार।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी। आप सभी के बीच हाजिर हो चुकी हूँ आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस के साथ। स्टूडियो घड़ी में 12:02 हो चुकी है और अभी से लेके शाम को 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करिए और हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। जो हमारे नए लिस्नर हैं उन्हें तो नहीं पता, लेकिन जो भी हमारे पुराने लिस्नर हैं उन्हें पता है कि अपने गाने की फरमाइश जो है एक सप्ताह बाद ही भेजें। बाकी शो से जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी शायरी चुटकुला कविता जो भी है अपनी भेज सकते हैं या फिर किसी को विश करना है कुछ भी आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फरमाइश एक सप्ताह बाद करिए। और नए लोगों के लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो डायरेक्ट अपने गाने की फरमाइश भेज सकते हैं और व्हाट्सएप के अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट अपने गाने की फरमाइश जो है भेज सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप इंस्टा नहीं यूज करते हैं तो उसके लिए आपके पास कॉल का भी माध्यम है, नंबर है 72-77-16-96 पे कॉल करिए और जुट जाइए अपने शो योर वॉइस योर चॉइस से। तो चलिए बिना देरी किए आज के शो की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गाने के साथ। जब तक आप सभी मैसेज करते हैं तब तक हम सभी एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम पे ये बढ़िया सा गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में किस डिस्को में जाएं। और आप सभी बताइए गाना कैसा लगा, ज़रूर बताइए और सुनते रहिए 90.4 FM रेडियो रिमझिम को।

एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। सो से जुड़ना है, सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98527 88 291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। या फिर आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। उसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं हमें 72 77 16 65 96 पे। और आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी गाने की फरमाइश करिए, अच्छे गाने की फरमाइश करिए, कोई भी ऐसा गाने की फरमाइश नहीं करिए जिससे किसी को आपत्ति हो। और मैं ये हर रोज़ बोलती हूँ, फिर भी हर रोज़ कोई ना कोई एक ऐसे गाने की फरमाइश कर ही देते हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं करिए। अगर आप कोई गाना नहीं सुने हैं, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उस गाने की फरमाइश बिल्कुल ना किया करिए। अगर आप गाना सुने हैं, अच्छा है, तभी गाने की फरमाइश करिए। और बढ़ेंगे आज की पहली फरमाइश की तरफ और रुख करेंगे अपना व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और आज का पहला मैसेज जो आया हुआ है, लिख रहे हैं कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, हो जाए मोहब्बत तो सूरत नहीं देखी जाती, एक ही शख्स पर लुटा दो अपना सब कुछ, पसंद हो चीज़ तो कीमत नहीं देखी जाती। और इस मैसेज के साथ है, लिख रहे हैं कि हाय नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून, जय माता दी। श्री सागर दीवाना जी हैं जम्मू एंड कश्मीर से, लिख रहे हैं कि वेरी नाइस ओपनिंग सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है।

विक्रमगंज तक में सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश फर्स्ट में पहुंची है, तो फर्स्ट में ही प्ले होगा। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और नाम मेंशन नहीं किया है, और नौशाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि फैंटास्टिक ओपनिंग सॉन्ग। और मैसेज करने वाली हैं प्रीति रैदास जी, विलेज चकरी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से। बहुत बहुत स्वागत आपका, लिख रही हैं। हैव अ नाइस डे मैडम जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, एक और मैसेज है, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग आदाब सत श्री अकाल। हम सभी जुड़ गए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, नारायण नंदिनी अनामिका अवंतिका आशुतोष आरोसी और रौनक बाबू। लिख रहे हैं कि 2 महीने बाद गाने की फरमाइश किए हैं, ज़रूर सुनवाइएगा। और मोहब्बत फिल्म का गाना है, चलते चलते ही रुक जाता हूँ मैं, और इसी गाने के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ दिनेश मिश्रा जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लिख रहे हैं कि ओपनिंग में इतना ज़बरदस्त गाना है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी सो मैम। और आगे लिखते हैं कि तमन्ना करते हैं हो जिन खुशियों की, तमन्ना करते हैं हो जिन खुशियों की, दुआ है वो खुशियाँ आपके कदमों में हो, खुदा आपको वो सब हकीकत में जो जो जो कुछ आपने सपनों में हो। और धनीश कुमार मिश्रा है दिल्ली से, लिख रहे हैं सोनी मैम नमस्कार। और भारती मैम का आने से एक फ़ायदा हुआ है, सो टाइम से चालू हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और किसी के आने से फ़ायदा होता है तो जाने से भी होता है, ऐसा कोई बात नहीं। और फ़ायदा तो हर चीज़ में होता है, बस फ़ायदा ढूंढने की ज़रूरत होती है। नुकसान में भी फ़ायदा होता है अगर ढूंढा जाए तो। और इस मैसेज के साथ है धनीश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस ओपनिंग सॉन्ग मैडम जी, और शायरी भेजे हैं, सुना दीजिएगा। बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं दोस्त बराबर वालों से करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि दोस्त बराबर वालों से करनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि दोस्ती में कोई बराबरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और मैसेज करने वाले हैं मेहताब दुबई से, और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, क्या हाल है। बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते, साधु राय जुड़ चुके हैं छपरा से, और लिख रहे हैं कि आपके प्रोग्राम से जुड़ गए, हम सभी सुन रहे हैं और गाने की फरमाइश है। और ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है, लिख रहे हैं आगे। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आज की पहली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ इंस्टाग्राम पे भी मैसेज है। राम कुमार जुड़ चुके हैं, धनंजय पांडे हैं, और एक और मैसेज है हाय, और प्रोफाइल पर नाम दिखा रहे हैं नमक नमक। तो भैया आप अपना नाम ज़रूर बताइए, कौन है और कहाँ से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आज की पहली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है विक्रमगंज रोहतास से। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को इंजॉय करिए। और विक्रमगंज रोहतास से फरमाइश जो पहुँची हुई है, इंजॉय करते हैं धूप में निकला न करो रूप की रानी। तो इंजॉय करते हैं हम सभी सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम पे।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे नौशाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास से, और इनकी तरफ से मैसेज है लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए धन्यवाद मैम। और रोहतास में बहुत गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, आज तो धूप इतना निकला है कि कहिए मत। तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रही क्योंकि मेरे यहाँ भी धूप ऐसा ही निकला हुआ है, तो आप लोग हमसे भी पूछिए मत धूप के बारे में। और लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए धन्यवाद। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, सन्यासी रंजन बाबा जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं नमस्कार सोनी जी, हम भी जुड़ गए, हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है, विजय कुमार पॉल है और इनको भी सुनना है गाना। लिख रहे हैं कि आपके प्रोग्राम से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि चांद से तो नहीं लेकिन सूरज से पर्दा जरूर कीजिए, नहीं तो सच में वो चेहरे का नूर चुरा लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, और इस मैसेज के साथ है सबीना खातून जी फ्रॉम दुलदुलिया से, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ महेश गद्दर जुड़ चुके हैं आंध्र प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आज की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है इंशा से, और फरमाइश करने वाले हैं नाम है इनका आदर्श कुमार जी, जो कि मदारपुर से जुड़े हुए हैं, और इनको सुनना है गाना धनी हो सब धन तहरे नुबा। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिया, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ेंगे, मैसेज है प्रसन्नजीत जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और लिख रहे हैं कि चांद क्या क्या कसूर अगर रात बेवफा निकली, कुछ पल ठहरे फिर वो चल निकली, उन्हें क्या कहे वो तो अच्छे थे शायद हारी तकदीर हमसे खफा निकली। नमस्कार, मैं प्रसन्नजीत और झारखंड से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। झारखंड रघुनाथपुर से जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत स्वागत, बने रहिए साथ में और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम भोजपुरी में भी अच्छा गा लेती हैं, ऐसे ही गाते रहिए, अच्छा लग रहा है। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्कार सोनी जी कैसे हैं आप, और मैं भी सोच से जुड़ गया हूँ, हमारे यहाँ तो कल शाम से ही बारिश हो रहा है और हम लोग आज छुट्टी पर ही हैं। रोहित है देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आपकी यहाँ बारिश हो रही है, थोड़ी बारिश हमें हमारे यहाँ भी भेज दीजिए क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी धूप है। और यहाँ मैसेज है, मैसेज पहुँचते पहुँचते लिख रहे हैं कि हमारा गाना कब बजेगा, तो आपका जो गाने की फरमाइश है वो सुबह में किए थे और शो का टाइम 12 बजे से है, तो आप 12 बजे आया करिए और शो में जुड़े, बहुत बहुत स्वागत। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका अजय कुमार सैनी जी, और गाने की फरमाइश आपकी है, तो आपकी गाने की फरमाइश जो है जरूर प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, और गाने की फरमाइश है चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से नारायण जी। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दें, इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। सो में जुड़ना है तो माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो प्रसन्नजीत जो है लिख रहे हैं कि गाना सुनना है, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, बने रहिए साथ में सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से नारायण नंदनी आलसी और रौनक बाबी का मैसेज आ गया, लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे, आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी गुड आफ्टरनून, मैं मनीष रजाक फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश, और हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है। और आगे लिख रहे हैं कि सुन पगली तेरा दिल भी धड़केगा, तेरी आँख भी फड़केगी, अपनी ऐसी अदा डालूंगा कि हर पल तुझे मिलने के लिए तड़पेगी, हल पर मुझसे मिलने के लिए तड़पेगी। और इस मैसेज के साथ है मनीष रजाक जी। और भैया आगे आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जो नज़र से गुजर जाया करते हैं वो सितारे अक्सर टूट जाया करते हैं, कुछ लोग दर्द को बयां नहीं करते, चुपचाप बिखर जाया करते हैं। नाइस सॉन्ग मैडम जी, जय माता दी। शिव सागर दीवाना है जम्मू एंड कश्मीर से। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम, कैसी हैं आप और क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से। उससे पहले यहाँ एक और मैसेज है, और लिख रहे हैं कि हंसती दिलों में गम भी है, मुस्कुराते आंखें कभी नम भी है, दुआ करते हैं आपकी खुशी कभी रुके ना, क्योंकि आपकी हंसी के दीवाने हम भी हैं। और इस मैसेज के साथ हैं सबीना जी दुलदुलिया से। और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे, और अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से, तो सुनते हैं कौन है, कहां से, और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: जी मैम, मेरा नाम रामू कुमार है, मैं गया जिला बिहार से बोल रहा हूँ।
0: जी जी, कैसे हैं रामू जी?
1: जी बहुत अच्छे हैं मैम, और आपके रेडियो, आपकी आवाज़ सुन के और अच्छे हो जाते हैं।
0: तो क्या हो रहा था अभी?
1: मैम अभी तो काम कर रहे हैं हम लोग।
0: अच्छा, साइड पे ही हैं।
1: जी, राजमिस्त्री का काम करते हैं।
0: तो फिर वहाँ तो ऐप से सुनते होंगे ना रेडियो?
1: जी, मोबाइल में ही बजते रहता है मैम, तो स्पीकर में ब्लूटूथ के जरिए हम लोग बजा के 10-12 रहते हैं, उसी में सुनते रहते हैं।
0: अच्छा, फिर तो बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: गाना सुनना था मैम सावन सिंह का, सनहिया लगावल बहुत बात होला, जो वाला गाना है ना, वो वाला सुनवा दीजिए मैम।
0: और सुनवाना भी है
1: जी, सभी लिसनर को डेडिकेट रहेगा और आपको भी ये गाना।
0: जी
1: जी मैम, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, हमारा सपना था कि रेडियो आरजे से कभी बात नहीं हो पाई थी, आज हुई है बहुत दिनों के बाद, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है मैम।
0: चलिए फिर कॉल करिएगा, दोबारा भी बात होगी।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सो में कॉल किए, गाना प्ले कर दिया, एंजॉय करिए।
2: हम तो उसे ना मिल सके,
3: काहे आखिर काहे, काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे, काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे, आज आंसू पोछतनी एगो प्रश्न बन के, काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का 12:50 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप इस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। मैसेज है लिख रहे हैं कि कोई वादा ना कर कोई इरादा ना कर, कोई वादा ना कर कोई इरादा ना कर, ख्वाहिशों से ख्वाहिशों में खुद को आधा ना कर, ये देगी उतना ही जितना लिखा है खुदा ने, इस तकदीर से उम्मीद ज़्यादा ना कर। और इस मैसेज के साथ है मनीष रजाक जी फाजिलनगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से। और आगे बढ़ेंगे आगे एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि उसकी डोली उठी मेरा जनाजा उठा, फूल उस पर भी था फूल मुझ पर भी था, सहेलियाँ उसकी भी थी दोस्त मेरे भी थे। उसका हुस्न उड़ा हमारे हमारे रीना यादों से सज के गई, और मुझे सजाया गया उठकर गले मुझसे उठाया गया, फर्क बस इतना था उसे अपनाया गया और मुझे दफनाया गया। नाइस सॉन्ग, जय माता दी। और मैसेज करने वाले हैं शिव सागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से। और यहाँ राधा गुप्ता जुड़ चुके हैं तावे से, बहुत बहुत स्वागत, लिखते हैं नमस्ते मैम। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास अजय कुमार सैनी हैं जुड़े हुए हैं, और इनको सुनना है गाना। और साथ में इनके दोस्त हैं राजू अफसाना जी, और लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त हैं, और गाना सुनना है जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं, और पवन सिंह की आवाज़ में गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे अजय कुमार सनी जी की फरमाइश थी, और लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए शुक्रिया, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे सोनी जी, और आपका इंतजार खत्म हो चुका है। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिल्ली में कल बारिश भई रहे और मौसम थोड़ा ठंडा बाटे आज। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह मिश्रा जी, दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि छू गया जब कभी ख्याल तेरा, छू गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल में देर तक धड़कता रहा, कल तेरा जिक्र छिड़ गया घर में और घर देर तक महकता रहा। क्या बात है। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, और अभी अभी दस्तक दिए हैं अनिल जी है छोटपुर से, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सोनी जी, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, और आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, एकदम मज़े में है, और बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से, और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो,
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिंची में।
1: कैसे हैं मैडम जी?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: खाना
0: जी बिल्कुल हो गया आपका, हुआ कि नहीं? अभी तो दोपहर का खाने का इंतजार कर रही होंगी
1: जी।
0: भोरे से बात कर रही है ना?
1: जी मैडम जी, भोरे
0: जी, जी जी। तो कौन सा गाना सुनवा दे नेहा जी?
1: गाना वो सही है, सही है।
0: मिलेंगे तो हम बताएंगे, वही ना?
1: हाँ
0: जी, अभी बता दीजिए कॉल पे। गाना प्ले कर दिए हैं
1: जी मैडम जी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल की।

और यहाँ धनेश मिश्रा जी हैं, लिख रहे हैं कि जेठ की दोपहर में गाना बजाने वाले भैया जी का दिल से धन्यवाद देते हैं। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी दिल्ली से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: प्रसाद क्लिनिक,
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत ब्रेक के बाद रेडियो रंजन 104 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे और लिख रहे हैं कि मेरी प्यारी सोनिधि, आपकी खूबसूरत आवाज के लिए एक छोटा सा संदेश। भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियां और सारी बहुत सारी तरक्की दे। और मैसेज के साथ है श्री भगवान सिंह जी दोहा कतर से। और आगे लिखते हैं कि रेडियो रिमझिम के सभी श्रोता और सोनी मैम को सादर प्रणाम। आप सभी से मेरा पसंदीदा गाना बहारो फूल बरसाओ सुनने का अनुरोध करता हूँ। कृपया इस खास फरमाइश को लाइव शो में शामिल करें। दोहा कतर से श्री भगवान सिंह जी। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, तो बने रहिए साथ में और प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और आगे बढ़ेंगे, आगे और भी कुछ मैसेज है शामिल करते हैं। और यहाँ मैसेज है लिखे कि नमस्कार जी, और साथ में है महाराज जी, काशीराम जी और महादेव जी, और इन सभी के साथ बॉर्डर फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि उदास हो तो मेरी हंसी मांग लेना, उदास हो तो मेरी हंसी मांग लेना, गम हो तो मेरी खुशी मांग लेना। भगवान आपको लंबी उम्र दे, एक पल भी कम पड़े तो मेरी जिंदगी मांग लेना। और जय माता दी, नाइस सॉन्ग ओ साहिबा। और मैसेज करने वाले हैं श्री शिव सागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से। और आगे बढ़ेंगे, आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गणेश कुमार है पिपरा नारायण से, लेट हो गई बा आज और का हलवा दी। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कोई बात नहीं, देर से ही आए आए। तो एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सिर्फ इशारों में होती है मोहब्बत अगर, सिर्फ इशारों में होती मोहब्बत अगर, इन अल्फाजों में खूबसूरत कौन देता, बस पत्थर पर बस पत्थर बनके रह जाता ताजमहल अगर इसे अपनी पहचान न देता। और लिख रहे हैं कि मिलेंगे तुमसे बताएंगे, वेरी नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं मनीष रुजाक जी फाजिल नगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि लाजवाब गाना वो साहिबा, और नाम मेंशन नहीं है, और नाम है इनका मनीष शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय सोनी बहन जी, कैसी हैं? कृष्ण मोहन सिपाया खास से। और सभी लिस्टनर सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलते हैं। लिख रहे हैं, हम भी जुड़ चुके हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और हमें भी गाना सुनना है, चांद जैसा चेहरा तोहार दिल हमार ले गल। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है दोहा कतर से श्री भगवान सिंह जी का, और इनको सुनना है गाना बहारो फूल बरसाओ। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश प्ले कर दिया, आप सभी इंजॉय करिए श्री भगवान सिंह की फरमाइश पे ये खूबसूरत सा गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश थी दोहा कतर से श्री भगवान सिंह जी की। और लिखते हैं कि सुनी में मेरा पसंदीदा गाना बजाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आवाज़ की तरह ये दोपहर भी बहुत खूबसूरत हो गई। और आगे लिखते हैं कि रिमझिम की लहरों पर जब आपकी आवाज़ आती है रेडियो रिमझिम के हर लिस्टर के दिल को भाती है। सोनी मैम खुदा करे आपकी तरक्की का सफर यूं चलता रहे, आपकी बातें हर उदास चेहरे पे मुस्कान लाती रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शो में जुड़े श्री भगवान सिंह जी बने रहिए, ऐसे ही हमारे साथ देते रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो माई चॉइस में मेरा कॉल नहीं हो पाया, आज मेरे साथ थोड़ा सा काम में बिजी थे और इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं करवा पाए। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपला नारायण से। कोई बात नहीं, हेलो माई चॉइस में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, योर वॉइस में आने का समय मिला और जुड़ गए। जब समय मिले, जिस शो में समय मिले उस शो में जुड़ जाया करिए आप लोग। और फरमाइश करने का समय मिले ना मिले अटेंडेंस जरूर लगा दिया करिए कि हम सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम को। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज आया, लिख रहे हैं कि सही पे पहचान नहीं पाई, और मैं सही से पहचान ली हूँ, आप सनी बात कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और सनी नहीं मनी, और गोपालगंज से हैं आप, अपना नाम ज़रूर मेंशन करिए अगर हम नहीं पहचान पाए हैं तो। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सनी या फिर मनी जो भी हैं आप दोनों ही हैं, और दोनों नाम से इस नंबर से मैसेज आता है, तो आप दोनों में से कौन से हैं आप ज़रूर बताइए। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं और सुनते हैं कौन है, कहां से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, क्या हाल चाल? जी जी, क्या हाल चाल बा?
1: हाल चाल ठीक बा। आप कि टिकट जीरो बैलेंस पर बागर जाए बा तो अब जुलाई में 2 तारीख के टिकट करावे खातिर अपन नाम गाम लिख के रेडियो रिमझिम के बस में डाले हैं, तब लौटी लागी तो उनका नंबर आई तो सवार हुई हम।
0: चलिए ठीक बात, तो हमरा बोले के जरूरत नहीं है, सुना तो नहीं तो सुन लेम खुद।
1: हाँ ना, तो बिना टिकट के जाइए तो पकड़ दे हम सर सर खाने।
0: अच्छा अच्छा, हाँ फिर दिक्कत हो जाए, छुड़ाए के पड़ी।
1: तो हम गाना सुनने के बाद
0: जी बिल्कुल बता दी, कौन गाना सुनवा दी?
1: जा रे जा रे सुन जा रे कोई तो करना वास्ते लागे नहीं छुटरा मत चाहे दिया जा
0: जी। और सुनवाई की भी बा?
1: सब कुछ सुने, हमारे जितना बाकी पसंद है सुनने वाले, डॉक्टर साहब दुकानदारी छोड़ जाए गाना सुनने खूब पसंद है
0: जी। तो प्ले कर दिले बनी गाना।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल करने।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासी खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
3: और 90-97-61-60-02।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है लिखा है कि शब्दों में जादू और सोच में ऊंची उड़ान रखती है सोनी मैं बाप हर दिल में जीने की नई उमंग भरती है रेडियो रंजन का ये मंच और आपकी ये मोटिवेशन जिंदगी की हर मुश्किल राह में बेहद आसान करती है। और आगे लिखते हैं कि आपकी सकारात्मकता बातें सुनकर हर निराश दूर हो जाती है सुनी जी मैम ईश्वर आपकी इस खूबसूरत आवाज़ और काम में हमेशा कामयाबी दे। और इस मैसेज के साथ है श्री भगवान सिंह जी दोहा कतर से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे आगे यहाँ मैसेज है लिखते हैं कि बाहर वो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है ओल्ड इज गोल्ड दिल छू गया सोनी मैम गाना। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी दिल्ली से। और आगे यहाँ एक और मैसेज है लिखते हैं कि लिखते हैं कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया मेरी तलाश का भी नजरिया बदल गया ना शकल बदली ना बदला मेरा किरदार बस लोगों को देखने का नजरिया बदल गया। जय माता दी मैडम जी राम राम। और बहुत फ्री फ्री खाली खाली बानी जम्मू से कौन फ्री ऑफर बाकी ना। और मैसेज करने वाले हैं शिव सागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से तो कौन बात के फ्री ऑफर चाहिए। और बढ़ेंगे आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि रामा जी के फरमाइज वेरी नाइस सॉन्ग और रामा जी को मेरे तरफ से धन्यवाद बोलिएगा बिल्कुल बोल दिया। और मनीष शुजा का है फाजिलनगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से। और यहाँ बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास है कॉल के माध्यम से तो चलिए बात करते हैं सुनते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
1: हेलो
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्कार मैम बरारी जगदीश से रविंदर महतो।
0: जी जी क्या हाल चाल है रविंदर जी।
1: ठीक है आप कहीं
0: हमरो बढ़िया बा का होत रहे अभी।
1: अभी क्या होता है दुख में तो घर आदमी बा
0: तो खाना पीना हो गए।
1: हाँ खाना पीना हो गए बा।
0: चलिए बढ़िया बा तो गाना कौन सुनवा दिया आज रोवा के।
1: क्या गाना सुनवाया तभी कौन है रामा जी प्रसाद के कौदेव टिकट कराओ तभी कौदेव कल गाड़ी के नाम बता दे।
0: अच्छा अच्छा
1: कहाँ जाए बस आपके ट्रेन स्पेशल ट्रेन चलते रहन बहुत है ब्रा।
0: दोनों के स्पेशल एक्सप्रेस ही है।
1: हाँ तो फिर स्पेशल ही है तो नहीं बस अभी ना कोई ट्रेन ही है के बस ही है एक दिन बस बताओ नहीं।
0: अच्छा अच्छा हाँ
1: और पहले दिन बस बताओ नहीं।
0: अच्छा ठीक बात तो फिर बात हो तो क्लियर कर लिया ही।
1: हाँ क्लियर हो जाए कल। गाना सुनवा दी
0: जी
1: तुम मगर साथ से देने का
0: वादा करो।
1: वादा करो वही गाना सुना दी
0: जी जी
1: खास कर उन्हें को सुना को रामा जी प्रसाद के।
0: चलिए ठीक है
1: हमने के बगले के बानी सुन। अब बाकी सब लोग सुनी रहो सुने
0: हम तो सुनबे करें हम तो पहले सुने। अच्छा अच्छा तो कॉल तो रिसीव करते बनी सबके। नमस्कार गाना प्ले कर दिले बनी एंजॉय करी।
1: हाँ।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करी।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे तुम अगर साथ देने की वादा करो, काफ़ी खूबसूरत गढ़िया गाना, ओल्ड इज गोल्ड। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग और नाम मेंशन नहीं है, बहुत बहुत स्वागत, आपका नाम ज़रूर बताइए। और अगली फरमाइश भी व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि गाना सुनना है कहीं भी रहूं सनम, बॉर्डर फिल्म से। और गाना सुनना चाहते हैं महाराज जी, काशीराम जी, महादेव जी हैं, और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और गाना सुनना है। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दिए हैं, इन्जॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
11: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
10: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
12: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
13: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा, मिला ही नहीं
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो टिमटिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और अगर आप भी शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल। आप इस माध्यम से चाहे शो में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 9857288291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए हमें 7277165696 पे और जुड़ जाइए अपने शो योर वॉइस योर चॉइस से। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ अपना रुख करेंगे और मैसेज यह लिख रहे हैं कि गाना सुनना है सिस्टम पे माउस से क्लिक कीजिए। और गाने की फरमाइश करने वाले हैं संतोष कुमार पटेल जी सूरत से और लिख रहे हैं कि रेडियो रिमझिम पर बजेगा कि नहीं, तो ये गाना मैं तो सुनी नहीं हूँ पूरा। और अगर गाना सही नहीं है तो आप दूसरे गाने की फरमाइश कर दीजिए। अगर आपको क्या लगता है सुन के कि यह गाना बजने वाला है कि नहीं, खुद ही सोच लीजिए और बताइए। अगर बजने वाला है तो फिर ठीक है, नहीं तो गाना चेंज कर दीजिए। पूछने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं कि ये बजेगा कि नहीं। अगर आपको लगता है थोड़ा भी कि ये गाना नहीं चलने वाला है तो आप वैसे गाने की आप सभी फरमाइश ही नहीं करिए। और सबसे मेरा अनुरोध है, संतोष कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और खुद चेक कर लीजिए कि गाना बजने वाला कि है या नहीं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है लिख रहे हैं कि रामाजी प्रसाद से बोल दें कि जम्मू से फ्री ऑफर बाकी ना। और मैसेज करने वाले हैं सुशागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से। बिल्कुल बोल दिए हैं और रामाजी प्रसाद सुन भी लिए होंगे और सुने हैं तो बिल्कुल जवाब देंगे कल के शो में इसका कॉल करके। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि गाना सुनवा दीजिए हमार पापा हमार दुनिया। और मैसेज करने वाली हैं प्रिया कुमार जी दिल्ली से और लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम। और साथ में इनके हैं इनके पापा उमा शंकर मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रिया जी। और गाने हैं तो चलिए अगली गाना जो है आपका प्ले कर रहे हैं। इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर X सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, और मैसेज आ गया है प्रिया जी की तरफ से और प्रिया जी के पापा की तरफ से, लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं मेरी प्यारी बेटी प्रिया कुमारी का गाना बजाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं धनीश मिश्रा जी दिल्ली से। और आगे बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्कार सोनी जी, अली खान जुड़ चुके हैं दिलीप नगर से, बहुत बहुत स्वागत आपका यूपी से जुड़े हुए। और लिख रहे हैं कि गाना सुनना है, आदमी मुसाफिर है आते हैं जाते हैं, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है सिर्फ हाय का, और अमित कुमार शर्मा है समस्तीपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ वॉइस पहुँचा हुआ है गाने की फरमाइश के साथ है, और नाम है इनका और यहाँ प्रिया जी की तरफ से वॉइस पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या कह रही हैं ये।
1: थैंक यू मैम,
0: और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, और कॉल लेते के साथ ही कॉल कट चुकी है, तो चलिए बढ़ेंगे इंस्टाग्राम की तरफ। और यहाँ मैसेज है तृप्ति जी है, और उनको सुनना है गाना, तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। और कॉल वाले लोगों से मेरा कहना है कि जब भी गाने ख़त्म हो रहे हैं, ब्रेक ख़त्म हो रहा है, उस टाइम आप लोग कॉल किया करिए, उस टाइम आप लोग आराम नहीं करिए, और जब गाना चल रहा हो, ऐड चल रहा हो, उस टाइम भले ही आप कॉल नहीं करिए, क्योंकि उस टाइम कॉल करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग उस टाइम एकदम दनादन कॉल करते हैं, एक पे एक कॉल करते हैं, और जब कॉल करने की सच में बारी आती है, उस टाइम आप लोगों का कॉल नहीं आता है। तो फिलहाल इंजॉय करते हैं तृप्ति जी की फरमाइश पे ये स्वाति मिश्रा की आवाज़ में काफ़ी बढ़िया सा गाना, खूबसूरत सा गाना, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, तृप्ति जी की फरमाइश थी स्वाति मिश्रा की आवाज़ में, काफ़ी खूबसूरत गाना। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ मैसेज है। शर्मा रूवर मतो जुड़ चुके हैं सीतामढ़ी समस्तीपुर बिहार से, और साथ में इनके हैं अमित कुमार शर्मा जी। और पवन सिंह की आवाज़ में गाना सुनना है पतली कमरिया, बोल रहे हैं प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ धनेश मिश्रा है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम हम लंच करने जा रहे हैं और आप भी कर लीजिए टाइम से बिल्कुल। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गाना लाजवाब बटे, और मैसेज करने वाले हैं सनी जी। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, और दीपक जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम। और आगे लिखते हैं, यहाँ सफ़र वहीं तक जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक जहाँ तक तुम हो, वैसे तो हजारों फूल खिलते हैं गुलशन में, मगर खूबसूरती वहीं तक जहाँ तक तुम हो। क्या बात है। और इस मैसेज के साथ है दीपक जी मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत आपका। आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। और मैसेज के साथ है दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुटू मोहाली पंजाब से, और लिख रहे हैं मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं कौन है, कहाँ से जानते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: मैं निसार अहमद लक्की दरगाह
0: जी, कैसे हैं निसार जी?
1: अच्छा हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: धूप तो नहीं हुआ है?
0: कहाँ धूप हुआ है, बस
1: ठंडा लग रहा है।
0: हाँ तो गाना कौन सा सुनाए आज आपको?
1: गाना तो याद नहीं आया है कि कौन गाना चुने हैं, मगर एक गाना अभी दिमाग में आ गया, सुना दीजिए, धर्म काटा का। तो जो है चूड़िया चल जाए मेरी मत वाली जान, हाँ वो उसके गाने को सुना दीजिए। पहले आपको सुनाएंगे भारती जी को, जितने भी रेडियो रिंजन सुन रहे हैं उन सभी को।
0: चलिए तो प्ले कर दिए गाना।
1: थैंक यू,
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने कॉल की।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। मैसेज है उमा शंकर जी हैं लिख रहे हैं कि अश्लील गाने की फरमाइश करने वालों शर्म करिए थोड़ा। और उमा शंकर मिश्रा हैं दिल्ली से, तो ये उन लोगों को शर्म नहीं आता है जो ऐसे गाने की फरमाइश करते हैं, लेकिन करिए सुनिए, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे पास अपनी गाने की फरमाइश जो है नहीं भेजिए। अगर यहाँ रेडियो रिमझिम पे गाना सुनना है तो फिर अच्छे गाने की फरमाइश करिए। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, आगे मैसेज है शकील अहमद जुड़े हुए हैं मुंबई से और लिख रहे हैं कि मेहंदी फिल्म का गाना सुनना है खेसारी लाल की आवाज़ में, बाड़ू अनमोल खजाना। और बिल्कुल आपकी आने की फरमाइश से प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपकी आने की फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से, और इनको सुनना है गाना। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दिए, अपने गाने की फरमाइश को इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।
1: मन

और इस गाने के पार हम चलेंगे दोपहर समाचार की तरफ, तो आप सब कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो रंजिम 90.4 एफएम को। और हम मिलते हैं आप सभी से दोपहर समाचार के बाद। फिलहाल एंजॉय करिए प्रमुख जी की फरमाइश पे इनके पसंद का गाना, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रंजिम 90.4 एफएम पे।

0: अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूति

0: नियुक्तियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: A detailed assessment.
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से CAPF कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
4: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी CAPF में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में CAPF के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
5: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
6: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूल मुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
7: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
8: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
10: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
10: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
11: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
11: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
12: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
12: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
12: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97746164।
13: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
14: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
15: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
16: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
15: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
16: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
17: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
18: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
15: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
19: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
12: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
20: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
12: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
20: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
12: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
20: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87-894-18744।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। दो बज के 44 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अभी से लेके 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। या फिर उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप इंस्टा नहीं यूज करते हैं, आपके लिए कॉल का माध्यम है, नंबर है 72-77-16-65-96 पे कॉल करिए और जुड़ जाइए अपने शो योर वॉइस योर चॉइस से। और यहाँ बढ़ेंगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और मैसेज है लिख रहे कि हेलो मैम, क्या हाल है? मैं विनोद कुमार चौहान मुंबई से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत विनोद जी आपका। और मेरे हाल की बात है तो बिल्कुल बढ़िया है, दास से झुका से आप सभी के बीच है। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दीजिए नमस्कार, ग्राम चमरौवा जिला संभल से ब्रिजेश मिस्त्री जुड़ चुके हैं और साथ में इनके हैं मक्खन सिंह, मलखान सिंह, राजेंद्र, सतपाल, किशन, सोमपाल, सभी लोग सुन रहे हैं मिलकर रेडियो रिमझिम को। और लिख रहे हैं कि फिल्म का नाम है अनोखा अंदाज और गायक विनोद राठौर की आवाज़ में गाना का बोल है, पहला ना आपसे पहले ना आपके बाद कोई ना आया ना आएगा। अभी 4 दिन से मैसेज कर रहे हैं मेरा गाना नहीं बज रहा है फरमाइश, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ फिर से लुधियाना पंजाब से प्रमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं रुबर मोहन शर्मा जी और लिख रहे हैं कि गाना सुनना है प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे आगे, यहाँ डॉक्टर अमोद कुशवाहा जुड़ चुके हैं जय छपरा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और गाने की फरमाइश है तेरे इश्क में नाचेंगे, गाने की फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे, हाँ एक और गाने की फरमाइश है और गाना है रुक जाओ दिल दीवानी और गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, नाम है इनका सोनू जी, गौसिया से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी आपका और आपके गाने की फरमाइश से। तो हम आपको बता दें कि आपके गाने की फरमाइश बुधवार को प्ले किए थे, तो आपकी 1 सप्ताह नहीं हुई है, जैसे 1 सप्ताह पूरी होती है हम आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ बढ़ेंगे आगे, आज की अगली फरमाइश प्ले करेंगे। हमारे पास पहुँचा हुआ है आदमी मुसाफिर है आते हैं जाते हैं और गाने की फरमाइश के साथ है अली खान जी जो कि जुड़े हुए हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, दिलीप नगर। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुने आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे अली खान जी, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया शोनी जी गाना बजाने के लिए। बढ़िया, आगे हाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, और मैसेज है लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, और मैसेज करने वाले हैं मुस्तफ़ा सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्कार शोनी मैम और रेडियो रिमझिम की पूरी टीम को, आपका प्रोग्राम योर वॉइस योर चॉइस इस समय बहुत ही खूबसूरत चल रहा है, आपकी आवाज़ और गानों की चयन दिल को छू लेने वाला है, हम लगातार इस शो को सुन रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है, ऐसे ही बेहतरीन प्रोग्राम चलाते रहिए। और आगे लिखते हैं कि और रेडियो रिमझिम के नियमित श्रोता हूँ, आपका शो योर वॉइस योर चॉइस वाकई लाजवाब है, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, आपकी बातें और श्रोताओं से जुड़ने का अंदाज बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत शो के लिए आपको और रेडियो रिमझिम के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और मैसेज करने वाले हैं श्री भगवान सिंह जी दोहा कतर से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो से जुड़े। और यहाँ धनीश मिश्रा जी हैं, लिख रहे हैं कि मैं भी फिर से जुड़ गया हूँ शो में, और आगे लिखते हैं कि अब तो गम रहने की आदत सी हो गई है, अब तो गम में रहने की आदत सी हो गई है, रात को चुप चुप के रोने की आदत सी हो गई है, तू बेवफा है खेल मेरे दिल से जी भर के, हमें तो अब चोट खाने की आदत सी हो गई है। और मैसेज के साथ है मनीष मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ गणेश कुमार है पिपरा नारायण से, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग मैडम सी, और बढ़ेंगे आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है, और प्ले कर दीजिए, बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। और शारदा अंसारी है, महमूद भाई है, और राम बाबू राम जयपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सिखा देगा मजबूरियों को, मत कोसो हर हाल में सोचना सीखो। और गाने की फरमाइश है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका, बनी रही हमारे साथ। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। और शकील अहमद है मुंबई से, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे नेक्स्ट। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है, तो अगली फरमाइश हम कॉल के माध्यम से लेंगे, और कॉल कट चुकी है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो है व्हाट्सएप के माध्यम से, और ममता के बाड़ू अनमोल खजाना गाने की फरमाइश है खेसारी लाल की आवाज़ में, तो चलिए प्ले कर रहे हैं शकील अहमद जी की फरमाइश पे, खेसारी लाल की आवाज़ में ये काफ़ी बढ़िया सा गाना, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे है।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
1: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और हमारे यहाँ योर वॉइस हेलो माई चॉइस एसएमएस फरमाइश, इसके अलावा और भी कार्यक्रम है, जैसे में सेहत सही लाभ कई का कार्यक्रम चलता है, तो आप लोग जैसे योर वॉइस हेलो माई चॉइस को एसएमएस फरमाइश पे अपना प्यार बनाए रखते हैं, वैसे इसे भी सुनिए और इसका भी फीडबैक दीजिए। अगर कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमारे रेडियो रंजन के ऑफिस में संपर्क करिए, जिसका नंबर है 98527888291 पे। और सेहत सही का जो एपिसोड चलता है वो है फ्राइडे को चलता है 8 बजे से, सैटरडे को 7:15 से, संडे को 6:30 से, और आप इस समय सुन सकते हैं सेहत सही का एपिसोड। और जो भी आपको समझ में आए नहीं आए उसका फीडबैक जरूर दीजिए, कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा, और सुनते रहिए रेडियो रंजन को। फिलहाल बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश से पहले यहाँ कुछ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारा गाना बजेगा कि नहीं। बिल्कुल बजेगा, क्यों नहीं बजेगा, सबके गाने की फरमाइश पूरा की जाएगी। और मैसेज पहुँचा हुआ है सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, वीके फास्ट फूड हैं विष्णु कुमार जी, और गाने की फरमाइश है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है छोड़ी गली गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ एक और मैसेज है, बोल रहे हैं प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए, तो बिल्कुल अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, इन्जॉय करिए अपने गाने को। और अगली फरमाइश जो है वो समस्तीपुर बिहार से पहुँचा हुआ है हमारे पास, शर्मा रूबन महतो जी हैं, तो इन्जॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM को। पवन सिंह की आवाज़ में ये आपके पसंद का गाना प्ले कर दिए हैं। और आप जिस गाने की फरमाइश भेजे हैं वो तो पवन सिंह की आवाज़ में नहीं है।

0: bihar.masti.in।
1: और यहाँ अमित कुमार शर्मा जी की तरफ से मैसेज पहुंच चुका है, लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए। तो एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
12: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
11: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
12: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रंजन 90.4 FM पे आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मुस्तफ़ा हैं सऊदी से और लिख रहे हैं कि कोई नया कार्यक्रम प्रोग्राम चालू हुआ है। जी नहीं, कोई नया प्रोग्राम नहीं है, कार्यक्रम पुराना ही है लेकिन उसे फिर से अपडेट किया गया है, फिर से चलाया जा रहा है। तो फिर से आप सभी सुनिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आप सभी को कार्यक्रम कैसा लग रहा है और उसमें वो समझ में आ रहा है या नहीं। आपकी सेहत के बारे में है और सेहत सही है तो लाभ कई है, इसी के बारे में है। हर तरह के हर रोज़ अलग अलग बताए जाएंगे और हर रोज़ नहीं है, सप्ताह में 3 दिन कार्यक्रम है। और शुक्रवार, शनिवार और संडे को चलेगा। तो शुक्रवार को आपका समय है शाम को 8 बजे, शनिवार को 7:15 में और संडे को यानी रविवार को 6:30 में यानी 6:30 बजे ये शुरू होगा। तो आप सभी सुनिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, बताइए। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो हमारे ऑफिस के नंबर 9857788291 पे कॉल करिए। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो है हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहां से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जी में।
1: जी मैम, गाना सुनना था आपको।
0: जी गाना सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना और कहां से।
1: जी मैम, मेरा नाम साहिल अली है, मैं जादूपुर से बोल रहा हूं।
0: जी जी, क्या हाल चाल है साहिल जी। तो दूसरी बार होगा। जी बिल्कुल। तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
1: वो क्रिश का गाना नहीं है, दिल ना दिया।
0: क्रिश का गाना दिल ना दिया, तो उसको तो काफी सारे सिंगर गाए हुए हैं, तो आपको किस सिंगर का आवाज में सुनना है?
1: कोई भी सुना दीजिएगा, मतलब क्रिश का गाना
0: कोई भी सुना दे।
1: कब तक बजेगा मैम? मतलब
0: अभी बजेगा, अभी लाइव शो में कॉल किए हैं तो अभी बजेगा।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी कॉल के माध्यम से गाने की फरमाइश थी, प्ले किया, और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, और यहाँ विष्णु कुमार जी हैं, लिख रहे हैं कि 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं, तो बिल्कुल आज आपकी इंतजार जो है ख़त्म होगी, थोड़ा और इंतजार करिए। और यहाँ अगली फरमाइश आपसे पहले पहुंचा हुआ है डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी हैं, जय छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से, और इनको गाना सुनना है तेरी इश्क में नाचेंगे। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इंजॉय करिए और सुनते रहिए।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97746164।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: खत्म, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ बढ़ेंगे आगे और अगली फरमाइश और अगला मैसेज की तरफ। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं थैंक यू सो मच गाना बजाने के लिए सोनी जी और डॉक्टर अमित कुशवाहा जी छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से। और बढ़ेंगे आगे तो यहाँ रवि जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि हमारा भी फरमाइश है बज जाएगा क्या, बिल्कुल भेज दीजिए, पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करें, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बनी ठीक है साथ में। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी मैडम जी, सचिन कुशवाहा है पुणे से और मेरा भी आज लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं हर हर महादेव सोनी जी, कल मेरा गाना नहीं बजा था तो आज बजा दीजिएगा, विनती है, तो बिल्कुल आज आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका, बनी रहिए साथ में। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से विष्णु कुमार जी की, और उनको सुनना है गाना और है कि 4 दिन से मेरा गाना नहीं बज रहा है। तो चलिए आज आपका इंतजार खत्म हुआ और प्ले कर दें आपकी गाने की फरमाइश, इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और काफी बढ़िया गाना की फरमाइश करने वाले थे विष्णु कुमार जी सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, और उनकी तरफ से मैसेज भी पहुंच गया है, लिख रहे हैं कि धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शो से जुड़े और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले यहाँ अभी अभी दस्तक दिए हैं, लिख रहे हैं कि सोनी मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे गोरखपुर से जुड़ गया हूँ और गाना बहुत ही अच्छा लगा, सेजिया पे लोटे काला नाग। जी हाँ, गाना तो वाकई में काफी बढ़िया था, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ एक और वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, और सुधीर कोल जुड़े हुए हैं कोई जिलवा जमुई झारखंड से, बहुत बहुत स्वागत आपका, और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। चमरौवा जिला संभल से ब्रिजेश मिश्री हैं और बोल रहे हैं मेरा गाने की फरमाइश है, तो हम आपके गाने की जो फरमाइश है वो कल ही पूरा किए थे और अगली फरमाइश एक सप्ताह बाद पूरा होगा, सो में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए पहले बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से, और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए अपना और कहाँ से।
1: अखिलेश कुमार
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं अखिलेश जी।
1: थाना कुचाय को जिला गोपालगंज
0: जी। जी तो क्या करते हैं अखिलेश जी आप।
1: कुछ नहीं, घर पे।
0: अच्छा अच्छा, तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको।
1: खेसारी लाल का।
0: खेसारी लाल का कौन सा गाना।
1: खेसारी लाल का कोई भी सॉन्ग सुना
0: दीजिए। कोई भी खेसारी लाल का गाना। हेलो
1: हेलो, खेसारी लाल का कोई भी गाना सुना दीजिए।
0: और गाना सुनवाना भी है।
1: मेरे पास एक भाई है छोटा, वो इसी को।
0: अच्छा, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
1: यस
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सो मैं कॉल किए।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।

हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रंजन 90.4 FM पे आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। शो से जुड़ना है, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और MD मैम मुझे जुड़ चुके हैं, लेकिन हेलो मैम केला से हम भी जुड़ गए हैं और बिल्कुल जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और बढ़ेंगे आगे, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग दी, गणेश कुमार हैं पिपरा नारायण से, बिल्कुल। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, सनी है गोपालगंज से और इनको सुनना है गाना सोनू निगम के आवाज़ में, मैंने जिसको दिल ये दिया, मुस्कान फिल्म से। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, सभी इंजॉय करते हैं सनी जी की फरमाइश पे, काफ़ी बढ़िया गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो रंजन पे।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे सनी जी, और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैंने जिसको दिल दिया, मैंने जिसको प्यार किया, वेरी नाइस सॉन्ग। और लिख रहे हैं कि वे झिझक मुस्कुराइए जो भी कम है, जिंदगी में टेंशन किसी को कम है, अच्छा या बुरा केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। जी हाँ बिल्कुल, और मैसेज के साथ हैं मनीष रजाक जी फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन में।
1: बताइए।
0: मेरा हाल बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए कौन बात कर रही हैं और कहाँ से।
1: संध्या है, बलान
0: जी। कैसी हैं संध्या जी?
1: हम ठीक है, अपना बताइए।
0: सोनी जी की बहन है क्या आप?
1: नहीं
0: सर। ये आवाज से वैसे ही लग रहा है उन्हीं की तरह बात कर रही हैं आप, इसलिए।
1: नहीं, मैं तो ठीक हूँ।
0: अच्छा अच्छा, तो गाना कौन सा सुनवा दे आपको? वो रहे, गाना कौन सा सुनवा दे आपको?
1: सनम बेशक मेरा
0: है। सनम मेरा बेशक है क्या?
1: सनम बेशक मेरा है।
0: तू सनम बेशक मेरा है।
1: हाँ।
0: और सुनवाना भी है
1: आपको? सुनने वाले भी रहे, सभी लिखना करो, आप भी हमें सीखते रहे।
0: अच्छा, चलिए तो प्ले कर दिए गाना आपकी। वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद, सो मैं कॉल की, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रंजन।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065575।
4: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 99 393 65 93।

0: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। और 8 मिनट है हम सभी के पास शो में और बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। मैसेज तो काफ़ी सारे हैं, फरमाइशें भी है, लेकिन अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है शंभू यादव जुड़े हुए हैं पुलिस लाइन के पास है और उनको सुनना है गाना, वॉइस पहुंचा हुआ है। तो चलिए प्ले करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। ये दीजिए हमको।
1: हर हर महादेव। सोनी जी नमस्कार, मेरा नाम शंभू यादव, घर बसिला भागरखाप, जिला गोपालगंज, रेडियो रिमझिम 94.FM से आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा गाना पहले भी वॉइस भेजा था, नहीं बज पाया है, और आज भी मैं एक गाना सुनना चाहूँगा, जिंदगी की तलाश में हम कितने मौत के करीब आ गए। तो प्लीज़ मैम मेरा भी फरमाइश चला दिया करें, कितना आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है दीदी। और मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, पहले दोस्त थे हमारे बहुत गहरे थे, अब नहीं हैं, नहीं रहे, याद नहीं करते हैं। टुनटुन जी हैं, कृष्णा जी हैं, अनमोल जी हैं, और हमारे बाबा जी हैं, संजय भैया हैं, और थावे स्टेशन से जो हमारे भैया हैं जो हमें हमेशा याद करते हैं, कंची में धार लगाते हैं वो, और रेलवे स्टेशन पे भैया जो गाना सुनते हैं हेडफोन लगा के आपका लाइव, वो भैया हैं, और संजय सिंह हलवाई हैं, सुलेंदर सिंह हैं। तो प्लीज़ मैम चला दीजिएगा सोनी जी। देखिए मेरा वॉइस आप पहले भी नहीं चलाई हैं और आज भी नहीं चलाइएगा तो अभी तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि अपन हमसे नाराज़ हैं या नाराज़गी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।

सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं, गाने की फरमाइश है शिव शंभू जी की और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे आगे आज के लिए फरमाइश की तरफ नहीं बल्कि शो से विदा लेने में समय हो गया है। 3:59 हो चुके हैं और यहाँ मैसेज है। अनिल जी हैं छोटपुर से लिख रहे हैं कि बाय बाय। इरशाद मास्टर हैं धनाव से लिख रहे हैं कि बाय मैडम जी।

0: 7:15 से, तो आप सभी सुनिए और उसका फीडबैक दीजिए कि कैसा लग रहा है, और दीजिए मुझे जाने की इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। फिर मिलते हैं, नमस्कार।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
2: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
2: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
9: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
10: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
9: अरार मोड एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायकोट,
10: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
9: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
10: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
9: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
10: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
9: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
10: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
10: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम।
13: सुनो दिल से।

कि दुनिया माया के बाजार बा, यहाँ केहू के केहू नइखे। भाई बहिन बाप माई सगे संबंधी, ई झूठो के एगो रिश्ता नाता बा कहे खातिर सभे आइल अकेले बा और जाई अकेले।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: All right.

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, सिगरेट।

0: पतन शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिन्नताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9199।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: तुम लोगों ने आहट नहीं सुनी क्या?
7: किसकी आहट?
6: ए, पलट के देख, शेरनी आ रही है।
7: कौन शेरनी? कहाँ की शेरनी?
6: यूपी बिहार की शेरनी, अक्षरा सिंह।
8: चल रहे।
9: ओए, सुन, ये आवाज नहीं बेटा दहाड़ है, तेरे सामने खड़े हैं हम पहाड़ हैं। मुझसे टकराने से पहले जरा सोच ले, मेरा कुछ नहीं होगा तेरा, तेरा हो जाना कबाड़ है। अरे तुझसे ऐसे कितनों को अकेले रकड़ के तोड़े हैं हम, अरे पटना की लड़की

0: पटना की लड़की है मैं, डरते थोड़े ना, याद है ना, अकेले काफी पानी हम।
1: ठक ठक
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
6: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
7: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
8: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
7: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
8: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
8: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: शेज बाजी।
1: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-0-97-06-575।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क 99393-65-930।
10: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: जोलो।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: उत्तर बिहार का गौरव,
8: सारण प्रमंडल की शान,
7: गोपालगंज की धड़कन
8: और अपने भाषा की पहचान,
7: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
8: सुनो दिल से।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
9: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861464।
3: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जॉन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
7: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
8: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए। आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053169015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
8: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी हम योगेश जी कांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा खतीम हो गए।
1: जी जी, कैसे हैं योगेश जी?
2: बढ़िया है, अच्छा है।
1: तो क्या हो रहा था अभी?
2: अभी घर में है।
1: अच्छा, घर में है। खाना पीना हुआ?
2: हो गया जस्ट अभी।
1: अच्छा अच्छा, तो परिवार में सभी लोग कैसे हैं अभी?
2: सभी कुशल मंगल है।
1: चलिए बढ़िया है। गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
2: गाना आप हमें फिल्म मोहब्बतें से सुनवा देंगे, हमको हमी से चुरा लो।
1: अच्छा, और सुनवाना भी है
2: जी? कुछ पांचे हैं, श्रीपाल गोयल जी, लोकेन्द्र वर्मा जी, दिलीप आहूजा जी, रोशन देवांगन जी, मुकेश शर्मा जी, संतोष वैष्णव जी।
1: जी, तो प्ले करेगा ना?
2: जी, धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
12: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: ठक ठक
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: नहीं, अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
1: जी मैम, कैसी हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: सही है। ये गाना सुना है?
0: जी बिल्कुल सुनाएंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
1: गाने का नाम मुझे सुनना है, तुम्हारे सिवा कुछ ना कहेंगे जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, यही गाना सुना है।
0: जी और नाम भी बता दीजिए अपना श्रोताओं को।
1: मैं गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से बोल रहा हूँ।
0: जी जी, और सब बताइए गुलाम जी।
1: सब बढ़िया, अपना सुनाइए।
0: हमारा भी बढ़िया है। तो अभी ड्यूटी में है रूम पे?
1: जी जी रूम पे है।
0: अच्छा छुट्टी है?
1: जी जी।
0: चलिए बढ़िया है, तो एंजॉय करिए रूम पे बैठ के आज छुट्टी।
1: जी जी थैंक यू मैम,
0: वेलकम। गाना प्ले कर रहे हैं आपकी?
1: ओके
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: कैसे हैं सर?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक है, बैठ करके रूम में रेडियो बजा रहे हैं।
1: नाम बता दीजिए अपना श्रोताओं को।
0: मेरा नाम है मैनुद्दीन अहमद, ग्राम जुमरिया मुचका गाँव
1: जी।
0: हमको गाना सुना दीजिए। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं।
1: हेलो
0: जी,
1: और गाना सुनवाना भी है?
0: आपको सुनवाएंगे और पूरे टीम को सुनवाएंगे। कौन नहीं सुनेगा, सब कोई सुनेगा।
1: बिल्कुल सब कोई सुनेगा।
0: कब सुनाइएगा सर?
1: ये आज शाम को 5 से 7 के बीच में।
0: अच्छा ठीक है
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किया।
0: ठीक है,
2: मतलब

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87894-18744।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
11: Now pick it up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम जी 90.4 FM में।
1: रमजान
0: जी कैसे हैं? रमजान जी
1: बढ़िया।
0: तो क्या हो रहा था अभी?
1: वही हम लोग काम कर रहे हैं।
0: अच्छा, काम पे ही हैं। तो आज कौन सा गाना सुनवा रहा हूँ?
1: सुनवा जी ताकत मूवी का।
0: जी कौन सा गाना?
1: पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन जाए वाला।
0: और सुनवाना भी है
1: जी आपको? हम अपने दोस्त के साथ सुनेंगे।
0: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी हम पचपना से बोला जी, बोलते नहीं
1: जी। क्या हाल चाल बा बोला जी?
0: ठीक है बा, आपन बताई?
1: हम लोग बढ़िया बा। ये गर्मी में क्या होता है आजकल?
0: गर्मी में का पंखा करके बैठल बा आदमी?
1: पंखो तो गर्म में हवा देता।
0: पंखो का कर ले, लेकिन मजबूरी बा न। मजबूरी बा न, पंखो तो गर्म हवा देता लेकिन मजबूरी बा। मान लीजिए बाहर में हवा तो आज तो थोड़ा बहुत हवा चल रहा बा,
1: सिसका था तनी मुनी।
0: और सब समाचार बताए?
1: सब बढ़िया बा। अपने के बताए, घर परिवार सब लोग कैसन बा?
0: सब कोई अच्छा बा।
1: चलिए बढ़िया के काम बा। तो कौन गाना सुनवा दी आज?
0: गाना सुनवा दी, घर द्वार फिल्म का गाना है, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा
1: जी,
0: ये गाना सुनवा।
1: और डेडिकेट भी रही?
0: और अब सुने हम सुने रेडियो रिमझिम के पूरा टीम सुनी, आदमी जुड़ल बा सब कोई सुनी।
1: प्ले कर दी गाना?
0: हाँ हाँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करो तनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: Now pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
12: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: Hello.
11: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
13: शिमला से बोलते
11: जी जी, कैसा बनी दादाजी?
13: ठीक ठीक गए कोई
11: गए रही अपन छुट्टी में रहनी है, काम रहा अलग घर।
13: अच्छा घर सब ठीक बन?
11: हाँ अभी सब कोई घर बढ़िया बा। रहुआ बताई रहुआ घर परिवार में सब लोग कैसे बा?
13: सब ठीक बा,
11: चलिए बढ़िया बात बा।
13: और अब भी अच्छा से गुजर गई।
11: तो गाना कौन सुनवा दी आज रोज के?
13: वे सुनवाओ अपना मन से कोनो पुरान कव्वाली।
11: कव्वाली सुनते बा, चलिए करी।
13: ठीक बा,
11: ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 FM में।
0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग,
0: कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं लाल बहादुर जी?
0: हम भी ठीक है जी मैम, हम लोग स्वच्छता कर्मी हैं, बैठे हुए हैं।
1: जी जी,
0: कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ना, हम लोग स्वच्छता अभियान का गाना सुनना है।
1: अच्छा, स्वच्छता अभियान का।
0: जी जी, किस तरह कचरा उठा करना है, किस तरह सफाई करना है।
1: अच्छा अच्छा, तो बस आप ही लोग हैं कि और भी जो है गांव के लोग भी हैं?
0: पूरे गांव के लोग हैं, हमारे टीम पूरी है।
1: अच्छा, पूरे पंचायत के लोग हैं।
0: जी जी
1: जी, तो सर मतलब पूरे पंचायत को यही समझाना है कि कैसे स्वच्छ रखना है। चलिए बढ़िया है,
0: तो हम लोग का स्टाफ का भी नाम हम बताना चाहेंगे।
1: बिल्कुल बताइए।
0: हमारे हैं कृष्ण लाल यादव, फोन नंबर वार्ड है नंबर और फरहुल शर्मा के नंबर, मेरे दोस्तिक भाई, फोन नंबर वार्ड 11 नंबर और बोली लो और 10 नंबर और जितना भी ग्रामीण के लगे हैं को और भारत वर्ष।
1: चलिए
0: बढ़िया वाला सुना दीजिए, जाग लागल माई तारा
1: भारत माई पे
0: आई कर दे, जहाँ गाँव में जाके माई जाग लागल माई तारा पर जाना है ना भोजपुरी में,
1: लागल बा कलंक भारत माई पे।
0: अच्छा, यही
1: ये वाला ना?
0: हाँ यही
1: जी। तो प्ले कर रहे हैं गाना
0: जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22567 या 97-714-86-164।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: Jab phone ghanti bajti hai to kehte hain hello.
14: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
13: Bhage bhage firte hain.
15: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो, नमस्ते मैडम जी।
15: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
16: मैडम जी, मैं गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा, जिला गुना से।
15: जी जी, कैसे हैं गोपाल जी?
12: बढ़िया है मैडम जी, अभी तो ये मूंग की कटाई चल रही है।
17: अच्छा अच्छा
12: और क्या? हाँ यही वाला मैडम जी।
17: अच्छा अच्छा, तो अभी तो काफी धूप है खेत में है अभी आप लोग?
12: हाँ धूप धूप भी है मैडम जी, अभी तो क्या है बारिश हुई है, आंधी भी आया था अभी तो।
17: अच्छा अच्छा,
12: और क्या?
17: तो अगर नहीं वो फिर कटाई होगी तो खेत में ही सब रुक जाएगा। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
12: गाना सुनना है वो वाला सुनना है, नाड़ी फिल्म का है ना, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में, ये वाला है नहीं, क्या मौसम आया है पूरब से मस्तानी पुरवाई, चलिए वाला।
17: जी जी, और डेडिकेट भी करिएगा।
12: डीटी हरिओ मेरा तब जी है, सुनील साहू जी है, हमारे मांगीलाल धाकड़ जी है, ये है।
17: चलिए तो प्ले कर देगा ना आपकी?
12: जी
17: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
0: मीना एंड सुमन जी कोनवा मोड़ से।
1: दोनों पे हैं क्या आप?
0: हाँ, मेरा बड़े दीदी है। हम लोग कॉल करते थे इस पे।
1: पहले तो आता था, काफी दिन बाद सुनने आई है।
0: हाँ।
1: तो क्या हाल चाल है
0: मैम, कैसी है?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? आपके घर
0: बात है?
1: चलिए बढ़िया का काम है।
0: हाँ।
1: तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
0: गाना नहीं है, किसकी को मैं जाए किस होटल में खाए, चलो इसकी लड़ाई चलो इसकी लड़ाई,
1: जी
0: वही गाना सुनना है।
1: और डेडिकेट भी करिएगा?
0: हाँ, डेडिकेट करेंगे आपको और सारे दोस्तों को, पुराने नए जितने दोस्त हैं उन सबको।
1: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
0: ठीक है मैम। ओके
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 6300 या 70 70 75 4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
9: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो मैडम
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: मैं मनान कपूरपुरा का।
9: जी, क्या हाल चल रहे हैं मनान जी?
10: सब ठीक है। आप कब आ गए हैं जी सोनी जी?
9: हम तो सैटरडे से ही आए हुए हैं।
10: तो हम गुरुवार को हम कॉल नहीं किए हैं, कहीं काम में फंस गए थे।
9: कोई नहीं, काम भी जरूरी है।
10: वो बुधवार का आज प्रोग्राम आज आप हम सुन रहे थे आज रेडियो पे। बहुत आदमी का कॉल हम सुन रहे हैं, वीडियो कॉल पे किससे बात हुई है वो भी बता रहा था आदमी। सब सुन के हमको खूब हंसी लग रहा था और अच्छा लग रहा था आपका प्रोग्राम सुन के। बहुत दिनों के बाद मिली है यहाँ। अब आप रहेंगे क्या इस पे, इस प्रोग्राम पे?
9: अभी हेलो माई चॉइस ही रहेंगे, लाइव ही आएंगे।
10: अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा। एक और आई है क्या
9: आरती जी?
10: हाँ, तो वो आई है, तो उन्हीं से 2-4 बार हुआ है गाना करीब हुए, तो उसके बाद आप चले गए तो हमने सोचा कि आप छोड़ दिए क्या?
11: नहीं, कुछ काम था पर्सनल, सब समय लग गया।
10: तो वही ना, सबको वो भी किए थे थावे वाला, वो जो एक
11: प्रसाद,
10: हाँ तो वो किए थे, तो वो भी बहुत महरूम होकर के बोल रहे हैं मैडम जी ये वो ठीक है, दो ही वोट में हानी खत्म। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये मौका ही उसमें नहीं मिलता था, नया आदमी के साथ में कौन सा बात करे भाई।
11: थोड़ा सा उनको भी बात करने में वही चीज है, वो भी बोल रही थी हम नया है तो थोड़ा सा पहचान समय लगता है।
10: हाँ, हालांकि उनको हम थोड़ा सा चुटकी दिए हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, इंशाल्लाह आप जो है आगे बढ़ जाऊंगी, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, ऐसे बढ़ावा दिए हैं बातों से, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
11: अब नए आदमी से मिलकर थोड़ी सी हिचकिचाहट तो सबको होती है।
10: हाँ, वो एक प्रोग्राम में बोलती है कि बुधवार को और फलाने दिन को कॉल करें इतने नंबर पे, तो वो तो रटी रटाया बात को उतना रिकॉर्ड हुआ है
11: जी जी,
10: थोड़ा आपके जैसा हुआ है।
11: अच्छा अच्छा
10: आपके जैसा
11: तो
10: नहीं
11: है। पहला है तो पहले है
10: तो हो जाएगा, एक्सपीरियंस में आ जाएंगे वो भी, लेकिन थोड़ा सा भी हम लोग का भी बात करने में बड़ा उलझाहट मालूम होता है।
11: समझ गए, आपके लिए वो नहीं है, उनके लिए आप लोग नए हैं और पूरे जो भी उससे पहले काम की है उससे और ये पूरा एकदम से डिफरेंट है, ऐसा होता है डिफरेंस होता है।
10: तो मैडम वो गोपालगंज किधर के हैं? वो
11: अब इतना तो मुझे भी जानकारी नहीं है, आने के बाद से अभी बातचीत करने का मौका नहीं मिला उनसे, ऐसे काम भर बात होता है।
10: पहले दिन हम बात किए थे ना तो वो बता रहे थे कि नहीं कोई सोनी को हम नहीं जानते हैं।
11: हाँ तो वो नहीं जानती है, नाम से मतलब ऐसे जानती थी कि कोई सोनी काम करती है।
10: हम पूछे सोनी जी चली गई है क्या? तो नहीं, हम सोनी को नहीं जानता, सोनी जी बोल रहे हैं। तो नहीं नहीं नहीं, हम फलाने बोल रहे हैं। तो वही थोड़ा सा
11: नहीं थे, उसी बीच में वो आई है।
10: तो मैंने वो भी गोपालगंज है ना?
11: हाँ गोपालगंज की है, इधर की है।
10: ठीक है, नजदीक में रहेगा तो अच्छा रहेगा, प्रोग्राम चला के जाएंगे, आपको भी मौका मिलता रहेगा घूमने के लिए।
11: जो कोई रहेगा तो छुट्टी लेने भी थोड़ा,
10: एक प्रोग्राम के लिए आपको बार बार छुट्टी लेना पड़ता था, एक प्रोग्राम बराबर चालू रहेगा। चलिए, हम लोग का दुआ है कि आप लोग को प्रोग्राम में रहें और रेडियो को रिमझिम को आगे बढ़ाए, है ना, और तरक्की दे, यही दुआ है। साथ में आपको भी ऊपर वाला से हत्या रखे आपको।
11: चलिए
10: तो आगे तो हो गई, तो हमको सात अजूब इस दुनिया में आठवे अपने जोड़ी धर्मवीर का यही गाना सुना दीजिए मेरा।
11: चलिए, और डेडिकेट करिएगा,
10: डेडिकेट खास कर आपको आपको आपको और साथ में वो भारती जी हैं, और उनको भी कहेंगे, उनको भी रेडियो प्रेमी और तो कहेंगे दूसरा और क्या। ठीक है मैडम
11: जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चॉइस कॉल की।
12: सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, हर थोड़े से भाई टूटे नाई।

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी हैं ये वादा है। अपना जो कुछ है सब आधा

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
1: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
11: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
12: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
11: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
13: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello?
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
16: The phone can be much dearer to get it.
17: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रिद्धि रंजन 90.4 FM में।
19: दीदी नमस्ते।
18: नमस्ते,
19: कहाँ थी इतना दिन से?
18: ये घर पे ही, कुछ काम थी।
19: वही बोल रही हूँ, दीदी नहीं आ रही है, लग रही नहीं क्या, बिना बताए
18: ना? बिना बताए नहीं जाएंगे, जाने से पहले बता के जाएंगे, बढ़िया से विदाई लेके जाएंगे।
19: अच्छा जी, सही है,
18: सही है ना?
19: हाँ,
18: इतना दिन अगर समय दिए हैं तो ऐसे ही कैसे चले जाएं?
19: जी बता के जाना चाहिए।
18: बिल्कुल बता के जाएंगे।
19: पता चल गया आपने कब ये सब इंतजार करते रह गया।
18: ना ना, ऐसा नहीं है, कुछ काम था। तो नाम बता दीजिए, नाम ध्यान नहीं आ रहा आपका, तो आवाज से पहचान रहे हैं आपको।
19: मैं सोनी गोपालगंज से।
18: अच्छा हाँ, तो खाना पीना हुआ सोनी जी आपका?
19: जी मेरा हो गया है। आपका?
18: हाँ जी मेरा भी हो गया है। तो कौन सा गाना सुनवा दे आज आपको?
19: अपने पसंद से ही सुना दीजिए।
18: ये तो अलाउ नहीं है, पता ही आपको।
19: अच्छा तो ये सुना दीजिए, दिल से दुआ करी ले, दिल वे से ही कही ले, सारा जहाँ के प्यार ता तुहरे तमन में मिले ना तू कुछ कहता ना हम कुछ कहती तू सामने बैठा हम देखते रह जाती। यही वाला सॉन्ग सुना दीजिए
15: जी। बिल्कुल, और हम सामने बैठने के लिए तैयार हैं।
19: जी जी, वो तो और बढ़िया रहेगा।
15: बढ़िया रहेगा ना, और खाना पीना छोड़ के उसी से पेट भरेगा। और गाना डेडिकेट भी करिएगा
19: जी जी आपको, सोनू सर को, भारती दीदी को और जितने सुनने वाले उन सभी को।
15: चलिए तो प्ले करे गाना
19: जी। थैंक यू,
15: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल की।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
0: नमस्ते जी, गाना सुनना है हमें
1: जी। तो गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: नाम परमात्मा महोत्सव जी कला मतिया से बोल रहे हैं, दिसम्बर बुखारा
1: जी। जी कैसे हैं
0: जी? रखा जी ठीक है जी, अपना सुनाइए।
1: हम भी बढ़िया है। तो खाना पीना हुआ कि नहीं?
0: खाना पीना तो अभी चाय पी रहे हैं जी, काम कर रहे हैं जी। 11 बजे चाय मिलता है यहाँ पे।
1: अच्छा अच्छा, ड्यूटी में ही है?
0: पंजाब में होशियारपुर में रहता हूँ मैं। गाना हमको सुनना है तो खेसारी लाल का कोई भी सॉन्ग बढ़िया था।
1: खेसारी लाल का कोई भी? चलिए, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
0: कब तक सुनना है? टाइम
1: शाम को 5 से 7 के बीच में कभी भी आ सकता है, और कल मॉर्निंग में 9 से 11 के बीच।
0: अच्छा जी, और कॉल भी कॉल लगा रहे हैं, बिजी तो बिजी बता रहा था आपने।
1: हाँ, तो काफी सारे लिसनर हैं, कॉल कर रहे हैं तो बिजी तो जाएगा ही।
0: मौसम कैसे है गोपालगंज अपना जिला में?
1: काफी भयानक वाला धूप हुआ है
0: यहाँ।
1: आपसे बात कर रहे हैं तो बाकी जो कॉलर होंगे वो लोग बोल रहे हैं कि बिजी जा रहा है, परेशान हो रहे हैं।
0: सही बात है, इससे हमको नहीं पता।
1: तो ऐसे ही होता है। चलिए, तो गाना प्ले करें आपके।
0: जी पहले प्ले कर दीजिए
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मेरी चॉइस में कॉल।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: लास्ट में तरह से को सवाल पूछी
1: पूछी ना जी।
0: ये बताओ कि लिंग को तरह के होला?
1: तीन तरह के।
0: कौन कौन?
1: स्त्रीलिंग।
0: यस।
1: पुल्लिंग।
0: बिल्कुल यस।
1: डरलिंग।
0: अब बुझा गए दुर्गेश नाई बना देवे थे हमके।
1: पूछी पूछी।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello. Hello, hello, hello, hello, hello. Bhage bhage firte hain.
13: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
15: जी नमस्कार मैडम, मैं सुनील साहू बोल रहा हूँ।
14: जी जी, कैसे हैं सुनील जी?
15: बढ़िया है मैडम जी, रेडियो रिमझिम का आनंद ले रहे हैं।
14: हेलो
15: जी, बोलिए
14: जी। आप कुछ बोले, आवाज नहीं आई आपकी।
15: जी बहन जी, मुझको फरमाइश सुनना था।
14: जी बिल्कुल, फरमाइश सुनाएंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
15: जी मैडम, पिक्चर का नाम है राजा बाबू।
14: अच्छा,
15: और गाने के बोले सरकार लो बतिया जाड़ा लगे।
14: ओहो, अभी तो गर्मी का मौसम है।
15: नहीं, अगर हमारे दीदी अगर बारिश हो रही है अभी।
14: अच्छा अच्छा,
15: हाँ रात को बारिश गिरी थी, अभी बारिश गिर रही है।
14: चलिए बढ़िया है, कम से कम इधर भी थोड़ी बारिश भेज दीजिए।
15: जी भेजेंगे दीदी, और कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहती हूँ जिनको मैं गाना सुनाना चाहता हूँ।
14: जी बिल्कुल लीजिए।
15: जी गजराज सिंह लोधी है रेराई से, और गोपाल ओझा है कगवाचा से, और मांगीलाल धाकड़े बड़ा गांव से, और रामनागर प्रजापति है पीतमपुर से। ये सभी रेडियो के श्रोता है बहन जी।
14: अच्छा अच्छा
15: जी, ये बहुत जन से परेशान हो रहा है फोन लगाने के लिए, इनका फोन नहीं लगवा रहा है।
14: अच्छा, सबको कॉल कर रहा है ना, तभी जी बताता है।
15: जी जी जी जी जी
14: जी। चलिए, अभी तो कॉल लग गई, आपसे बात हो गई, चलिए ट्राई करें, उनका भी लग जाएगा।
15: ठीक है, ठीक है बहन जी,
14: ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल।
15: धन्यवाद
14: जी।

0: दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
10: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा, मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: एपिसोड 25, 25.

प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

0: मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
0: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
0: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
0: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
0: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
10: एपिसोड 26 26

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना ये है कि आत्मग्लानी के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता।
6: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह और जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत को बनाया उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने आज से राज्यव्यापी विकास, विश्वास और जन कल्याण पखवाड़े की शुरुआत की। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से शुरू होगा वाहनों का परिचालन। अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही आवागमन की मिलेगी अनुमति। और मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना के मामले में पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 3 कर्मियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। एनडीए के घटक दलों भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
7: भाजपा ने भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पार्टी ने संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। इधर जदयू ने पटना से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, मधुबनी से भारती मेहता और पश्चिम चंपारण से शिवरानी देवी प्रजापति को द्विवार्षिक चुनाव के तहत उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए शेखपुरा से ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव जबकि एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एनडीए ने आज 8 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है। शेष 2 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा की ओर से आज से राज्यव्यापी विकास, विश्वास और जन कल्याण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि इस दौरान सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सभी जिलों में मीडिया संवाद, प्रदर्शनी, योग शिविर और जन कल्याण शिविर का आयोजन होगा।
8: से भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 जून से 21 जून तक पूरे देश एवं बिहार में 12 साल बेमिसाल विश्वास, विकास और जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियां, जन कल्याणकारी योजनाएं एवं विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है।
6: भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अभी केवल एक लेन पर अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही वन वे ट्रैफिक के तहत परिचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि पेली ब्रिज पर वाहनों के परिचालन का ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा।
9: 7 जून के करीब 11 बजे से स्कूल को हम लोग शुरू करेंगे। स्कूल का एक लेन यानी लगभग 5 मीटर चौड़ा लेन हमारा चालू होगा, जिसमें कि छोटी गाड़ियों का परिचालन को हम लोग शुरू करेंगे और परिचालन में लगभग 10 टन तक की जो गाड़ियां होंगी उन गाड़ियों 10 टन तक जो परिवहन होगा उसको हम लोग अलाउ करेंगे।
6: बक्सर के इटाढ़ी रेलवे कुमटी पर नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आरओबी का उद्घाटन कुछ दिन पहले हुआ था। आरओबी का पाया संख्या 5 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद प्रशासन ने पुल पर आवागमन बंद कर दिया है। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में 6 लोगों की हुई मौत के मामले में पुलिस ने अस्पताल के तीन कर्मियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि आईसीयू में तैनात चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार, एडमिन मैनेजर राजकुमार और मेंटेनेंस मैनेजर अजीत कुमार की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के आवेदन पर ब्रह्मपुरा थाने में शिकायत दर्ज की गई है।
10: 4 जून 2026 को करीब 4 बजे सुबह में प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तो अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वो जो 3 लोग हैं वो एक मेंटेनेंस हेड वहाँ के, एक एडमिन हेड और वहाँ जो आईसीयू में जिन डॉक्टर की ड्यूटी थी उस समय वो वहाँ पे नहीं उपलब्ध थे और उनकी इन 3 लोगों की उस समय इमीडिएट लापरवाही के वजह से जो है कुछ लोगों की मृत्यु हुई है।
6: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में 50 लाख घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आज पटना में पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ जल्द ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होगा। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थिति में सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को भुगतान किया जाएगा।
11: अगले 2 वर्षों में 50 लाख घरों पर हम सोलर युक्त बिजली पहुंचाए और 125 यूनिट जैसे पार कीजिएगा, 125 यूनिट से ज्यादा आपके घरों पर सोलर युक्त बिजली जब उत्पादन होगा आपके अकाउंट में हम पैसा आपको तुरंत वापस करना शुरू कर देंगे। ये कमाने का भी जरिया हमारे लोगों के लिए हो जाएगा।
6: प्रदेश में आज से शारदीय खरीफ महाअभियान की शुरुआत हुई। इस अवसर पर पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार खेत बचाओ अभियान चलाकर मिट्टी की उर्वरता और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री ने अगले महीने से किसान जन कल्याण संवाद और किसान डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने गैर मजरुआ आम श्रेणी की सभी सरकारी जमीनों तथा जमाबंदी रद्दीकरण के मामलों को रोक सूची में शामिल करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोजपुर, मधेपुरा और अरवल जिलों के राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने सरकारी भूमि की खरीद बिक्री रोकने के लिए इसकी सूची निबंधन विभाग को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। पटना स्थित बिहार लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं मीनाक्षी मदन राय, जो पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी।
0: न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए थे। न्यायमूर्ति राय इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थी। वे पटना हाई कोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी और राम कृपाल यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का पपुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर, जबकि शेष भाग के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तथा राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने और प्रकृति के संरक्षण में सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: बदलते मौसम, बढ़ता तापमान, घटते जल स्रोत और प्रदूषण की समस्या आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे समय में पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता बन गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी पटना के JP गंगापथ पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पौधारोपण कर 1,00,000 पेड़ लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने लोगों से अधिक पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने की अपील की।
4: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं जरूर आपको शुभकामना देता हूँ और आज तो एक अभियान भी हम शुरू कर रहे हैं। इस इलाके में लगभग जितना की चिड़िया खाना में पेड़ नहीं है, उससे अधिक सिर्फ इस JP गंगा पथ पर 1,00,000 पेड़ लगाने का अभियान आज हम लोग शुरू करने का।
3: गया में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि आज का दिन हमें पर्यावरण के प्रति हमारे उत्तरदायित्व का बोध कराता है।
5: आज का दिन हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराने का अवसर प्रदान करता है। पर्यावरण केवल हमारे चारों ओर का वातावरण नहीं है बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य, भविष्य का आधार है। उसके संरक्षण के बिना मानव सभ्यता का सतत विकास संभव नहीं है।
3: इधर जिला मुख्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न सरकारी संस्थानों में पौधारोपण किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत भी लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इस अवसर पर मुख्य राजकीय समारोह पटना के जेपी कोलंबर पर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को लगभग 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा में पुलिस ने 2 कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फरीदपुर गांव से पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में शराब के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया। कैमूर के प्रभारी मंत्री संजय सिंह की अध्यक्षता में आज भभुआ में संभावित बाढ़, सुखाड़ और भीषण गर्मी से निपटने को लेकर विभागवार की गई तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की गई। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत आज शिवहर और शेखपुरा जिले के अलग अलग गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के बालक वर्ग में पाकिस्तान को 5-3 से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है। भारत की इस जीत में गोलकीपर सावन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सावन कुमार पटना के आरके राय अकादमी में हॉकी का प्रशिक्षण लेते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा और जदयू ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह और जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत को बनाया उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने आज से राज्यव्यापी विकास, विश्वास और जन कल्याण पखवाड़े की शुरुआत की। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से शुरू होगा वाहनों का परिचालन। अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही आवागमन की मिलेगी अनुमति। और मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना के मामले में पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 3 कर्मियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: सुनो दिल से।
9: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
7: जो उम्र भी मैं भूल गई, जाने जा तेरे।
8: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
9: ऐसी जगह।
7: अरे झुमका भी मैं भूल गई, जाने जा तेरे लिए।
10: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे, चलिए ना।
7: अरे

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
1: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971602।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।
4: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड।

0: रहते पकड़ ली जाए तो उसका इलाज शुरू हो सकता है और बच्चे को आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाया जा सकता है। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 28 जून को अंतर्राष्ट्रीय नवजात स्क्रीनिंग दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अगर शुरुआत सही हो तो आगे जिंदगी आसान हो जाती है। तो चलिए आज इसी जरूरी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे अपने सेहतिया भैया और टिकन भाभी।
1: देखो भाई, जब बीज अच्छा बोओगे तभी तो पेड़ मजबूत निकलेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बीमारियां छुपी हो सकती हैं। अगर बीमारियों को उसी वक्त पकड़ लिया जाए तो इलाज आसान हो जाता है।
2: और नवजात स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत छोटा होता है, आसानी से हो जाता है, मगर इसके फायदे जीवन भर मिलते हैं।
1: हाँ, लेकिन कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इसका असर बाद में दिखता है।
2: बिल्कुल, देखिए पड़ोस के गांव की बात है। फूलमती की बहू को बेटा हुआ, सब खुश थे, पर बच्चा दूध ठीक से नहीं पी पा रहा था, बार बार कपकपी हो रही थी। लोग बोले कि ठंड लग गई है, नज़र लग गई है, लेकिन बाद में पता चला कि बच्चे को जन्म से ही थायराइड की बीमारी थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर शिशु की जन्म के समय जांच करवाई होती तो बीमारी का पता चल जाता और इलाज समय पर शुरू हो जाता। अब बच्चा ठीक तो है लेकिन दवाइयों पर चल रहा है। सोचिए, अगर पहले ही नवजात स्क्रीनिंग हो जाती तो जिंदगी आसान हो जाती।
0: सेहतिया भैया, आखिरकार बच्चे को पैदा होते ही नवजात स्क्रीनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है?
1: जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में कई बीमारियां पता नहीं चलती। स्क्रीनिंग में डॉक्टर उसके खून की जांच करते हैं, कानों की सुनने की क्षमता देखते हैं और दिल की धड़कन जांचते हैं। अगर कोई समस्या जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज आसान हो जाता है। इस टेस्ट से बच्चे को गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है।
0: टिकन भाभी, नवजात शिशु की जांच कब करवानी चाहिए?
2: बच्चे के जन्म के बाद जब वो 1-2 दिन का होता है तब नवजात स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि बच्चा एकदम ठीक है या नहीं।
0: अगर कोई बच्चा अस्पताल में पैदा ना हुआ हो तो भी ये जांच करवानी चाहिए?
2: बिल्कुल, ऐसे में डॉक्टर से बात करके जांच करवानी चाहिए। इससे परेशानी जल्दी पकड़ में आ जाती है और सही इलाज हो सकता है। पर सही प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों में जन्म देकर बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
0: सेहतिया भैया, नवजात शिशु की जांच कैसे होती है?
1: आरजी, नवजात स्क्रीनिंग 3 तरीके से होती है। सबसे पहले बच्चे की एड़ी से कुछ बूंद खून लेकर लैब में भेजा जाता है ताकि किसी गंभीर बीमारी का जल्दी पता चल सके। फिर सुनने की जांच होती है। इसके लिए कानों में छोटे ईयरफोन लगाए जाते हैं और देखा जाता है कि बच्चा आवाज पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। और एक तीसरा तरीका है दिल की जांच, जिसमें एक खास मशीन से बच्चे के खून में ऑक्सीजन की मात्रा देखी जाती है। इससे दिल की कोई समस्या हो तो जल्दी पकड़ में आ जाती है।
0: टिकन भाभी, अगर किसी नवजात शिशु की जांच के नतीजे सामान्य ना हो तो क्या किया जाता है?
2: यदि किसी नवजात शिशु के जांच के नतीजे सामान्य ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं। ज्यादातर मामलों में इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि बच्चे की और जांच करनी होगी ताकि डॉक्टर को पूरी जानकारी मिल सके। पहला टेस्ट सिर्फ शुरुआती जांच होती है जिससे डॉक्टर को संकेत मिलते हैं कि आगे क्या करना चाहिए।
0: तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बीमार है।
2: बिल्कुल सही, कई बार शुरुआती जांच में कोई गड़बड़ परिणाम आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को कोई बीमारी है। इसीलिए डॉक्टर आगे एक और टेस्ट करने की सलाह देते हैं जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। यह ज्यादा सटीक होता है और इसमें पता चलता है कि वास्तव में कोई समस्या है या नहीं। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट के नतीजे सामान्य आते हैं तो आगे किसी और जांच की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ी दिखती है तो डॉक्टर अगला कदम बताते हैं। वो आपको सही इलाज और बच्चे की सेहत को बेहतर रखने के लिए जरूरी सलाह देते हैं।
0: सेहतिया भैया, अगर परिवार में एक बच्चे को कोई बीमारी हो तो क्या दूसरे बच्चे को ये बीमारी हो सकती है?
1: देखिए, कई बीमारियां वंशानुगत होती हैं, यानी माता पिता से बच्चों में जीन के जरिए आती हैं। अगर किसी परिवार में एक बच्चे को कोई वंशानुगत बीमारी है तो उसके भाई बहन को भी वही समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन हर बीमारी ऐसी नहीं होती। कुछ बीमारियां सिर्फ उसी बच्चे में हो सकती है जबकि उसके भाई बहन बिल्कुल ठीक रह सकते हैं।
0: अगर किसी बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो और माता पिता दूसरा बच्चा चाहते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए?
1: अगर ऐसा हो तो माता पिता को किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर समझाते हैं कि बीमारी परिवार में कैसे आती है और अगला बच्चा इससे प्रभावित होगा या नहीं। डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा तरीका होता है ताकि परिवार सही फैसला ले सके।
0: तो क्या हर स्वास्थ्य समस्या वंशानुगत होती है?
1: नहीं आरजी, कुछ बीमारियां वंशानुगत नहीं होती, जैसे सुनने की समस्या जो कभी कभी गर्भावस्था के दौरान किसी संक्रमण से हो सकती है। ऐसे स्थिति में दूसरी गर्भावस्था में यह समस्या होने की संभावना कम होती है। इसलिए हर बीमारी को समझना जरूरी होता है ताकि सही इलाज और सावधानी बरती जा सके।
0: तो मतलब डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए?
1: डॉक्टर सही जानकारी और सुझाव देते हैं, इससे माता पिता को बच्चे की सेहत

0: को लेकर बेहतर फैसला लेने में मदद मिलता है।
1: टिकन भाभी, आपने बताया था कि नवजात स्क्रीनिंग बहुत जरूरी होती है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे की स्क्रीनिंग से कोई बीमारी पकड़ी गई हो और फिर वो ठीक हो गया?
2: हाँ, मेरे पड़ोस की सुनीता के बेटे के साथ ऐसा ही हुआ था। जब बच्चा पैदा हुआ तो अस्पताल में उसकी स्क्रीनिंग हुई। जांच से पता चला कि बच्चे के शरीर में कार्बनिक अम्ल ज्यादा जमा हो रहा है। ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर खाने को ठीक से पचा नहीं पाता। अगर इसे जल्दी नहीं पकड़ा जाता तो बच्चे की सेहत बिगड़ सकती थी।
1: फिर क्या किया गया?
2: जैसे ही ये बीमारी पता चली, डॉक्टर साहब ने तुरंत इलाज शुरू किया। उन्होंने सुनीता को बताया कि बच्चे की डाइट में खास ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ दवाएं भी दी। धीरे धीरे सही इलाज और देखभाल से बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया।
1: तो मतलब अगर स्क्रीनिंग ना हुई होती तो बीमारी पकड़ में ही नहीं आती।
2: बिल्कुल सही कहा। अगर ये टेस्ट नहीं हुआ होता तो बीमारी का पता ही नहीं चलता और बच्चा बहुत परेशानी में आ सकता था। इसीलिए स्क्रीनिंग हर नवजात के लिए बहुत जरूरी होती है।
1: सेहतिया भैया, आपकी जानकारी में कभी ऐसा हुआ है किसी बच्चे की बीमारी स्क्रीनिंग से पता चली हो और फिर वो ठीक हो गया हो?
0: हाँ अजय, मेरे दोस्त विजय की बेटी के साथ ऐसा ही हुआ था। जब वो पैदा हुई तो अस्पताल में उसकी नवजात स्क्रीनिंग हुई। शुरू में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जांच के नतीजे आए तो डॉक्टरों ने बताया उसे फैटी एसिड की बीमारी है।
1: ये कौन सी बीमारी होती है?
0: देखिए, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, इसे हम खाने पीने की चीजों से लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ये बीमारी होती है उनका शरीर वसा को ठीक से पचा नहीं पाता। इससे बच्चों को जरूरी ऊर्जा नहीं मिलती और उन्हें कमजोरी महसूस होती है।
1: तो फिर विजय ने क्या किया?
0: रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहब ने विजय को समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, सही इलाज से बच्ची बिल्कुल ठीक हो सकती है। उन्होंने कुछ दवाएं और खास डाइट सुझाई। विजय ने पूरी सावधानी बरती और धीरे धीरे बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो गई।
1: टिकन भाभी, मैंने सुना है कि कुछ बच्चों को अमीनो एसिड से जुड़ी कोई समस्या होती है, ये क्या है?
2: अरे, ये एक खास तरह की बीमारी होती है जिसमें बच्चे का शरीर अमीनो एसिड को ठीक से नहीं पचा पाता। ये एसिड हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जब शरीर इसे सही तरीके से नहीं प्रोसेस कर पाता तो इससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं।
1: तो ये बीमारी कैसे पता चलती है?
2: जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नवजात स्क्रीनिंग की जाती है। इस टेस्ट से अगर कोई दिक्कत हो तो पता चल जाता है, फिर डॉक्टर सही इलाज शुरू कर सकते हैं जिससे बच्चा स्वस्थ रह सके।
1: सेहतिया भैया, ये हार्मोन संबंधी परेशानी क्या होता है, क्या इससे छोटे बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं?
0: देखिए, ये समस्या शरीर में हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को प्रभावित करती है। हार्मोन वो रसायन होते हैं जो शरीर में कई जरूरी काम करते हैं, जैसे वजन बढ़ाना, शरीर का विकास होना, अलग अलग अंगों का ठीक से काम करना। अगर किसी बच्चे में हार्मोन सही तरीके से ना बने तो उसे कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं।
1: ये बीमारी कैसे पता चलता है? अगर बच्चे को ये समस्या हो तो इलाज कैसे होता है?
0: जब बच्चा पैदा होता है तो नवजात स्क्रीनिंग से इस बीमारी का पता चल जाता है। डॉक्टर खास तरह की दवाएं और देखभाल बताते हैं। कभी कभी हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए बच्चे को खास ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर इलाज समय पर शुरू कर दिया जाए तो बच्चा सामान्य तरीके से बढ़ सकता है और उसे कोई परेशानी नहीं होती है।
1: भाभी, मेरे दोस्त के बच्चे में एनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे हीमोग्लोबिन की समस्या है, ये क्या होता है और क्या इसे पहले से पहचाना जा सकता है?
2: हीमोग्लोबिन की समस्या खून से जुड़ी बीमारी है, मतलब शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। लेकिन नवजात स्क्रीनिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा इस बीमारी से प्रभावित है या नहीं। अंश का जन्म हुआ तो उसकी माँ ने डॉक्टर की सलाह पर नवजात स्क्रीनिंग कराई। टेस्ट में पता चला कि उसे हीमोग्लोबिन की बीमारी है। बीमारी पकड़ में आते ही डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। अगर ये बीमारी समय रहते पकड़ में ना आती तो बाद में अंश को गंभीर परेशानी हो सकती थी।
1: भैया, जरा एक बात बताइए, मेरे पड़ोसी के नवजात बच्चे की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर बोले कि उसे गंभीर जन्मजात हृदय रोग है, ये क्या होता है?
0: कुछ बच्चों में हृदय रोग जन्म से ही होता है। इसमें दिल की बनावट में गड़बड़ी होती है जिससे खून शरीर में सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है।
1: मतलब बच्चा दिखने में ठीक होता है पर अंदर से बीमार होता है।
0: बिल्कुल, शुरू शुरू में बच्चा एकदम ठीक लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में सांस लेने में दिक्कत, दूध पीने में परेशानी जैसी चीजें दिखने लगती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर नवजात स्क्रीनिंग समय पर हो जाए तो इस बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है।
1: और क्या इसका इलाज है?
0: हाँ है, लेकिन जल्दी पकड़ में आना जरूरी है। चलो तुम्हें छोटे फैजान की आप बीती सुनाता हूँ। शहर के अस्पताल में फैजान पैदा हुआ था। नवजात स्क्रीनिंग के तहत उसका टेस्ट हुआ। टेस्ट में पता चला फैजान के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम है। तुरंत और टेस्ट किए गए और पता चला कि उसे हृदय रोग है। फिर सर्जरी की गई और फैजान एकदम ठीक है, बिल्कुल किसी आम बच्चे की तरह।
1: मेरे मौसी का पोता अभी कुछ महीने का है, पर आवाज पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। माँ कुछ भी बोले, बच्चा पलटकर नहीं देखता। डॉक्टर बोले कि सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है। ये नवजात बच्चों में भी होता है क्या?
2: हाँ भैया, होता है। कुछ बच्चे जन्म से ही ठीक से सुन नहीं पाते, लेकिन बाहर से देखने पर वो तो बिल्कुल आम बच्चों जैसे ही लगते हैं।
1: पर भाभी, अगर बच्चा कुछ बोले ही नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि उसे सुनाई देता है या नहीं?
2: बस यही गलती होती है। अगर हम बच्चे के बोलने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। नवजात स्क्रीनिंग में अब सुनने की जांच भी होती है। बच्चा जब पैदा होता है तब अस्पताल में एक छोटा सा मशीन कान में लगाते हैं। मशीन खुद पता लगा लेती है कि बच्चे के कान ठीक से आवाज पकड़ रहे हैं या नहीं। ना बच्चा रोता है, ना कोई तकलीफ होती है। हर नवजात बच्चे का हियरिंग टेस्ट जरूरी है। इससे बच्चे को समय पर इलाज मिल सकता है और वो बाकी बच्चों की तरह बोल सुन सकते हैं।
1: भैया भाभी, आज तो आप दोनों से बड़ी काम की बात जानने को मिली। सच में नवजात स्क्रीनिंग हर बच्चे के लिए जरूरी होता है।
2: बच्चा जब दुनिया में आता है तब उसकी कुछ जरूरी जांच करवा लेने से आगे चलकर बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है।
0: बिल्कुल, जैसे कि दिल का रोग, थायराइड की गड़बड़ी, सुनाई न देना और अन्य कई छिपी बीमारियां नवजात स्क्रीनिंग से जल्दी पकड़ में आ जाती है। इलाज जल्दी शुरू हो जाए तो बच्चा पूरी तरह ठीक हो सकता है।
1: मतलब ये हुआ कि बच्चा चाहे बिल्कुल ठीक दिखे, फिर भी उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए।
2: हाँ भैया, बीमारी बाहर से थोड़ी ही दिखती है, अंदर ही अंदर नुकसान कर जाती है। यही तो हम सबको समझना है।
0: और ये जांच ज्यादा महंगी भी नहीं होती। सरकार कई अस्पतालों में ये सुविधा फ्री में दे रही है। बस जागरूक रहना जरूरी है।
1: तो दोस्तों, आज से ही तय कीजिए कि अगर घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नवजात स्क्रीनिंग जरूर करवाए, ताकि वो बच्चा आगे चलकर हंसता खेलता सेहतमंद जीवन को जी सके। तो दोस्तों, आज के सेहत से ही लाभ कई में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
1: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का। आइए सुनते हैं आज का अंक।
11: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई 2027 से प्रारंभ होने वाले भारतीय सैन्य अकादमी भारतीय नौसेना अकादमी और वायुसेना अकादमी के पाठ्यक्रमों तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई में अक्टूबर 2027 में आरंभ होने वाले पाठ्यक्रमों पुरुष और महिला दोनों के लिए भर्ती हेतु 13 सितंबर 2026 को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा 2026 आयोजित की जा रही है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 9 जून 2026। वेबसाइट का पता है upsc.gov.in। उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड द्वारा आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है upsconline.nic.in। CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान बरवा रोड धनबाद झारखंड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तकनीशियन ग्रेड 1 ग्रुप 2 पदों की कुल संख्या 30 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 19 जून 2026 शाम 5 बजे तक। पात्रता शर्तों आरक्षण की स्थिति और नियम और शर्तों आदि के विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.cimfr.res.in। इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी परिशिष्ट संशोधन अथवा अधिसूचना केवल इस वेबसाइट पर ही पोस्ट की जाएगी। CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार पिलानी राजस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तकनीकी अधिकारी समूह 3 कुल 8 पद उपलब्ध हैं। तकनीशियन ग्रेड 1 समूह 2 कुल 14 पद उपलब्ध हैं। विस्तृत विज्ञापन योग्यता अनुभव और वेतनमान आदि से संबंधित अधिक जानकारियों के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.ceeri.res.in। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में सहायक प्रबंधक पुस्तकालय का एक पद रिक्त है जिसे सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर भरा जाना है। संपूर्ण विज्ञापन आवेदन पत्र के प्रारूप और अन्य विवरण के लिए देखिए कृपया दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख है 28 जून 2026। नगालैंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत वित्त अधिकारी आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी उपकुल सचिव सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष तथा अन्य गैर शिक्षण पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विज्ञापन का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका पता है nagalanduniversity.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 13 जून 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
12: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
13: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
12: यहां नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन हर्निया अपेंडिक्स पित्त की थैली बवासीर भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
13: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
12: संपर्क 99 393 65 930।
14: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
13: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
12: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
13: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
12: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
13: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
12: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
13: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
12: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
13: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
12: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
15: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
16: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
17: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
18: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
15: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
19: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: उत्तर बिहार का गौरव,
6: सारण प्रमंडल की शान,
5: गोपालगंज की धड़कन
6: और अपने भाषा की पहचान,
5: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: सुनो दिल से।

0: मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए विकास जितना जरूरी है उतना ही अहम है हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
0: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना है और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
0: गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9.
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
12: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
13: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
12: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
13: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
12: तो फिर फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
13: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
12: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
13: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
13: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
13: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
17: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
16: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
17: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
18: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
19: क्यों, क्या हुआ है?
18: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
19: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
18: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
20: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
21: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
22: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
23: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में भोरे के एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गांजा तस्कर के साथ ही कई मामलों में आज भी आधा दर्जन से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार। और मेधावी छात्रों को जिला पदाधिकारी ने किया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस एवं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वाधान में जिला गंगा समिति एवं नगर परिषद गोपालगंज के संयुक्त रूप से प्राकृतिक से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम करते हुए वृक्षारोपण किया गया। यह कार्यक्रम मिंज स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें जिला पदाधिकारी, नगर परिषद के सभापति, उपसभापति, अनुमंडल पदाधिकारी और विशेष कार्य पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। सभी लोगों ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ माँ के नाम लगाया। साथ ही पर्यावरण को संतुलित करने हेतु जागरूकता से संबंधित कचरा को यत्र तत्र न फेंकना, कचरा पृथकीकरण, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना आदि के मामले में भी लोगों को जागरूक किया गया और शपथ दिलाई गई। इधर व्यवहार न्यायालय परिसर में भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष गीता गुप्ता की अध्यक्षता में तमाम न्यायिक पदाधिकारी गणों ने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। न्यायालय परिसर में कई पेड़ लगाए गए। इस दौरान जिला विधिज्ञ संघ के भी तमाम पदाधिकारी गण और प्रतिनिधि गण मौजूद रहे। इसमें पहला पौधा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी मेधा यादव के द्वारा संयुक्त रूप से लगाया गया। साथ ही अन्य पदाधिकारियों ने भी वृक्षारोपण किया। पांच पांच न्यायिक पदाधिकारी गण की समूह द्वारा पौधा रोपण करते हुए लोगों से वृक्षारोपण करने का संदेश दिया गया। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने एवं पर्यावरण के संतुलन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष अधिकाधिक पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमारी पृथ्वी पर तापमान, प्रदूषण और गैस इत्यादि का संतुलन बना रहे। इधर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में उचका गांव पुलिस को एक सूचना मिली थी और इसी मामले में फेसबुक पर साहिल खान नामक प्रोफाइल से धार्मिक एवं सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट वायरल की जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। अनुसंधान के बाद उक्त फेसबुक आईडी के संचालक साहिल खान पिता कलामुद्दीन मियां साकिन जमसर थाना उचका गांव जिला गोपालगंज को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और अब इस आरोपी पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर बाजार के रहने वाले 24 वर्षीय अंकित गुप्ता की कानपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक वहां टेलर का काम कर रहे थे। इसी दौरान सड़क पर कहीं जा रहे थे, तभी एक पाइप से भरा हुआ ट्रक के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद वहां की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। इधर जैसे ही परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। विजयपुर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान मुसहरी बाजार निवासी नवाब अंसारी को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी गुमटी में गांजा जैसा मादक पदार्थ की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बिक्री कर रहा था। पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस मौके पर छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस का वाहन देखकर आरोपी भागने लगा। पुलिस ने सशस्त्र बल के प्रयोग से दौड़ाकर आरोपी को पकड़ा और उसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है और गांजा जैसे सामग्री को जब्त कर इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। NDPS एक्ट में फिलहाल आरोपी पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। आज उत्पाद पुलिस ने भी कई लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि उत्पाद पुलिस ने जहां कुचायकोट थाना क्षेत्र के पहाड़पुर रोड में DS मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल के पास छापेमारी कर अरविंद मिश्रा को शराब के साथ पकड़ा। यह कुचायकोट के बरनैया बीसा गांव का निवासी है। इसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आरोपी के पास से 9 पीस शराब की पैकेट मिली है, जिसके बाद अब इसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर उत्पाद पुलिस ने सिधवलिया के बिशुनपुरा में छापेमारी करते हुए कृष्णा कुमार को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से भी 21 पीस टेट्रा पैक शराब की पैकेट मिली है, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर जलालपुर के कुर्म टोला में भी उत्पाद पुलिस ने छापेमारी की और यहां भी 45 पैकेट शराब के साथ जितेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह आरोपी विशंभरपुर के सिपाया दुबे टोला के बनारस बैठा का पुत्र बताया जा रहा है। इधर बियर, देशी और अंग्रेजी शराब को मिलाकर कुल 274 लीटर से अधिक शराब उत्पाद पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने मतिया गांव के पास से यह शराब की खेप को जब्त किया है और इसमें तस्कर की पहचान करने में जुटी हुई है। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने हिंदुस्तान प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान जिले के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला पदाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय होता है। उन्होंने छात्रों को निरंतर मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने का संदेश दिया। इस दौरान जिले के तमाम पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। माझा थाना क्षेत्र के नई बाजार में मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग बच्चे को बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि जानकारी मिलने पर थाना अध्यक्ष निरंजन कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी एवं पिटाई करने वाले लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की गहन पूछताछ की जा रही है। मोबाइल चोरी के आरोप में इस तरह से नाबालिग को बांधकर पिटाई करने का मामला गंभीर आपराधिक श्रेणी में आता है और ऐसे में आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर माझा थाना क्षेत्र के भैंसही श्याम नगर में ई रिक्शा से 53 लीटर से अधिक देशी शराब को पकड़ा है। साथ ही पश्चिमी चंपारण के जोगा पट्टी के जगदम्बापुर नौका वसिंदा, जो वर्तमान में साधु चौक वार्ड नंबर 8 में रहता है, लाल बाबू कुमार को गिरफ्तार किया है और दूसरा भैसही श्याम नगर का गुड्डू कुमार भी इस मामले में पकड़ा गया है। दोनों पर अब पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये लोग ई रिक्शा में शराब की तस्करी कर रहे थे। सड़क के किनारे झाड़ी में ई रिक्शा में शराब भर कर छुपा रखे थे। पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ई रिक्शा और शराब को जब्त किया गया है। इधर अनंत सिंह मामले में अदालत ने अभी सभी आरोपियों को राहत दिया है। बताया जा रहा है कि विधायक अनंत सिंह, सिंगर गुंजन सिंह को कोर्ट से फिलहाल राहत बरकरार है। साथ ही गुड्डू राय सहित अन्य 3 लोगों के गिरफ्तारी पर भी रोक लगी है। अगली सुनवाई तक इनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक बरकरार रखी गई। इस मामले में जांच अब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID को सौंपा गया है। अगली सुनवाई 8 जून को अदालत में निर्धारित की गई है। बताया जा रहा है कि 2 मई को सेमराव गांव में हथियार लहराने और अश्लील गानों के प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हुआ था और इसी मामले में मीरगंज थाने में ये सभी लोग आरोपी हैं और अब अदालत में इस हाई प्रोफाइल मुकदमे में सुनवाई चल रही है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में भोरे के एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गांजा तस्कर के साथ ही कई मामलों में आज भी आधा दर्जन से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार। और मेधावी छात्रों को जिला पदाधिकारी ने किया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
24: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
25: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
24: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
26: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
27: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
28: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
29: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: प्रसाद क्लिनिक,
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो एम छम 94.4 FM पे समय 9:19 हो रहा हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277165। ध्यान रखना है कि हर रोज की तरह पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप नए गाने की फरमाइश करें और नए गाने के चक्कर में आपकी फरमाइश पूरी ना हो पाए और आप इंतज़ार करते रह जाएं। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और पहला मैसेज लिखा गया है कि हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सुनो भैया, सबको बोल दीजिएगा और मुझे एक सॉन्ग सुना दीजिए जो कि है चांद से पर्दा ना कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरा का नूर। मैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोतागण हैं जो कॉल कर रहे हैं, तो कॉल नहीं करना है, इसमें टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज वाले कार्यक्रम में यदि आप मैसेज करते हैं तो बिल्कुल इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। फिलहाल हम आगे मैसेज देखें। यहाँ पे मैसेज पहुँचा, हाय सोनू बाबू कैसे हैं, हम भी ठीक हैं, तो बिल्कुल बढ़िया हम भी हैं और आप सभी के बीच उपस्थित हैं। और आगे कहते हैं कि हमें एक गाना सुना दें, फिल्म एक मुट्ठी आसमान, किशोर और आशा जी की आवाज़ों में। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय नमस्ते नमस्कार कैसे हैं सोनू भाई, आप और मैं रोहित देहरादून से, और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, मैं भी बढ़िया हूं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हम विकेश गांव त्रिलोकपुर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है विकेश जी। और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है और आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नाम अंकुश कुमार, पता गोपालगंज, गाना सांसों की माला जपते जपते। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर मैं सनी राज पटेल, तो बिल्कुल सनी राज पटेल जी आज आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरा किया जाएगा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और चलिए आपकी मैसेज तो हमने रीड कर ही दिया है और आगे मैसेज पहुंच रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। थोड़ा सा सब्र कर ले अंकुश जी और बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हम गाने प्ले करते हैं और गाने की फरमाइश इंजॉय करते हैं हम सभी शिव सागर दीवाना जी की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने।

कभी प्यारे सॉन्ग की फरमाइश और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सुनो भैया गाना बजाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है और आगे एंजॉय करते रहिए और सुनते रहें रेडियो 98.4 FM।

अभी प्यारे गाने रेडियो एमसी 94 एफएम पे, और आगे कई मैसेज पहुंचे और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। लिखा गया है कि नमस्ते सर, संजय शर्मा हरियरपुर शांति चौक से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में संजय जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ सर प्ले कर दीजिएगा मेरे सॉन्ग में संजय राज पटेल, तो बिल्कुल आपके भी गाने हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि फिल्म मिर्जा साहिबा सॉन्ग हाथ सीने पे जो रख दो करार ना जाए। और मैसेज करते हैं शगीर अंसारी जी फ्रॉम तेजपुर असम से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है, आज हम दोनों साथ में जुड़ गए हैं और हमारा भी वेलकम कीजिए शबीना एंड शब्बा फ्रॉम दुलुलिया से, तो बिल्कुल आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे कहते हैं कि होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, दोस्त ही होते हैं दोस्त के हमदर्द, कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते। बिल्कुल। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं गजाला विदेशी टोला से और मुझे गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश। और आगे बढ़ते हैं, आगे कई मैसेज आते जा रहे हैं तो मैसेज को रुकते हैं और गाने को प्ले करते हैं। और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पर पहुँचा हुआ है खेकरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से वीरेंद्र गुप्ता भैया जी की तरफ से, और गाने की फरमाइश करते हैं, गाने का बोल देते हैं, प्यार कभी कम न करना सनम, डेडिकेट मैडम जी रोशनी हीना हादरा आशा निशा ब्यूटी गुड़िया शब्बा शाहजहाँ नीतू निशा खुशी शफाक सबीता सबीना सलोनी और खास आपको। तो चलिए हम भी आप सभी के बीच तो हर गाने में उपस्थित रहते हैं, इस गाने को भी इंजॉय किया जाएगा, मन लगा के और ध्यान से सुना जाएगा कि क्या कहता है गाना।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9852374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
4: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 94 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स सोनू बाबू, आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि दिल की दिल से दूरी नहीं होती, खास कोई मजबूरी नहीं होती, मिलने की तमन्ना तो बहुत है लेकिन हर तमन्ना पूरी नहीं होती। सभी दोस्तों को हम भी जुड़ गए हैं दिलीप, हम अपने गांव शिहोरवा से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे कहते हैं कि नज़ारे मिले तो प्यार हो जाता है, पलके उठे तो इजहार हो जाता है, ना जाने क्या कशिश है चाहत में कि कोई अनजान भी हमारी ज़िंदगी का हकदार हो जाता है। सुनो भाई, नमस्कार सब तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो हाय सर जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर जी? मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और आज मुझे सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग ना लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे, फ्रॉम द मूवी होगी प्यार की जीत, जल्दी नहीं प्ले कीजिएगा। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बिल्कुल आप भी बने हमारे साथ। और इस मैसेज को करते हैं परवेज आलम जी, और समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और नवादा से जुड़े हुए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइशी का, हमारे श्रोतागण कई दिनों से परेशान है और आज सप्ताह का अंतिम दिन है, और इन्होंने नए गाने के फरमाइश कई दिन से कर रहे हैं, और आप दूसरे गाने के फरमाइश करें, बिल्कुल हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे सनीराज पटेल जी। और आगे हम बढ़ते हुए अगली गाने के फरमाइश प्ले करते हैं फ़िलहाल, और इन्जॉय करते हैं इस गाने के साथ। और अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे हम प्ले करते हैं, गाने के फरमाइश करते हैं विकेश जी गांव त्रिलोकपुर से, और गाने का बोल देते हैं दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते ही कदम रुक जाते हैं। चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो एम सी 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब। और आगे गाने की फरमाइश और कई मैसेज पहुंचे हुए हैं और आगे लिखा गया है कि थैंक्स। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज पहुंचाने वाले लिखते हैं कि चांद से तो नहीं लेकिन सूरज से पर्दा ज़रूर कीजिए, नहीं तो सच में वो चेहरे का नूर चुरा लेंगे। वेरी नाइस सॉन्ग, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। मैसेज करती हैं शबीना खातून। और आगे मैसेज और अगली गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है सुरेश मिस्त्री जी किए हुए हैं और गाने की फरमाइश करते हैं मेरे देश में पवन चले पुरवैया देशभक्ति। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

छोटा सा ब्रेक हो गया खात्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एम छिम 94.4 FM पे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे मैसेज करती हैं, लिखा गया है कि हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सर जी, मैं सुधा कुमारी बतरदे से, क्या हाल है बताइए। तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, गुड नाइट सनो भैया, जय माता दी, आपको भी गुड नाइट। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सनी राज जी पटेल, गाने को चेंज करते हुए मैसेज करते हैं और कहते हैं कि कसम है तेरी मैं तेरा दूल्हा बनूंगा। तो चलिए तैयार हो जाइए और आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आप सभी के साथ रेडियो रेम छिम 94.4 FM पे।

0: प्लीज।
1: प्रकाश साहब।
0: यस सर।
1: ये जो आप फोटो खींच रहे हैं इसके पैसे कौन देगा?
0: आप ही देंगे सर।
1: तो फिर मेहमानों की फोटो खींचते रहेंगे?
2: टुडे एमसीएम नेटवर्क 94.4 FM एंजॉय कर रहे हैं आप सब और कार्यक्रम SMS फरमाइश के साथ बने हुए हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सर, आपको धन्यवाद है रेडियो रमजम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि दिल को कैद करके मुस्कुराया ना करो, रोशनी की खातिर दिल जलाया ना करो, क्यों करते हो दिल पे इतना सितम, अगर याद नहीं करते तो याद आया ना करो। मैसेज करती हैं शबीना खातून। और आगे मैसेज इनके तरफ से लिखा गया है कि ओ मेरे सोना तुम मेरे होना, सुपर एंड लाजवाब सॉन्ग एंड बाय टू ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे और अगली गाने की फरमाइश करते हैं शगीर अंसारी जी तेजपुर आसाम से। तो इनके गाने हम प्ले करेंगे और इनके गाने को प्ले करते हुए इंजॉय करेंगे। गाने को डेडिकेट करते हैं दिलीप राम नरेश और कमरान हजरा शाहजहाँ को डेडिकेट करते हैं। तो चलिए आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो 94.4 FM पे।

FM सुन रहे हैं आप सब। और अभी हम सभी शकीर अंसारी जी के गाने को सुन रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, सो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे, और इस गाने के फरमाइश करते हैं अंकुश जी। तो इनके तरफ से गाने के फरमाइश किया गया है कि सांसों के माला जपते जपते। और

94.4 FM सुनने आप सब और सोशल एसएमएस फरमाइश का, और यहाँ पे समय जो है समाप्ति के बहुत करीब है। तो अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे, और अंतिम गाने की फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है, और इस गाने के फरमाइश करते हैं संजय शर्मा जी हरिहरपुर शांति चौक से, और गाने का बोल देते हैं कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बादे, अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो इनके गाने हम प्ले करेंगे, और साथ ही कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं, और जो गाने के फरमाइश हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। हाय, तो अंत में आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में अंतिम गाने के साथ, एंजॉय करें। दीप्ति कुमारी घर दतिया से आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और लिखा गया है कि थैंक्स, आपको धन्यवाद है रेडियो रमछम सुनने के लिए, और आगे सुनते रहें एंजॉय करते हैं। और जो भी श्रोतागण छोड़ जा रहे हैं नाराज नहीं होना, समय जो है पूरा हो गया जिसके कारण इस कार्यक्रम में कई श्रोतागण की फरमाइश हम पूरी नहीं कर पा रहे। सो अगले सप्ताह कोशिश रहेगा कि जो भी मैसेज पहले पहुँचे उस मैसेज को शामिल करते हुए गाने के फरमाइश हम पूरी करें। और हाँ, ध्यान रखना है कि बस आप लोग पुराने गाने के फरमाइश करेंगे, ऐसा ना हो कि नए गाने के फरमाइश कर दें और जब हम गाने प्ले करने जाएं तो आप के गाने देखते हुए गाने को फरमाइश को रोक दिया जाए। तो फिलहाल ऐसा नहीं करना है, कार्यक्रम के अनुसार जुड़ना है और गाने को इंजॉय करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहे रेडियो 94.4 FM, जो मैसेज कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रूपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि यह खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पानी के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: नंदिनी नंदिनी नंदिनी

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनिया और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी हम योगेश जी के आंगड़े बोल रहे हैं, बेना तरह खत्म हो गए।
1: जी जी, कैसे हैं योगेश जी?
2: बढ़िया है, अच्छा है।
1: तो क्या हो रहा था अभी?
2: अभी घर में है।
1: अच्छा, घर में है। खाना पीना हुआ?
2: हो गया जस्ट अभी।
1: अच्छा अच्छा, तो परिवार में सभी लोग कैसे हैं अभी?
2: सभी कुशल मंगल है।
1: ये बढ़िया है। गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
2: गाना आप हमें फिल्म मोहब्बतें से सुनवा देंगे, हमको हम ही से चुरा लो।
1: अच्छा, और सुनवाना भी है?
2: जी कुछ पांचे हैं, श्रीपाल गोयल जी, लोकेन्द्र वर्मा जी, दिलीप आहूजा जी, रोशन देवांगन जी, मुकेश शर्मा जी, संतोष वैष्णव जी।
1: जी, तो प्ले करेगा ना?
2: जी, धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
2: Pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: लाल बाबू में बोल रहा हूँ।
1: जी कैसे हैं लाल बाबू जी?
2: ठीक है, अपना बताइए।
1: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या हो रहा है अभी?
2: बैठे हैं छह में
1: काम के पेड़ के नीचे कि नीम के पेड़ के नीचे?
2: काम भी हो रहा है, बैठे हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो गाना कौन सा सुना दे आज आप?
2: गर्ल फिल्म का मैं तेरा मीना सीना तेरा साथी के सूरज विकास आप है, आपका टीम है।
1: तो प्ले कर दे गाना आपकी।
2: ठीक है
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसमें कॉल किया।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone can be bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो सलाम अलैकुम।
6: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: मैम कैसी हैं?
6: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: सही है, ये गाना सुनाएंगे?
6: जी बिल्कुल सुनाएंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
5: गाने का नाम मुझे सुनना है तुम्हारे सिवा कुछ ना कहेंगे जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, यही गाना सुनना
6: जी। और नाम भी बता दीजिए अपना श्रोताओं को।
5: मैं गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से बोल रहा हूँ।
6: जी जी, और सब बताइए गुलाम जी।
5: सब बढ़िया है, अपना सुनाइए।
6: हमारा भी बढ़िया है। तो अभी ड्यूटी में है कि रूम पे?
5: जी जी रूम पे है।
6: अच्छा छुट्टी है?
5: जी जी।
6: चलिए बढ़िया है, तो एंजॉय करिए रूम पे बैठ के आज छुट्टी।
5: जी जी थैंक यू मैम,
6: वेलकम। गाना प्ले कर रहे हैं आपकी।
5: ओके
6: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल।

0: अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: कैसे हैं सर?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक है, बैठ करके रूम में रेडियो बजा रहे हैं।
1: नाम बता दीजिए अपना श्रोताओं को।
0: मेरा नाम है मनुद्दीन अहमद, ग्राम जुमरिया मुचका गाँव
1: जी।
0: हमको गाना सुना दीजिए। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं
1: हेलो।
0: हाँ
1: जी, और गाना सुनवाना भी है?
0: आपको सुनवाएंगे और पूरे टीम को सुनवाएंगे, कौन नहीं सुनेगा, सब कोई सुनेगा।
1: हाँ बिल्कुल, सब कोई सुनेगा।
0: कब सुनाइएगा सर?
1: ये आज शाम को 5 से 7 के बीच में।
0: अच्छा ठीक है
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माई चॉइस में कॉल किया।
0: ठीक है।
2: मतलब

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम जी 90.4 FM में।
1: जी रमजान
0: जी, कैसे हैं रमजान जी?
1: बढ़िया।
0: तो क्या हो रहा था अभी?
1: वही हम लोग काम कर रहे हैं।
0: अच्छा, काम पे ही हैं। तो आज कौन सा गाना सुनवा रहे हो?
2: सुनवा जी ताकत मूवी का।
0: जी कौन सा गाना?
2: पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन जाए वाला।
0: और सुनवाना भी है
2: जी आपको? हम अपने दोस्त साथ सुनेंगे।
0: चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी हम पचपरा से बोला जी, बोलते नहीं
1: जी। क्या हाल चाल बोला जी?
0: ठीक है बा, आपन बताएं।
1: हमरो बढ़िया बा। ये गर्मी में क्या होता है आजकल?
0: आज गर्मी में काफी पंखा करके बैठल बा आदमी।
1: पंखो तो गर्म में हवा देता।
0: पंखो का कहिए, लेकिन मजबूरी बा ना। मजबूरी बा ना, पंखो तो गर्म हवा देता लेकिन मजबूरी बा। मान लीजिए बाहर में हवा तो आज तो थोड़ा बहुत भी हवा चल रहा बा।
1: सिसका था तनी मुनी।
0: और सब समाचार बताएं?
1: सब बढ़िया बा। अपने के बताएं, घर परिवार सब लोग कैसन बा?
0: सब कोई अच्छा बा।
1: चलिए बढ़िया के काम बा। तो कौन गाना सुनवा दी आज?
0: गाना सुनवा दी, घर द्वार फिल्म का गाना है, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा।
1: जी
0: ये गाना सुनवा
1: और डेडिकेट भी रही।
0: और अवा सुने भाव सुने बा, रेडियो रिमझिम के पूरा टीम सुनी, जितना आदमी जुड़ल बा तो सब कोई सुनी।
1: प्ले कर दी गाना?
0: हाँ हाँ।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो,
1: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
6: कैमरा से बोलते हैं किस मत
5: जी जी, कैसा बनी दादाजी?
6: ठीक ठीक बनी बाबू। गई रही का कोई चला
5: गई रही अपन छुट्टी में रहनी है, काम रहा घर।
6: अच्छा, घर सब ठीक बन?
5: हाँ, अभी सब कोई घर बढ़िया बा। रहुआ बताई रहुआ घर परिवार में सब लोग कैसा बा?
6: सब ठीक
5: है, चलिए बढ़िया बात बा।
6: और अभी अच्छा से गुजर गई।
5: तो गाना कौन सुनवा दी आज रोज?
6: आप वे सुनवाओ अपना मन से कौन पुरान कौली
5: कौली। चलिए करी
6: ठीक बाबू।
5: ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग,
1: कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं लाल बहादुर जी?
1: हम भी ठीक है जी मैम, हम लोग स्वच्छता कर्मी हैं, बैठे हुए हैं।
0: जी जी,
1: कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ना, हम लोग स्वच्छता अभियान का गाना सुनना है।
0: अच्छा, स्वच्छता अभियान का।
1: जी जी, किस तरह कचरा उठा करना है, किस तरह सफाई करना है।
0: अच्छा, तो बस आप ही लोग हैं कि और भी जो है गांव के लोग भी हैं?
1: पूरे गांव के लोग हैं, हमारे टीम पूरी है।
0: अच्छा, पूरे पंचायत के लोग हैं।
1: जी जी
0: जी, तो सर मतलब पूरे पंचायत को यही समझाना है कि कैसे स्वच्छ रखना है। चलिए बढ़िया है,
1: तो हम लोग का स्टार्टअप का नाम हम बताना चाहेंगे।
0: बिल्कुल बताइए।
1: हमारे हैं कृष्ण लाल यादव, फोन नंबर वार्ड है 7 नंबर, और फरहुल शर्मा 6 नंबर, मेरे बस्तिक भाई 2 नंबर वार्ड, 11 नंबर और बोली लो, और 10 नंबर, और जितने भी ग्रामीण से लगे हैं भारत वर्ष।
0: चलिए
1: बढ़िया वाला सुना दीजिए, जाग लागल माई तारा
0: भारत माई पे
1: फाइव कर दी, गाँव गाँव में जाके माई जाग लागल माई तारा पर जाना है ना भोजपुरी में,
0: लागल बा कलंक भारत माई पे।
1: अच्छा,
0: ये वाला ना?
1: हाँ ये
0: जी, तो प्ले कर रहे हैं गाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो माई चॉइस में कॉल किया।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.

0: सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो, नमस्ते मैडम जी।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
1: मैडम जी, मैं गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा, जिला गुना से।
2: जी जी, कैसे हैं गोपाल जी?
1: बढ़िया है मैडम जी, अभी तो ये मूंग की कटाई चल रही है।
2: अच्छा अच्छा,
1: और क्या? हाँ जी वाला मैडम जी।
2: अच्छा, तो अभी तो काफी धूप है खेत में है अभी आप लोग?
1: हाँ, धूप भी है मैडम जी, अभी तो क्या है, बारिश हुई है, आंधी भी आया था अभी तो।
2: अच्छा अच्छा,
1: और क्या?
2: तो अगर नहीं वो फिर कटाई होगी तो खेत में ही सब उठ जाएगा।
1: हाँ,
2: तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
1: गाना सुनना है, वो वाला सुनना है, नाड़ी फिल्म का है ना, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में, ये वाला है। नहीं, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई, चलिए वाला।
2: जी जी, और डेडिकेट भी करिएगा।
1: बीटी हरिओ, मेरा तब जी है, सुनील साहू जी है, हमारे मांगीलाल धाकड़ जी है, ये है।
2: चलिए, तो प्ले कर देगा ना आपकी?
1: जी
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
0: मीना एंड सुमन जी कोनवा मोड़ से।
1: ओ, दोनों कहीं हैं क्या आप?
0: हाँ, मेरा बड़े दीदी है। अच्छा। हम लोग कॉल करते थे इस पे।
1: पहले तो आता था, काफी दिन बाद तो मैं आई है।
0: हाँ।
1: तो क्या हाल चाल है
0: मैम, कैसे है?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? आपके घर
0: बात है?
1: चलिए बढ़िया का काम है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
0: गाना नहीं है, किसकी को मैं जाए किस होटल में खाए, चलो इसकी लड़ाई चलो इसकी लड़ाई, वही गाना सुनना है।
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ, डेडिकेट करेंगे आपको और सारे दोस्तों को, पुराने नए जितने दोस्त हैं उन सबको।
1: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
0: ठीक है मैम। ओके
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello,
4: hello, hello, hello, hello, hello.
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो मैडम
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: मैं मनान कपूरपुरा से।
7: जी, क्या हाल चल रहे हैं मनान जी?
6: सब ठीक है। आप कब आ गए हैं जी सोनी जी?
7: हम तो सैटरडे से ही आए हुए हैं।
6: तो हम गुरुवार को हम कॉल नहीं किए हैं, कहीं काम में पड़ गए थे।
7: कोई नहीं, काम भी जरूरी है।
6: वो बुधवार का आज प्रोग्राम आज आपका हम सुन रहे थे आज रेडियो पे। बहुत आदमी का कॉल हम सुन रहे हैं, वीडियो कॉल पे किससे बात की है वो भी बता रहा था आदमी। और सब सुन के हमको खूब हंसी लग रहा था और अच्छा लग रहा था आपका प्रोग्राम सुन के। बहुत दिनों के बाद मिली है यहाँ। अब आप रहेंगे क्या इस पे, इस प्रोग्राम पे?
7: अभी हेलो माय चॉइस ही रहेंगे, लाइव ही आएंगे।
6: अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा है। एक और आई है क्या प्रभा
7: जी?
6: भारती जी, हाँ, तो वो आई है, तो उन्हीं से दो चार बार हुआ है गाना करी हुए, तो उसके बाद से आप चले गए, तो हमने सोचा कि आप छोड़ दिए क्या?
7: नहीं, कुछ काम था पर्सनल, जिसको सब समय लग गया।
6: तो वही ना, सबको वो भी किए थे थावे वाला, वो जो एक है
7: प्रसाद,
6: हाँ, तो वो किया था, तो वो भी बहुत मारूम होकर के बोल रहे हैं मैडम जी ठीक है, दो ही वर्ड में हानि करता हूँ। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये मौका ही उसमें नहीं मिलता था। नया आदमी के साथ में कौन सा बात कर रहे हो भाई?
7: थोड़ा सा उनको भी बात करने में वही चीज है, वो भी बोल रही थी हम नया है तो थोड़ा सा पहचान में समय लगता है।
6: हालांकि उनको हम थोड़ा सा चुटकी दिए है, आप बहुत अच्छे है, ये है वो है, इंशाल्लाह आप जो है आगे बढ़ जाऊंगी, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, ऐसे बढ़ावा दिए है बातों से, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
7: अब नए आदमी से मिलकर थोड़ी सी हिचकिचाहट तो सबको होती है।
6: हाँ, एक प्रोग्राम में बोलती है कि बुधवार को और फलाने दिन को कॉल करें इतने नंबर पे, तो वो तो रटी रटाया बात को उतना रिकॉर्ड हुआ है
7: जी जी,
6: थोड़ा आपके जैसा हुआ है।
7: अच्छा अच्छा
6: आपके जैसा नहीं,
7: पहला है तो पहले पहले है,
6: तो हो जाएगा, एक्सपीरियंस में आ जाएंगे वो भी, लेकिन थोड़ा सा भी हम लोग का भी बात करने में बड़ा कुछ बुझाहट मालूम होता है।
7: समझ जाए, आपके लिए वो नहीं है, उनके लिए आप लोग नए हैं और पूरी जो भी उससे पहले काम की है उससे और ये पूरा एकदम से डिफरेंट है, ऐसा होता है डिफरेंस होता है। तो
6: मैडम वो गोपालगंज की रहती है वो?
7: अब इतना तो मुझे भी जानकारी नहीं है, आने के बाद से अभी बातचीत करने का मौका नहीं मिला उनसे, ऐसे काम भर बात होता है।
6: पहले दिन हम बात किए थे ना, तो वो बता रहे थे कि नहीं हमें कोई सोनी को हम नहीं जानते हैं।
7: हाँ, तो वो नहीं जानती है नाम से, मतलब ऐसे जानती थी कि कोई सोनी काम करती है।
6: हम पूछे सोनी जी चली गई हैं क्या, तो नहीं हम सोनी को नहीं जानता, सोनी जी बोल रहे हैं, तो नहीं नहीं नहीं हम फलाने बोल रहे हैं। तो वही थोड़ा सा
7: नहीं थे, उसी बीच में वो आई है।
6: तो मैंने वो भी गोपालगंज है ना?
7: हाँ, गोपालगंज की है, इधर की है।
6: ठीक है, नजदीक में रहेगा तो अच्छा रहेगा, प्रोग्राम चलाते रहेंगे, आपको भी मौका मिलता रहेगा घूमने के लिए।
7: जो कोई रहेगा तो छुट्टी लेने भी उठा।
6: एक प्रोग्राम के लिए आपको बार बार छुट्टी लेना पड़ता था, एक प्रोग्राम बराबर चालू रहेगा। चलिए, हम लोग का दुआ है कि आप लोग को प्रोग्राम में रहें और रेडियो को रिमझिम को आगे बढ़ाएं, है ना, और तरक्की दे, यही दुआ है, साथ में आपको भी ऊपर वाला से हत्या आप रखे आपको।
7: चलिए,
6: तो आगे तो हो गई, तो हमको सात अजूबे इस दुनिया में आठवे अपनी जोड़ी धर्मवीर का यही गाना सुना दीजिए मेरा।
7: चलिए और डेडिकेट करिएगा।
6: डेडिकेट खास कर आपको आपको आपको और साथ में वो भारती जी है और उनको भी कहेंगे, उनको भी रेडियो प्रेमी और तो कहेंगे दूसरा और क्या। ठीक है मैडम
7: जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चॉइस कॉल के।
2: सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, हर थोड़े से भाई टूटे।

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी हैं ये वादा है। अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, जो ये सच्चा

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: Hello, hello, hello, hello, hello.
4: Bhaage bhaage phirte hain.
6: Break ke baad aap sabhi ka ek bar phir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी रिंजन 90.4 FM में।
8: दीदी नमस्ते।
7: नमस्ते,
8: कहाँ थी इतना दिन से?
7: ये घर पे ही, कुछ काम थी।
8: वही बोलती हूँ दीदी, नहीं आ रही है, लग रही नहीं क्या, बिना बताए
7: ना? बिना बताए नहीं जाएंगे, जाने से पहले बता के जाएंगे, बढ़िया से विदाई लेके जाएंगे।
8: अच्छा जी, सही है,
7: सही है ना?
8: हाँ,
7: इतना दिन अगर समय दिए हैं तो ऐसे ही कैसे चले जाएं?
8: जी बता के जाना चाहिए।
7: बिल्कुल बता के जाएंगे,
8: पता चल गया आप निकल गए, सब इंतजार करते रह गया।
7: ना ना, ऐसा नहीं है, कुछ काम था। तो नाम बता दीजिए, नाम ध्यान नहीं आ रहा आपका, तो आवाज से पहचान रहे हैं आपको।
8: मैं सोनी गोपालगंज से।
7: अच्छा हाँ, तो खाना पीना हुआ सोनी जी आपका?
8: जी मेरा हो गया है। आपका?
7: हाँ जी मेरा भी हो गया है। तो कौन सा गाना सुनवा दे आज आपको?
8: अपने पसंद से ही सुना दीजिए।
7: ये तो अलाउ नहीं है, पता ही है आपको।
8: अच्छा तो ये सुना दीजिए, दिल से दुआ करी ले, दिल वे से ई कही ले, सारा जहाँ के प्यार था तुहरे तमन में मिले, ना तू कुछ कहता ना हम कुछ कहती, तू सामने बैठा हम देखते रह जाती। यही वाला सॉन्ग सुना दीजिए।
7: जी बिल्कुल, और हम सामने बैठने के लिए तैयार हैं।
8: जी जी, वो तो और बढ़िया रहेगा।
7: बढ़िया रहेगा ना, और खाना पीना छोड़ के उसी से पेट भरेगा। और गाना डेडिकेट भी करिएगा
8: जी आपको, सोनू सर को, भारती दीदी को और जितने सुनने वाले उन सभी को।
7: चलिए तो प्ले करे गाना
8: जी। थैंक यू,
7: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल की।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जिम में।
0: नमस्ते जी, गाना सुनना हमें
1: जी। तो गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: नाम परमात्मा महतो जी कला मतुमिया से बोल रहे हैं जी, दिगम्बर बुठाना
1: जी। जी कैसे हैं
0: जी? रखा जी ठीक है जी, अपना सुनाइए।
1: हम भी बढ़िया है। तो खाना पीना हुआ कि नहीं?
0: खाना पीना तो अभी चाय पी रहे हैं जी, काम कर रहे हैं जी। 11 बजे चाय मिलता है यहाँ पे।
1: अच्छा अच्छा, ड्यूटी में ही है?
0: पंजाब में होशियारपुर में रहता हूँ मैं। तो गाना हमको सुनना है, तो खेसारीलाल का कोई भी सॉन्ग बढ़िया था।
1: खेसारीलाल का कोई भी चलिए, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
0: कब तक सुनना है वो टाइम होगा?
1: शाम को 5 से 7 के बीच में कभी भी आ सकता है, और कल मॉर्निंग में 9 से 11 के बीच।
0: अच्छा जी, और कॉल पे कॉल लगा रहे हैं, बिजी तो बिजी बता रहा था आपने।
1: हाँ, तो काफी सारे लिसनर हैं, कॉल कर रहे हैं तो बिजी तो जाएगा ही।
0: मौसम कैसे है गोपाल वाले अपना जिला में?
1: काफी भयानक वाला धूप हुआ है,
0: यहाँ पे गर्मी है।
1: अब अभी आपसे बात कर रहे हैं तो बाकी जो कॉलर होंगे वो लोग बोल रहे हैं कि बिजी।

0: हो रहे हैं।
1: यार सही बात है, इससे हमारे बताया।
0: तो ऐसे ही होता है। चलिए तो गाना प्ले करें आपके।
1: हाँ जी पहले प्ले कर दीजिए।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो माई चॉइस में कॉल।
1: नमस्ते।
2: ए जी यूज मी
3: आई एम टोटली कंफ्यूज मी काटना ले पढ़ाओ बाड़ू
2: चौथा तो
3: ओकरा बाद कहे ना गई
2: गर्मी के छुट्टी हो गई
3: ओकरा बाद
2: फिर बारिश आ गई
3: अब ओकरा बाद
2: जाड़ा के छुट्टी हो गई
3: फिर ओकरा बाद
2: फिर फगुन आ गई
3: अब फिर ओकरा बाद रे
2: इतना छुट्टी मरनी नो कि पढ़े के आदत से छूटू
4: बाय गाइस।

0: लास्ट में तरह से को सवाल पूछी
1: पूछी ना जी।
0: ई बताओ कि लिंग को तरह के होला?
1: तीन तरह के।
0: कौन कौन?
1: स्त्रीलिंग।
0: यस।
1: पुल्लिंग।
0: बिल्कुल यस।
1: अडरलिंग।
0: हाँ। अब बुझा गए, दुर्गेश नाई बना दे बेटे हमके।
1: पूछी पूछी।
2: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
3: Now pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
3: Pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up.

0: फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम 90.4 FM में।
2: जी नमस्कार मैडम, मैं सुनील साहू बोल रहा हूँ।
1: जी कैसे हैं सुनील जी?
2: बढ़िया है मैडम जी,
1: हेलो
2: जी बोलिए।
1: जी आप कुछ बोले, आवाज नहीं आई आपकी।
2: जी बहन जी, मुझको फरमाइश सुनना था।
1: जी बिल्कुल, फरमाइश सुनाएंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
2: जी मैडम, सिस्टर का नाम है राजा बाबू।
1: अच्छा,
2: और गाने के बोले सरकार लो बतिया जाड़ा लगे।
1: ओहो, अभी तो गर्मी का मौसम है।
2: नहीं नहीं, अगर हमारे दीदी अगर बारिश हो रही है अभी।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ रात को बारिश गिरी थी, अभी बारिश गिर रही है।
1: चलिए बढ़िया है, कम से कम इधर भी थोड़ी बारिश भेज दीजिए।
2: जी भेजेंगे दीदी, और कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहती हूँ जिनको मैं गाना सुनाना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल लीजिए।
2: जी गजराज सिंह लोधी है रेराई से, और गोपाल ओझा है कगवासा से, और मांगीलाल धाकड़े बड़ा गांव से, और रामनागर प्रजापति है मैं पीतमपुर से। ये सभी रेडियो के श्रोता है बहन जी।
1: अच्छा अच्छा
2: जी, ये बहुत दिन से परेशान हो रहा है फोन लगाने के लिए, फोन नहीं लग पा रहा है।
1: अच्छा, सबको कॉल कर रहा है ना, तभी जी बताता है।
2: जी जी जी जी जी
1: जी, चलिए अभी तो कॉल लग गई, आपसे बात हो गई, ये ट्राई करें उनका भी लग जाएगा।
2: ठीक है
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल।
2: धन्यवाद
1: जी।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।